0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आपने सुना फिल्म लगान का ये गीत, जिसको लिखा था जिसको संगीतबद्ध किया था एआर रहमान ने और इस गीत को अपनी आवाज़ भी दी थी एआर रहमान ने। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कोई मिल गया से। इस गीत को लिखा है इब्राहिम अश्क ने, संगीत राजेश रोशन का है और आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की है।

मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आपने सुना फिल्म जैकपॉट का ये गीत जिसको लिखा था तुराज ने। संगीत शरीब और तोशी का था और आवाज़ अरिजीत सिंह की थी।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
2: इतनी वफादारी आजकल कौन सोचता है। ये सब जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे।
2: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: चलो आईटीआई, चलो आईटीआई।
6: मध्य प्रदेश की सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आईटीआई में उपलब्ध हैं रोजगार परक एवं कौशल आधारित विभिन्न ट्रेड्स जो आपको रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश संबंधी सहायता के लिए आज ही अपनी नजदीकी शासकीय आईटीआई में संपर्क कीजिए।
0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम के अंतिम गीत को शामिल करने का, जिसको हमने लिया है फिल्म जाने तू या जाने ना से। इस गीत को लिखा है अब्बास टायर वाला ने, इस गीत को संगीत दिया है AR रहमान ने और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है राशिद अली ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
7: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
7: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
6: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
8: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
9: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
6: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
7: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।

0: डीआरडीओ ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
1: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश समाचार।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में सुगम संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार मोहम्मद अख्तर की आवाज़ में कुछ गज़लें। लीजिए, प्रस्तुत है उन्हीं की आवाज़ में ये गज़ल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है, जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात,
3: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं मोहम्मद अख्तर, हम आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं की आवाज़ में कुछ गज़लें। लीजिए, प्रस्तुत है उन्हीं की आवाज़ में कार्यक्रम की ये अगली गज़ल।

कलाकार मोहम्मद अख्तर की आवाज़ में अभी आपने सुनी ये गज़ल। सुगम संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम का समापन हम मोहम्मद अख्तर की आवाज़ में इस गज़ल के साथ कर रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की ये अंतिम गज़ल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में कलाकार थे मोहम्मद अख्तर और हमने आपको सुनवाई इनकी आवाज़ में कुछ गज़लें। प्रातः के 8:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबर का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। वे शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित न्यायालय का गठन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज पन्ना में 2204.26 करोड़ रुपये की लागत के 22 विकास कार्यों की सौगात देंगे, जिसमें 94.63 करोड़ रुपये के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 109.63 करोड़ रुपये के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत हो गई है। एक ही मोबाइल ऐप के जरिए कार, ऑटो और बाइक टैक्सी की इस सेवा में यात्रियों और चालकों के बीच सीधा संपर्क होगा, जिससे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का कल शाम स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ हुआ। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहिन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगा लहराते हुए एरेना में प्रवेश किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 9 बजे हैं, लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोता साथियों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो मित्र आयुष तोमर। आज हम आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसकी महत्वता हमारे जीवन में बहुत अधिक है। विषय कोई और नहीं बल्कि है प्रकृति। प्रकृति का मान करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मनुष्य अगर प्रकृति को निर्जीव करके जीवन ढूंढने का प्रयास करेगा तो बड़े विचित्र दृश्य उतर कर आएंगे। यह चौंकाने और चिंतित करने वाली बात है कि बाबा अमरनाथ 5 दिन में ही अंतर्धान हो गए। यह लगातार 3रा साल है जब बाबा ये संकेत दे रहे हैं कि प्रकृति का मान करो, नहीं तो उनके दर्शन ऐसे ही दुर्लभ हो जाएंगे। परमात्मा ने अपने स्वरूप को प्रकृति में रखा है, अब हमें प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करनी ही पड़ेगी। आज पंच तत्वों को रौंदा जा रहा है। हर धार्मिक स्थल पर भीड़ की प्रकृति है। लोग अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार धार्मिक स्थलों का प्राकृतिक आनंद समाप्त करने पर तुले हैं। जिन स्थलों पर भक्तों को स्वच्छता रखनी चाहिए वहाँ वे स्वच्छंद होते जा रहे हैं। बाबा अमरनाथ का यूं झलक दिखाना हमारे लिए चिंता का विषय है। इसके लिए निजी जागृति बहुत ही अधिक आवश्यक है। भगवान कृष्ण की वाणी को याद रखना हमें बहुत आवश्यक है, जो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाते समय कही थी कि मैं ही प्रकृति हूँ। प्रकृति का मान अगर हम करेंगे तो भगवान का मान अपने आप हो जाएगा। यह कृष्ण की ही वाणी है कि प्रकृति का मान करो, मेरा सम्मान स्वयं हो जाएगा। तो ये हमें समझना होगा कि प्रकृति की महत्वता हमारे लिए कितनी अधिक है। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कृत्य ऐसा नहीं किया जाना चाहिए जिससे हमारी प्रकृति को हानि पहुँचे। अक्सर होता यह है कि हम अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों को बरतने पर तुले रहते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी हमें अपनी सुविधाओं का त्याग करना चाहिए, और सुविधाओं के त्याग के माध्यम से हम प्रकृति को सुरक्षित ज़रूर कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको चर्चा ज़रूर पसंद आई होगी, और आप सब भी प्रकृति को स्वच्छ रखने में और प्रकृति को सहेज कर रखने में अपना एक योगदान निभाएंगे और देश के एक जागरूक नागरिक के रूप में ज़रूर पहचाने जाएंगे।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में बहुत ज़रूरी होता है एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन। अगर हमारे जीवन में एंटरटेनमेंट की जगह हमने दे रखी है तो निश्चित ही हम अपने कार्य को सहजता से पूर्ण भी कर लेंगे और हमें किसी चीज़ का तनाव भी नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने जीवन को तनाव रहित रूप से जिएं, एंजाइटी डिप्रेशन जैसी चीज़ों से ज़रूर बचें। और इसके लिए एक ही साधन है, एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट का मतलब पॉजिटिव एंटरटेनमेंट से है, नेगेटिव एंटरटेनमेंट और नेगेटिव नकारात्मक मनोरंजन से बिल्कुल भी नहीं है। ज़िंदगी जब ठहर सी जाए, एंजाइटी बढ़ने लगे और आप खुद को चार दीवारी में फंसा महसूस करें तो आप क्या करें? अक्सर ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालयों के नए स्टूडेंट्स, खासकर हॉस्टलर्स को अगर हम देखें, जिन्हें समझ नहीं आता कि रविवार को नए शहर में आखिर वो क्या करें, तो सबसे पहले उन्हें यही लगता है कि यहाँ से भाग छूटें। वे बिना सोचे समझे अंतहीन वीडियो स्क्रॉल करने लगते हैं, उससे अपनी आँखों को कष्ट देते हैं, बिंज वॉच करते हैं या फिर वीडियो गेम्स में खो जाते हैं। इससे उन्हें कुछ समय की राहत तो मिलती है, लेकिन आखिर में वे खालीपन महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं। संक्षेप में, वे एंटरटेनमेंट को कंज्यूम तो करते हैं लेकिन शायद ही उसे क्रिएट करने का सोचते हों। लेकिन क्या हो अगर बोरियत दूर करने का आपका कोई साधारण तरीका कोई लेट नाइट स्ट्रेस रिलीफ डूडल या पालतू डॉग से जुड़ा कोई मजाक ही करोड़ रुपए के ग्लोबल स्टार्टअप का बीज बन जाए। लखनऊ की बहनों मृणालिनी मित्रा जो कि 27 वर्ष की हैं और न्योनिका जो कि 26 वर्ष की हैं कि यह असाधारण कहानी आज हॉस्टल के कमरे में बैठी किसी युवा के लिए बेहतरीन सीख साबित हो सकती है। यह साबित करती है कि जब आप एंटरटेनमेंट और इनोवेशन की भावना से देखते हैं तो लिविंग रूम में किया गया साधारण काम भी ग्लोबल बिजनेस में बदल सकता है। कुछ साल पहले मृणालिनी और न्योनिका वहीं खड़ी थी जहां पहुंचने का सपना भारत के कई महत्वाकांक्षी युवा देखते हैं। मृणालिनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी और न्योनिका ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री ली थी। विदेशों में प्रतिष्ठित कॉरपोरेट इंटर्नशिप और शानदार ग्लोबल करियर उनका इंतज़ार कर रहे थे। तभी उन्होंने सुना कि उनकी माँ को कैंसर है, तो यह उनके लिए बड़ा सदमा था। एक पल भी सोचे बिना दोनों बहनें सारे प्लान छोड़कर माँ की देखभाल के लिए लखनऊ के राजेंद्र नगर स्थित घर लौट आईं। घर का माहौल भारी था और दोनों पर बेहद भावनात्मक दबाव था। इससे निपटने के लिए परिवार ने एक नियम बनाया कि हर रविवार बोर्ड गेम्स खेले जाएंगे। यह कठिन समय में मन को थोड़ी सी खुशी देने का जरिया था। जैसे वनीला आइसक्रीम में चॉकलेट मिलाई जाती, वैसे ही जब दोनों बहनों ने एंटरटेनमेंट में इनोवेशन को मिलाया तो उनकी साधारण पारिवारिक कहानी उद्यमिता की मिसाल बन गई। ज़्यादातर लोग बस बाज़ार से कोई साधारण सा बोर्ड गेम खरीद लेते हैं, लेकिन मित्रा बहनों ने एंटरटेनमेंट के साथ इनोवेशन करने का फैसला किया और अपनी एक दुनिया बनाने की ठान ली। कठिन हालात में घर में खुशी के पल लाने वाले अपने पालतू डॉग यासू से प्रेरित होकर बहनों ने कुछ कैरेक्टर्स की स्केचिंग शुरू की। खाली कार्ड्स पर पौराणिक कथाएँ, हाथ की चित्रकारी, ओरिजिनल म्यूजिक और निजी किस्से पिरोए। शुरुआत में यह सिर्फ तनाव दूर करने की थेरेपी जैसा था, ताकि वे एक दूसरे को हंसा सकें और रोज़मर्रा में खुशी से जुड़े रहें। उन्होंने कोई बिजनेस प्लान नहीं बनाया था, बस थोड़ा मज़ा करने का बेहतर तरीका इजाद किया था। लेकिन जब उन्होंने हाथ से बनाए कैरेक्टर्स YouTube पर शेयर किए तो वे इंटरनेट पर देखे जाने लगे। लोगों का ज़बरदस्त इंगेजमेंट मिला। अनजान भी पूछने लगे कि ये गेम कहाँ से खरीद सकते हैं। इसी पल बहनों को एहसास हुआ कि उनके निजी स्ट्रेस बस्टर ने कारोबारी को जन्म दे दिया है और इसमें कारोबारी की संभावना है। ऐसे समय में जब टेक स्टार्टअप लागत बचाने के लिए AI जनरेटेड आर्टवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, इन बहनों ने एक साहसिक और उम्मीदों की विपरीत राह चुनी। हर चित्र अपने हाथों से बनाया। इस महीने की शुरुआत में उनके इस लिविंग रूम स्ट्रेस बस्टर ने $1,00,000 यानी कि करीब 95.45 लाख रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया। 40 देशों में इस गेम के ख़रीदार हैं। अगर हम बात करें सीख की, तो सीख ये है कि जब आप अपने फ़न को इनोवेटिव बनाते हैं, विचारों को डॉक्यूमेंट में उतारते हैं और उन्हें ऑनलाइन शेयर करते हैं, साथ ही मानते हैं कि आपकी कल्पना महज समय बिताने का साधन नहीं बल्कि एक संभावित संपत्ति है, तो कोई साधारण सा खेल भी ग्लोबल बिजनेस का बीज बन सकता है। उम्मीद करते हैं आप भी ज़रूर अपने जीवन में एंटरटेनमेंट को संजोएंगे और सकारात्मक रूप से अपना मनोरंजन करेंगे और कोई ना कोई अपने विचार को ज़रूर इस तरीके का बीज बनाएंगे जो आपके लिए भी इन बहनों की तरह मिसाल बन सकें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात।
3: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। समय है आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण सूचना साझा करने की, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि युवाओं के लिए रोज़गार से बड़ा कुछ नहीं है। तो रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए आपके समक्ष ये सूचना है, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPPSC ने 500 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 रखी गई है। आवेदन 25 जून से शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी आपको इनकी upsc.nic.in के रूप में रजिस्टर्ड आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होगी। आवेदन में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तत्पश्चात सूचित की जाएगी। परीक्षा प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से एक सप्ताह पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और परिणाम भी आपको आगे आने वाले समय में सूचित किया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए ₹125 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ₹65 है और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए ₹25 है। संदाय करने का तरीका ऑनलाइन रहेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS और कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट के माध्यम से आप शुल्क अदा कर सकते हैं। UPPSC एज रिलैक्सेशन नियमों के अनुसार कुछ कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, उसके लिए उन्हें नियमों को देखना होगा। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए तो किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना अनिवार्य है और स्नातक किसी

भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य है। विभिन्न विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, आप सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। 21 वर्ष तथा 40 वर्ष की गणना 1 जुलाई 2026 के अनुसार की जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 2026 को आवेदक को 21 वर्ष से कम का नहीं अथवा 40 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपके लिए आपको ये रोज़गार सूचना ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसके लिए आवेदन कर अपना रोज़गार ज़रूर सुनिश्चित करेंगे। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत और दीजिए अपने रेडियो मित्र आयुष तोमर को अनुमति।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: चलो आईटीआई।
6: मध्य प्रदेश की सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आईटीआई में उपलब्ध हैं रोजगार परक एवं कौशल आधारित विभिन्न ट्रेड्स, जो आपको रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश संबंधी सहायता के लिए आज ही अपनी नजदीकी शासकीय आईटीआई में संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 9:30 और 25 सेकंड हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं अब्दुल राशिद खान और इनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है सारंगी पर राग नट भैरव। तबले पर साथ दे रहे हैं महेश कुमार। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत आज कलाकार थे अब्दुल राशिद खान। इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया सारंगी वादन राग था नट भैरव। तबले पर साथ दे रहे थे महेश कुमार। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को हैं। ज़िले की चिट्ठी का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मंडला जिले की चिट्ठी। आलेख शशांक चौबे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व बारिश के दौरान 3 माह के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। यह अवधि वन्य जीवों के प्रजनन काल के रूप में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पार्क बंद होने के दौरान वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग द्वारा ऑपरेशन मानसून संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत जंगल क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हाथी गश्ती के साथ साथ पैदल गश्ती भी नियमित रूप से की जा रही है। इस वर्ष मानसून के देर से आगमन और लंबे समय तक बारिश का दौर थमने से जिले में खेती किसानी का कार्य प्रभावित हुआ था। खेतों में नमी की कमी के कारण खरीफ की फसलों की बोवनी और रोपाई में देरी हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिले में लगातार हो रही बारिश से सूखे खेतों को राहत मिली है। खेतों में पानी पहुंचने के बाद जिले में धान की मुख्य फसल की रोपाई का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। मंडला जिले में इस वर्ष अब तक 1 जून से 23 जुलाई तक कुल 426.9 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी अवधि में बीते वर्ष जिले में 986 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 103 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का वर्चुअली लोकार्पण बीते दिनों किया था। इसी क्रम में मंडला जिले के नैनपुर रेलवे स्टेशन के नए स्वरूप का भी उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण स्टेशन परिसर में किया गया। प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस मौके पर कहा कि स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, शौचालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और CCTV जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस मौके पर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लोकार्पण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री संपतिया विके, नगरपालिका अध्यक्ष नैनपुर कृष्णा पंजवानी, मंडल रेलवे प्रबंधक दीपक गुप्ता, प्रधान वाणिज्य प्रबंधक विजय कुमार सहित अन्य रेल अधिकारी तथा नागरिक उपस्थित रहे। जिले के शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट संकल्प का शुभारंभ बीते दिनों जिले में किया गया, जिसके प्रथम चरण में जिले के 80 शासकीय विद्यालयों में JEE नीट, CUET और CLAT जैसी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग, रिकॉर्डेड लेक्चर, मॉक टेस्ट और करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर करियर मार्गदर्शन पुस्तिका और करियर पाथ पोस्टर का विमोचन भी किया गया। मंडला कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे और पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी ने बीते दिनों पुलिस लाइन में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान का शुभारंभ किया। कलेक्टर ने नागरिकों से नशे के दुष्परिणामों के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशे के खिलाफ जनभागीदारी ही सबसे बड़ा हथियार है और अवैध कारोबार के विरुद्ध लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। कार्यक्रम के बाद पुलिस लाइन से बैगा बैगी चौराहे तक छात्र छात्राओं ने जन जागरूकता रैली निकाली। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत बीते दिनों जनपद पंचायत बीजा डांडी में विकास खंड स्तरीय कुक कम हेल्पर्स कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके प्रथम पुरस्कार के रूप में धनवाही की संतोषी बाई विके को 5,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर DJ मोहंती ने बताया है कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार के लिए संचालित दस्तक अभियान के दौरान 5,005 बच्चों की जाँच की गई है। 3 कुपोषित बच्चों की पहचान हुई है तथा 4,480 बच्चों को विटामिन ए की खुराक इस अभियान के तहत दी गई है। जिला न्यायालय मंडला तथा तहसील न्यायालय नैनपुर, निवास और बिछिया में बीते दिनों विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय मंडला लोक अदालत में 22 प्रकरणों का आपसी सहमति से समझौता कराया गया। इन मामलों में 52,03,048 रुपए की समझौता राशि पर आदेश पारित किए गए। सांदीपनी विद्यालय ग्राम सागर में गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रम में बीते दिनों बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों एवं मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। वर्ष 2025-26 के राज्यस्तरीय कायाकल्प अवार्ड में मंडला जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। सिविल अस्पताल नैनपुर ने 95.23% अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना वीबीजी रामजी के राष्ट्रीय शुभारंभ का आंध्र प्रदेश से सीधा प्रसारण बीते दिनों मंडला के रानी दुर्गावती महाविद्यालय में किया गया। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपति अविके ने कहा कि ये योजना वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत आमानाला में पौधरोपण कार्य का भूमि पूजन भी किया गया। मंडला जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे मंडला जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी भोपाल है।
3: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
0: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, जिसमें हम शामिल करते हैं आप के द्वारा की गई फरमाइशों को और सुनवाते हैं आपको आपके पसंदीदा गीत। कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमें बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से प्राप्त हुई है। सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली शर्मा और अनामिका शर्मा की। शिव मंदिर दाल मंडी से राजू बनारसी और राजकुमार यादव की। इसी के साथ हमें एक फरमाइश और प्राप्त हुई है। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, बेगम शबनम नाज, आसमा नाज अंसारी और बेगम प्रमिला जाटव। जेल रोड बक्सर से राज अंसारी, शिल्पी राज और उमा राज की। इंदिरा बिहारी दिल्ली से वसीम अंसारी, बेबी अंसारी और यामिनी राज। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र और जानवी यादव की। और इन सभी ने फरमाइश की है फिल्म डॉन से इस गीत की, जिसको लिखा है अनजान ने। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और आवाज़ किशोर कुमार और अलका याग्निक की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अभयता सिलोट। अनिल कुमार घोटके वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी घोटके, गायत्री घोटके, यज्ञेश घोटके की। इसी के साथ एक फरमाइश हमें और प्राप्त हुई है दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जामनिया जिला गाजीपुर से, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल की। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमसुल कमर राही। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म मेरे हमसफ़र से इस गीत की, जिसको बोल दिए हैं आनंद बख्शी ने। इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मुकेश कुमार ने। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर फिल्म मेरे हमसफ़र से ये गीत।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11:00 तक।

0: यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से। अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत की। इसी के साथ एक फरमाइश हमें और प्राप्त हुई है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और SK पप्पी की। ग्राम महेशवाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न घाड़े, वकील वाल्मीकि घाड़े, निनाजी धाड़े और स्वप्निल धाड़े की। संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, चांदनी यादव और दीपक यादव की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म हमजोली से इस गीत की, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह की। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू और सुजाता साहू की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म सरस्वती चंद्र से इस गीत की, जिसको लिखा है इंदीवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और आवाज़ मुकेश की है। इसी गीत की फरमाइश हमें खेल बाज़ार पानीपत से प्राप्त हुई है। भावना मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा उर्फ नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का की। और इन सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत।

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
1: कैन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना, ना।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: आराधना फिल्म का ये गीत जिसको लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत सचिन देव बर्मन का और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। इस गीत की फरमाइश हमको प्राप्त हुई थी महेर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत राही, श्रीमती सरिता और प्रिंस और एकांश की, बदलापुर मुंबई से प्रणीता सिद्धांत और अर्जुन की। अर्जुन के साथ साथ टुक टुक ने भी इसकी फरमाइश की थी। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि की, और इन सभी की फरमाइश पर हमने आपको सुनवाया था ये गीत। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और कार्यक्रम में कार्यक्रम के अगले गीत को शामिल कर रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और आवाज़ लक्ष्मीकांत, मुकेश और साथियों की है। आइए सुनते हैं ये गीत, और इस गीत की हमें फरमाइश प्राप्त हुई है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना, SK पप्पी, मिसरौद भोपाल से ऋषभ चतुर्वेदी, विभा चतुर्वेदी, राजश्री चतुर्वेदी और ब्रजेश चतुर्वेदी की, और इन सभी ने ये फरमाइश की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
3: आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार सलमान खान।
2: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात।
6: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है।

और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समर राज और आर्यन के साथ साथ बेबी आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म कुली नंबर वन से इस गीत की, जिसको लिखा है समीर ने, संगीत आनंद मिलिंद का है और आवाज़ कुमार सानू अलका याग्निक की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:57 और 35 सेकंड हुए हैं। अब से कुछ ही देर में इस घंटे की खास खबर का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में कहा है कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों संबंधी प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का हर संभव प्रयास रहेगा कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पारित कराया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज पन्ना जिले में 204 करोड़ 26 लाख रुपये लागत के 22 विकास कार्यों की सौगात देंगे, जिसमें 94 करोड़ 63 लाख रुपये के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण और 109 करोड़ 63 लाख रुपये के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 26 दिसंबर वीर बाल दिवस को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल कर पूरे प्रदेश को सेवा गतिविधियों के साथ मनाने के निर्देश दिए हैं। IRCTC श्रद्धालुओं के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन कर रहा है, जिससे यात्री पुरी, गंगासागर, गया, वाराणसी और अयोध्या सहित कई प्रमुख तीर्थस्थलों की यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही ठहरने, भोजन, दर्शनीय स्थल भ्रमण और बीमा जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की औपचारिक वापसी यात्रा कराई जाएगी और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आज भोपाल में एक दिवसीय राजभाषा कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें समिति के सदस्य कार्यालयों के प्रतिभागियों को राजभाषा के सैद्धांतिक, व्यावहारिक और तकनीकी पक्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: 5,93 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। श्रोताओं, यदि आपने कॉल हफ्ते भर के अंदर किया है तो कृपया नए हमारे जो श्रोता हैं उनको मौका दीजिएगा और फोन लगाइए हफ्ते भर के बाद। और अगर आपका फोन हफ्ता या 10 दिन से पहले लगा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि 2660902 और भोपाल का एसटीटी कोड है 0755। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। हेलो
2: हेलो,
1: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
2: पंडित शिवनारायण तिवारी जी बोल रहे हैं सागर से।
1: सागर से तिवारी जी, सागर क्या हाल चाल है तिवारी जी?
2: अच्छी, बारिश हो रही, मुझे मजा आ रहा है पानी का।
1: मजा आ रहा है?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मतलब ये है कि कुदरत भी जो है, प्रकृति है, वो भी चाहती है कि मजे इंसानों को दिए जाए ताकि वो लोग भी खुश रहें।
2: ठंडक भी है।
1: हाँ आज ठंडक भी है, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: जावेद सर
1: जी, जी जी तो
2: नमस्कार।
1: हाँ तो आपने जब कॉल किया है तो लाजमी है कि आपने पहले से गाना सोच लिया होगा कि कौन सा गाना
2: सोच लिया है। फूल और कांटे का।
1: फूल और कांटे का।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मालेगांव से बोल रहा हूँ, तुलसीराम व्यास।
0: आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, एक बार नाम दोबारा से बता दीजिए।
1: तुलसीराम व्यास बोली होगी ना, खेतों में सोयाबीन की बोली होगी है,
0: हाँ
1: तो पानी की थोड़ी आवश्यकता है।
0: जी
1: महाराष्ट्र में क्या कि पानी कम गिरता है।
0: जी
1: हाँ, महाराष्ट्र में कम गिरता है, हमारे साइड में तो बहुत ही कम गिरता है। मालेगांव साइड में
0: हाँ
1: आपको ये इसका डिस्ट्रिक्ट वाशिम आता है,
0: जी
1: वाशिम डिस्ट्रिक्ट में मालेगांव कहते हैं।
0: हाँ। नहीं, मौसम पानी वानी नहीं गिर रहा अभी वहां पर।
1: हाँ, पानी की आवश्यकता तो कई कई जगह पर तो बाढ़ आ रही है।
0: अच्छा, ये बताइए, जब आपने कॉल किया है पहले से गाना सोच लिया होगा कि कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: आपका शुभ नाम।
0: जावेद खान बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, आप गाना लिख लीजिए सीआईडी का,
0: सीआईडी का कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: दीवाने हैं दीवानों को एक नजर चाहिए।
0: अच्छा, दीवाने हैं दीवानों को, ना घर चाहिए ना दर चाहिए ना और पता नहीं कुछ भी नहीं
1: हाँ,
0: चाहिए,
1: वही वही
0: बस है
1: सीआईडी
0: ना।
1: का पुराना पिक्चर है ये।
0: हाँ, समझ गए। और ये जो
1: हाँ
0: है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की
1: हाँ
0: आवाज़ है इसमें ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सत्य बोला।
0: ये गाना दरअसल सीआईडी का नहीं बल्कि जंजीर फिल्म का है, और इसको गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी ने गाया है। सुनते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम फोन करेंगे सुने में आप सभी का स्वागत है। और हमारे अगले कॉलर कौन है, हम बात करते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: सर दुले सिंह यादव बोल रहा हूं, ग्राम बापचा, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश से।
0: यादव जी क्या हाल चाल है?
1: सर बढ़िया है, सब बढ़िया, खेती भी अच्छी है सर, फसलें बढ़िया है इस साल।
0: हाँ हाँ, पानी भी अच्छा गिर गया।
1: हाँ पानी भी अच्छा गिर रहा सर, और यहीं से फोन लगाया मैंने, कहा देखा फोन लग जाए तो लग गया सर।
0: अरे देखिए, सच्चे मन से अगर हम कोई चीज चाहते हैं तो वो जरूर हो जाती है।
1: हाँ सर
0: है ना। तो यादव जी, अच्छा सबसे पहले तो आपने जब कॉल किया तो पहले से गाना सोच लिया होगा फोन करें गीत सुने में, आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: सर गाना तो ये सुना दीजिए, नदियां के पार का, वो गुंजारे चंदन वाला।
0: नदियां के पार का, बिल्कुल हम आपको वो गाना सुनवा देते हैं। तो गुंजन रे, उसके बोल गुंजन रे के हमने आपके नोट भी कर लिया और गाना भी हमें हो गए।
1: बताता हूँ सर गाना, गुंजारे।
0: हाँ हाँ, हेमलता की आवाज है, हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज है, मुझे मालूम
1: की आवाज में।
0: बस बस, तो लीजिए सुनिएगा ये गाना।
1: ठीक सर, ओके, धन्यवाद सर,
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं ग्राम उलझान बोलिए, गेंदालाल परिहार।
0: गेंदालाल जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया सर।
0: और कैसा मौसम है आपके आसपास का? ठीक ठाक, बेहतरीन?
1: नहीं, बढ़िया मौसम है, पानी गिरा था कल थोड़ा।
0: हाँ,
1: फसल भी अच्छी है यहाँ पे।
0: फसल अच्छी है, चलिए अच्छी, बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: तो आपने कॉल किया है तो पहला फर्ज है कि आप अपना गाना बता दीजिए।
1: फिल्म का नाम है गुलामी।
0: गुलामी फिल्म का गाना, बिल्कुल ठीक है। गुलामी का कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: वो जिहाल मस्ती में कुन बजन।
0: अच्छा, गुलामी फिल्म का, चलिए ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं। और सुनाइए, बाकी मौसम अच्छा है?
1: मौसम अच्छा, बदल हो रहा है, ऐसा हल्की हल्की बारिश भी है।
0: हाँ, तो चलिए आप रेडियो सेट पर।
1: सर जी, हमारे कुलासी नदी, आप नाम सुना हो, कुलासी नदी किनारे गाँव है यहाँ पे।
0: हाँ हाँ,
1: उसी किनारे बसा हुआ गाँव हमारा।
0: तो कहाँ है ये, कौन सा गांव है?
1: उलझावन।
0: उलझावन
1: जी।
0: अच्छा, गांव लोग सुलझावन है और गांव उलझावन है।
1: पता नहीं कब से नाम है सर ये तो।
0: हाँ चलो, अच्छा है, जो भी है अच्छे नाम होते हैं, ये भी किस बात पे पड़ा ये तो नहीं मालूम होता, लेकिन नाम से कभी कभी इतिहास अगर निकल कर आता है तो बहुत अच्छा निकलता है।
1: जी सर जी।
0: चलिए सुनिएगा ये रेडियो सेट पर अपने गाना।
1: जी, धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुनो में आप सभी का स्वागत है। अगले कॉलर कौन है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार।
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: अच्छा रानू जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं,
1: जी जी
0: तो
1: और आपके क्या हाल चाल है?
0: बस बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप बताइए, आपके यहाँ का मौसम कैसा है, कैसा?
1: हमारे यहाँ तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है,
0: अच्छा
1: और वो भोपाल में भी वैसी ही हो रही है शायद।
0: अच्छा तो तेज क्यों नहीं हो रही आपके यहाँ, कुछ उसका आइडिया है?
1: हो गई, तेज भी होगी।
0: अच्छा फिर ठीक है। तो अच्छा देखिए, आपने कॉल किया है तो सबसे पहले तो मुझे गाना बता दीजिए।
1: हाँ, मूवी का नाम है अनजाने, और गाने के बोले काले काले बादल जब भी छाएंगे, ये तो पक्का है।
0: हाँ, हम आपको गाना सुनवा देते हैं। और
1: जी, और
0: जी
1: तो डेडिकेट आपको मेरी बहन नंदनी को रहेगा।

0: मैं विजय पांडे
1: जी, विजय
0: थाना पछड़वा जनपद बलरामपुर से बोल रहा हूँ। दो लाइन पहले सुनाना चाहता हूँ।
1: जी बताइए।
0: जवानी चार दिन की मेहमान है, क्यों मगरूर होती है? अगर देश के काम आ जाए तो बड़ी मशहूर हो जाती है।
1: वाह क्या बात है।
0: काबिले सद एहतराम जनाब जावेद खान साहब को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार आदाब।
1: नमस्कार आदाब। क्या बात है, क्या बात है, इतना शानदार लिख लेते हैं आप।
0: जी मैं अपना परिचय बताऊं, मैं विजय कुमार पांडे थाना पछड़वा जनपद बलरामपुर से बोल रहा हूं। आपका तहे दिल

0: कार्यक्रम फोन करेंगे सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ सर जी।
0: दिनकर जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया मस्त है। और सर जी को यहाँ राम की तपोभूमि से सत सत

0: रहा हूँ।
1: देखिए मगर हम आपके साथ हैं ना वहाँ पर।
2: जी बिल्कुल सर जी, आप हमारे साथ हैं और आपका प्रोग्राम भी हमारे साथ चल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कौन सा गाना सुनेंगे?
2: तेरे दो टकिए की नौकरी से मेरे लाखों का समझ आए, हाय हाय रे मजबूरी।
1: अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, ये बहुत शानदार गाना है, हम आपको सुनवाते हैं।
2: प्रेम दास बाबा और मानकारी से फूलचंद पाल जी, इनके साथ ये गीत सुनूंगा।
1: अरे वाह क्या बात है, क्या बात है।

0: अगले कॉलर हमारे कौन है? हेलो
1: हेलो।
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ सर जी नमस्कार,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हम भागचंद्र साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज बासोदा से। बिल्कुल
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपकी तो हम नहीं मिस होता है वैसे।
0: हाँ, तो अच्छा,
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल।
0: आपने देखिए कॉल किया है, तो सबसे पहले हमें गाना बता दीजिए, बाकी

0: बाकी बातें हम लगातार करते रहेंगे।
1: बिल्कुल, फिल्म का नाम है जीत।
0: जीत जी, कौन सी वाली जीत?
1: हाँ,
0: तीन
1: धरती पे चाहे जहां भी रहे, हाँ
0: धरती पे चाहे कहें कहीं भी रहे या जहां भी रहे, क्या है?
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मौसम कैसा है भोपाल का सर?
0: बहुत अच्छा है तो।
1: हाँ, यहाँ गंजबासोदा में पानी गिर रहा है सर।
0: बहुत
1: बिल्कुल सर, वो जरूरी है, पानी तो
0: बिल्कुल,
1: जरूरी
0: ये
1: था।
0: पानी गिरता रहना चाहिए तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर,
0: और आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह कॉल करते रहिएगा और सुनते रहिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आप सभी के स्वागत है, और हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि यदि आपका फोन हफ्ते भर के अंदर लगा है तो कृपया अगले नए श्रोताओं को हमारे मौका दीजिए ताकि वो इस कार्यक्रम को से जुड़ सके और वो भी हमारे नियमित श्रोता बन सकें। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अरविंद अग्रवाल जी। जी अरविंद जी,
1: जी
0: क्या हाल चाल है?
1: एकदम बढ़िया है, आप भी अच्छे होंगे। जी
0: बहुत अच्छे।
1: जी
0: तो अरविंद साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
1: श्रीनगर जिला महोबा
0: महोबा,
1: से,
0: मध्य प्रदेश,
1: उत्तर
0: यूपी,
1: प्रदेश।
0: उत्तर प्रदेश। जी।
1: जी
0: तो देखिए आपने कॉल किया और लाजमी है कि आपने फोन करने से पहले सोच लिया होगा कि आपको कौन सा गाना सुनना है।
1: सबक फिल्म
0: सबक
1: जी
0: जी, इसका गाना कौन सा?
1: बरखा रानी जरा जम के बर
0: अच्छा, बरखा रानी जरा जम के बर, सो मुकेश जी की आवाज।
1: जी।
0: अच्छा चलिए, हम आपको ये गाना सुनवा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में कहा है कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों संबंधी प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पारित करने के लिए रखा जाएगा। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि डीआरडीओ के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पन्ना जिले में 204 करोड़ 26 लाख रुपए लागत के 22 विकास कार्यों की सौगात देंगे। आईआरसीटीसी श्रद्धालुओं के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन कर रहा है। इससे यात्री पुरी, गंगा सागर, गया, वाराणसी और अयोध्या सहित कई प्रमुख तीर्थस्थलों की यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही ठहरने, भोजन, दर्शनीय स्थल भ्रमण और बीमा जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के डिजिटल वैल्यूएशन की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। वहीं विद्यार्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराने की कार्य योजना पर भी अमल किया जा रहा है। देश में घड़ियाल संरक्षण के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश वन विभाग ने हाई अलर्ट घोषित किया है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को कल 7 विकेट से हराया। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। पहला गीत सुनेंगे फिल्म हिना से, स्वर लता मंगेशकर के, गीतकार रविंद्र जैन, संगीतकार रविंद्र जैन। फरमाइश छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से है। श्रोता हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश। अगले श्रोता आष्टा सीहोर से हैं। रामबाबू परमार, विक्रम मालविया, अर्जुन, जितेंद्र, किरण परमार, रशिका मेवाड़ा, शीतल मेवाड़ा, राम सिंह और संतोष। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म गुरु से। गीतकार गुलजार, संगीतकार ए आर रहमान। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है अंबेडकर चौक खुरई से। श्रोता है राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी, रोहित, ललू राम, पूरन, रोहित, छोटू, डुंडुन। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में अगला गीत सुनेंगे पाकिजा से। गीतकार कमल अमरोही, संगीतकार गुलाम मोहम्मद। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है बक्सर बिहार से। श्रोता हैं शरफुद्दीन अंसारी, वलीउल्ला अंसारी, राज एसडी अंसारी और नरेंद्र कुमार यादव। इन्हीं के साथ दिल्ली से हैं डब्ल्यू अंसारी, डुमराव से हैं सुनील कुमार वर्मा और मुस्तफ़ाबाद दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना। अगले श्रोता बक्सर से ही हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत सुनेंगे फिल्म करण अर्जुन से उदित नारायण और साथियों के स्वर में, गीतकार इंदीवर, संगीतकार राजेश रोशन। फरमाइश हमें आई है सपना संगीता रोड इंदौर से। श्रोता हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया। इन्हीं के साथ हैं लोकेंद्र, विक्रम, अर्जुन। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

सुनिधि चौहान के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म द डर्टी पिक्चर से। गीतकार अजय अरोड़ा ने संगीतकार विशाल शेखर। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कवर कॉलोनी बड़वा से। श्रोता हैं प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी शिमाली और मीनूराज शिमाली। अगले श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मणिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पिपरिया से दुर्गाराम साहू। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। सूचना समाप्त हुई।

मध्य प्रदेश की सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आईटीआई में उपलब्ध हैं रोजगार परक एवं कौशल आधारित विभिन्न ट्रेड्स, जो आपको रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश संबंधी सहायता के लिए आज ही अपनी नजदीकी शासकीय आईटीआई में संपर्क कीजिए।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कंतारे का 9वां भाग।
3: प्रस्तुत है महेश कटारे के लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 9वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महालय से निकल जाते हैं। वृक वन में एक अजनबी राजा को प्राण बचाने हेतु बबूल के वृक्ष पर चढ़ जाने की युक्ति सुझाता है और राजा के प्रिय अश्व नीलमणि

शची और राजा भर्तहरि का मिलन हो जाता है। भर्तहरि उसे कहते हैं कि वो एक रात अगर और रुक जाते हैं तो उससे क्या होगा, अंततः उन्हें जाना ही होगा। शची को अपनी भार्या मानकर वो अपनी पहचान उस पर प्रकट कर देते हैं। भर्तहरि के जाने की सूचना शची वृंदा को देती है।

0: वो जा रहा है भौजी।
1: क्या तुमने उसे रोका नहीं?
0: नहीं, वो लौटकर अवश्य आएगा,
1: ऐसा उसने कहा है।
0: नहीं, फिर मैं जानती हूँ।
1: मैं उसे रोकूं?
0: नहीं, मैं उसे गांव के सिवान तक छोड़ने जा रही हूँ। राह के लिए उसने एक लकुटी चाही है, वो अपना सब कुछ यही छोड़कर जा रहा है।
1: सब कुछ अर्थात क्या?
0: अपनी खड़क, अपना राजसी वेश।
1: तुम्हें कुछ बताया कि वो कौन है, कहां से आया है?
0: कहता है कि अवंती नरेश था, अब केवल भरथरी है।
1: हे प्रभु, अवधूत और अवंती नरेश, राजा भरथरी। अनिरुद्ध के लिए दी गई खड़ग, रक्षा का दायित्व और अवंती राज्य की अमूल्य तेजस्वी खड़ग, और बदले में सिर्फ एक लकुट। दैवी विधान को कोई नहीं जानता। शची, ये ले एक लकुट और उन्हें विदा करो जाकर।
0: जी भौजी।

0: चल पड़े थे भर्तहरि, कहाँ वो स्वयं नहीं समझ पा रहे थे। वो अवंती को छोड़ आए थे, लेकिन अवंती उन्हें छोड़ नहीं रही थी। क्या लौट जाएं? रानी पिंगला को क्षमा कर दें? धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। सामान्य क्या होगा? वो राजमहल, वही सिंहासन, स्वार्थी सभासद, भ्रष्ट राजसेवक, थोथे जय जयकार, कामिनी कंचन का प्रमत्त प्रवाह और उज्जैनी। राजा आगे बढ़ गए हैं, पैठार गांव पीछे रह गया है, लेकिन पैठार भर्तहरि का पीछा कर रहा है। उन्हें रह रहकर शची की स्मृति आ रही है।
1: शची,
2: मैं प्रतीक्षा कर रही हूं राजन।
1: शची, मैं ग्लानिग्रस्त हूं, मैंने तुम्हें वासना के पंख में खींच लिया, अपराधी हूं।
2: इसमें अपराध कैसा? एक स्त्री ने चाहा और एक पुरुष ने दिया।
1: किंतु मर्यादा?
2: मर्यादा कहाँ टूटी है राजन?
1: मेरे वेश की।
2: वो तो उड़ा हुआ है, नाटकी। वेश व्यक्ति के अंदर का प्रमाण नहीं होता राजन। जो हो चुका है उसे लौटाया नहीं जा सकता। फिर अकेले तुम ही तो दोषी नहीं हो। नदी उमड़कर सागर की तरफ दौड़ती है और सागर उसे अंक में समेट लेता है। ये प्रकृति का स्वभाव है राजन।
1: किंतु मनुष्य नदी या समुद्र नहीं है, वो चेतना संपन्न है, विवेकवान है। वो समाज में रहता है, नीति और मर्यादा उसे निर्धारित करती है। शची, मैंने तुम्हें अपने अंग के रूप में स्वीकार कर लिया है, यही मेरी ग्लानि का निराकरण है। समय पर तो मेरा वश नहीं है, मैं नहीं जानता कि कब, किंतु मैं लौटूंगा अवश्य। शची, यही मेरा प्रायश्चित होगा।
0: पीछे मुड़कर देखते हैं भर्तहरि, कहीं कोई नहीं है, बस छितराया हुआ बियावान जंगल गुमसुम पसरा हुआ है। सूरज के ताप में अकेले धरती की गंध के साथ वो आगे बढ़े जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भर्तहरि?
1: एक प्रश्न और है भर्तहरि, तुम हो क्या? राजा हो, कवि हो, प्रेमी हो, या केवल पशु? पिंगला, चंपा, शची और अब चारुमित्रा का आकर्षण। नहीं नहीं, चारुमित्रा की प्रतिभा से प्रेरित हूं मैं, उसकी कंचन काया के प्रति नहीं। चारुमित्रा ने मेरे काव्य का मर्म समझा है, स्याहत वो मेरे अनुत्तरित असमंजस का कोई उत्तर भी उसके पास हो। वो तो बसंत की प्रेयसी है।
0: तभी बादलों की तेज गड़गड़ाहट, दहाड़, पत्थर टकराने की भयावह आवाजें आने लगती हैं। भैरव का कड़कड़ाता हुआ स्वर गूंजता है।
3: पहचाना मुझे?
1: ओह, आप वही हैं ना जिन्होंने वृकवन में मेरी रक्षा की थी?
3: मैं कौन होता हूं रक्षा करने वाला? रक्षा तो आदिनाथ करते हैं, मैं उनका किंचन दास हूं। तुम अब कहां जा रहे हो?
1: पता नहीं।
3: उज्जैनी लौटोगे?
1: वहां तो वही सब है जिसे छोड़कर मैं भाग निकला था।
3: ग्रहण करना और पलायन, ये तो तुम्हारी नियति है भर्तहरि, जो अब तुम्हारा स्वभाव बन गई है।
1: आपने वहां भेड़ियों से मुझे बचाया था, इस समय भी आपका आगमन यूं ही नहीं हुआ होगा। आप ही बताएं, क्या मुझे उज्जैनी लौटना चाहिए?
3: लौटना ही पड़ेगा, तेरी पत्नी भैरव साधना कर रही है, वो तुझे बुला रही है।
1: किंतु
3: तू कहेगा कि पुंश्चली पत्नी के पास तू लौटना नहीं चाहता? प्रमाण क्या है तेरे पास पिंगला के पतन का तेरे पास कोई प्रमाण नहीं, और तू उसकी दासी चंपा का उसके सामने उसी की शैया पर भोग करता है राजा भर्तरी। अभी अभी एक भोली सहृदय वन कन्या की देह गंध तुझसे आ रही है। छी, ये शारदोत्सव, मदनोत्सव, वसंतोत्सव क्या तेरी वासना की क्रीड़ा नहीं है? रानी पिंगला को दोष देता है।
1: फिर मुझे क्यों भेड़ियों का भोज्य नहीं बनने दिया? उफनती हुई नदी में डूब क्यों नहीं जाने दिया? क्यों क्यों मुझ जैसा पतित जीवित क्यों है?
3: इसलिए क्योंकि प्रजा को एक राजा चाहिए। अनेक बार समय को भी अनेक बुरों के बीच में से उसे चुनना पड़ता है जो कम बुरा हो। तू तो बहुत विद्वान है, जानता होगा कि राजा बिना प्रजा नष्ट हो जाती है। असावधानी से भूमि और स्त्री पर हस्तगता हो जाती है।
1: आप हैं कौन? काल पुरुष, त्रिकालदर्शी या फिर?
3: गुरु ने मुझे नाम दिया है काल भैरव। मैं आदिनाथ महाकाल का कुकुर हूं, उसके द्वारा निर्देशित संचालित। महाकाल कहता है भौंक तो मैं भौंकने लगता हूं, महाकाल कहता है भाग तो मैं भागने लगता हूं। ये मैं हूं भर्तरी, इतना सा मैं। विधाता जब किसी को कुछ अतिरिक्त देता है तो उससे कुछ छीन भी लेता है, उससे संतुलन स्थापित बना रहता है। उसने मुझे भूत और भविष्य तो दिया, किंतु वर्तमान मुझसे ले लिया। वर्तमान में रुककर भविष्य को रचने की क्षमता मेरे पास नहीं है। आदिनाथ महाकाल ने तेरे पास आने की प्रेरणा मुझे इसलिए दी है कि तू कुछ ऐसा रच सके जैसा

0: विलंब न कर भर्थरी, वो तेरी प्रतीक्षा में है।
1: किंतु भैरव, शची के प्रति मुझसे जो अपराध हुआ है उस ग्लानी का बोझ मन पर है।
0: वो तेरी साधना में सहायक है। शची 32 लक्षणों से संपन्न पद्मिनी स्त्री है। तेरा यह लोक और परलोक वो सुधारेगी। चारुमित्रा पद्मिनी है, तेरी वासना को वो सोख लेगी। जब सांसारिकता से मन भर जाए तो काल भैरव के पथ पर आ जाना। अब मैं जाऊंगा।
1: भैरव, भैरव मेरा नीलमणि कहाँ है?
0: तेरी अश्वशाला में, उसकी चिंता ना कर।
2: एक साथ सैकड़ों पक्षियों के पंख फड़फड़ाने की आवाजें आती हैं। भैरव जा चुका है। अट्टहास की प्रतिध्वनि पीछे छूट गई है।
1: भैरव, भैरव, भैरव, ओ, चले गए भैरव। चंद्रपुर का मार्ग भी नहीं बता गए, ना तो मार्ग और ना यहां से दूरी ज्ञात। स्वयं ही खोजना पड़ेगा यात्रा पथ। चलो चलो भर्तृहरि।
2: भैरव से भेंट के बाद भर्तृहरि में जैसे ऊर्जा का नया संचार हो गया। इस ऊर्जा में समाविष्ट थी उत्सुकता, आग्रह और जिज्ञासा। अब उनके मन में ना तो मलिनता ही थी और ना देह में क्लांति। अभी संध्या नहीं हुई थी। चल पड़े भर्तृहरि ये सोचकर कि कोई पथ तो होगा जो उन्हें चंद्रपुर पहुंचा देगा। आदिनाथ महाकाल की यही इच्छा है, भैरव का निर्देश भी यही है। और चलते चले भर्तृहरि एक गांव के निकट पहुंचे। आम, अनार, अमरूद, जंबू वृक्ष से घिरी हुई पर्णकुटी, किंतु सर्वत्र निर्जन सुनसान, दृश्यावली से झांकता हुआ रहस्य, किंचित भयभीत करता हुआ, कुछ कुछ अपने पास बुलाता हुआ। पर्ण कुटी के द्वार पर भर्तृहरि ठिठकते हैं। उन्होंने देखा अलस भाव से कुंडली में बैठा एक सर्प, पास ही से जाता हुआ मयूर कूदता हुआ। सर्प ने चौंक कर हन उठाया। कहीं से श्वान का एक जोड़ा भौंकता हुआ सामने आ गया। भर्तृहरि ने कुटी का द्वार खटखटाया।
1: कोई है? मैं अतिथि हूं।
2: कुत्तों के भौंकने की और मोर के चीखने की आवाजें आने लगती हैं।
1: द्वार पर अतिथि उपस्थित है, रात भर के विश्राम के लिए आश्रय का आकांक्षी है।
3: अतिथि का स्वागत है, आइए पधारिए।
1: देवी, आप कौन हैं? कहाँ हैं? कृपया प्रत्यक्ष आकर दर्शन दें। कुटी में मेरा प्रवेश संभव नहीं। द्वार पर नागराज रखवाली कर रहे हैं। बाहर श्वान है, सचेत और सावधान। कोई मनुष्य दिखता नहीं।
3: क्या तुम मनुष्य नहीं? शांत हो जाओ चंद्र चंडी।
2: कुत्तों का भौंकना रुक जाता है। रहस्यमय स्वर तेज होते हैं।
3: आ जाओ, भीतर आ जाओ।
1: आप यहाँ अकेली रहती हैं? मेरा आशय है कि कोई पुरुष यहाँ नहीं रहता।
3: अकेली? अकेली नहीं हूँ मैं, अरे पूरे परिवार और समाज के साथ रहती हूँ। सूर्यास्त के बाद वो सब यहीं होंगे।

0: झिझक क्यों रहे हैं आप? आइए, भीतर आइए। दूर से आ रहे हैं ना? जलपान कीजिए, विश्राम कीजिए। कुछ समय में सूरज डूब जाएगा और वो सब यहाँ होंगे। अतिथि का सत्कार हमारे लिए उत्सव समान होता है।
1: आता हूँ देवी, सूर्यास्त होने वाला है। पता नहीं आगे कोई ग्राम कितनी दूर हो, रात को यहीं बिताना है। मैं अपनी पादुकाएं बाहर उतार आया हूँ, उन्हें ले आऊं?
0: वो आ जाएंगी, आप तो आइए। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? ठहरी ठहरी, अब आगे मनोज, रुक जा रुक जा।
2: जान गए थे भरथरी ये मानव रहित ग्राम, सर्प श्वान और मयूर, कुटी गली चौबारे, आम और पीपल के पेड़ यथार्थ और वास्तविक नहीं है। पर्णकुटी में सीमित स्त्री कोई छलावा है जिसके पास ऐंद्रजालिक सृष्टि रची गई है, जादू की नगरी और अतिथि के आगमन पर परिवार का उत्सव, प्रेत आत्माओं का विधान। भरथरी वहां से भागे। और उनके पीछे पीछे जीभ लपलपाता, दांत चमकाता, रुधिर लोलुप विशाल श्वान समूह। सामने एक नदी थी, भरथरी नदी में कूद पड़े। श्वान दल भी उनके पीछे पानी में समा गया। भरथरी दूसरे किनारे पर पहुंचे और तीर पर निकले। श्वान दल नदी के बीच में था, किनारा चढ़ने की चेष्टा किए बिना भरथरी रुके नहीं। वो समझ गए नदी भी जादू नगरी का सीमांत है। भरथरी फिर भी भागते रहे जब तक कि कोई गांव सामने ना आ जाए, किसी मनुष्य को वो देख ना ले। गांव का वातावरण है, संध्या का समय है, घर लौटते हुए चौपायों के गले में बजती घंटियां बज रही हैं, घोंसलों में वापस आते पखेरुओं का कलरव हो रहा है, पंख फड़फड़ाने की आवाजें आ रही हैं, लोगों के बोलने का स्वर पास आता जा रहा है। भरथरी सोचते हैं,
1: प्रतीत होता है निकट ही कोई ग्राम है। बंधु सुने, क्या यहां रात्रि विश्राम मिल सकेगा?
3: अवश्य ही, तनिक ठहरे, आपका स्वागत है। कहें कहां से आ रहे हैं और इस मार्ग पर कैसे आए?
1: ये तो आप देख ही रहे हैं।
3: आप मनहुष ही है ना?
1: अब तक तो हूं।
3: इस मार्ग पर कैसे पहुंचे?
1: चलते चलते बिना किसी योजना के जा पहुंचा था। क्यों, कोई शंका है?
3: बहुत भाग्यवान है आप, देवताओं का आशीर्वाद है आपके साथ। आइए चलते हैं, जल ग्रहण करें।
1: जल भी आपके सौम्य भाव जितना ही मीठा है। धन्यवाद, आपके प्रश्नों ने मुझे असमंजस में डाल दिया। ऐसा क्या है उस मार्ग पर?
3: वस्तुतः आप जिस मार्ग से आए हैं उस पर कोई नहीं आता जाता। जहां तक मेरी स्मृति है, मैंने पहली बार किसी व्यक्ति को वहां से जीवित आते देखा है। सूर्यास्त के बाद तो सैनिक टुकड़ियां भी वहां से नहीं निकलती।
1: किंतु मार्ग स्पष्ट है, आवागमन के चिन्ह है। मुझे एक साफ सुथरा गांव भी राह में मिला था।
3: छल्ला थी वो, सब एक इंद्रजाल है।
1: इस प्रेतपुरी का रहस्य क्या है भद्र? आपका गांव तो बिल्कुल निकट है और सुरक्षित भी। मेरा अनुभव

0: विचित्र है। मैंने वहां प्रेतनी के हाथ का कंकाल देखा है जो सांपों से भरी कुटिया में रहती है। वहां एक श्वान युगल है जो कभी दिखता है कभी छुपता है। श्वानों के एक बड़े दल ने नदी तक मेरा पीछा किया था और मेरे इस पार आते ही वो लौट गए।
1: अरे लगता है तुम कभी सैनिक रहे होगे, कोई और होता तो उसके प्राण ही निकल जाते। मैं अधिक कुछ नहीं जानता। एक योगी ने बताया था कि यह प्रेतपुर संध्या होते ही निर्मित होता है और सुबह विलुप्त हो जाता है। इस बीच वहां कोई नहीं जाता। प्रेत रात्रि में प्रकट होते हैं और वहां जो भी भटकता हुआ मिलता है उसे मारकर प्रेत ही बना लेते हैं। एक बार तो पूरा सार्थवाही इस प्रेत लीला के चंगुल में घिरकर नष्ट हो गया था। ईश्वर ने या कहो भाग्य ने तुम्हारी रक्षा की है अतिथि।
0: हाँ, कोई अज्ञात शक्ति बार बार सचेत कर रही थी, यहां से भागो, शीघ्र भागो। स्यात वो प्राणों का भय था या महाकाल ने समय रहते सद्बुद्धि दे दी।
2: उत्सुक ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। ये भीड़ जानना चाहती है कि भर्तहरि प्रेतपुर से कैसे बच निकले। उनकी इसी संदर्भ में बातचीत हो रही है। एक ग्रामीण पूछता है,
3: महानुभाव आप वहां कैसे जा पहुंचे? आ कहां से रहे थे आप?
0: प्रातःकाल पैठार से यात्रा प्रारंभ की थी।
3: वो तो हमारा कुलग्राम है, लेकिन आपको कभी वहां देखा नहीं।
0: सत्य कह रहे हैं आप, मैं पैठार का निवासी नहीं, गृह त्यागी हूं। कुछ दिन वहां रहा था।
3: अब फिर तो पैठार के मुखिया वीरभद्र से परिचित ही होंगे।
0: हाँ,
3: हमारे काका हैं। उनका स्वास्थ्य कैसा था?
0: वो भी स्वस्थ हैं और उनका परिवार भी। वृंदा और अनिरुद्ध भी अच्छे हैं।
3: ओहो, तुम यदि भूत प्रेत भी हो तब भी हमारे बंधु बांधव ही निकले। अरे तुमने ग्रामीणी की पुत्री शची के विषय में तो कुछ बताया ही नहीं। मैंने 3 वर्षों से उसे देखा नहीं। बहुत नटखट है ना?
2: शची का नाम सुनते ही भर्तहरि के मन में घंटियां, पाजेब के नुपुर, सितार के तार बज उठते हैं।
0: शची, शची,
3: लगता है अभ्यागत विश्राम करना चाहते हैं आप।
0: कल जल्दी ही मैं चंद्रपुर की ओर निकलूंगा। कितनी दूर होगा यहां से चंद्रपुर?
3: मैंने सुना तो है पर कभी गया नहीं। कहने वालों का कहना है कि वहां की स्त्रियां बहुत सुंदर होती हैं, चंद्रवदिनी और मृगलोचिनी। जोगी संभल के जाना होगा।
2: भर्तहरि सोचते हैं कि इस गांव के लोग कितने निर्मल और कितने

0: अभी आप महेश कटारे के लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का नवा भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार सुभाष सक्सेना, शचि विभा श्रीवास्तव, वृंदा सरोज शर्मा, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, भैरव आलोक चटर्जी, प्रेत स्त्री कविता इसरानी, ग्रामणी रईस हसन, ग्रामीण पुरुष श्याम मुंशी। परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आपको याद होगा कि राजा भर्तृहरि महालय से निकलकर वृकवन, पैठार गांव और प्रेतपुरी से होते हुए चंद्रपुर की ओर चल रहे हैं। इन सब जगह से वे कैसे सुरक्षित निकले, ये रहस्य अगले भाग में खुलेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आपने सुना कामिनी काय कांतारे की नवी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में कहा है कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों के संबंधी प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पारित करने हेतु रखा जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारतीय एथलीट जोश, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता की भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। आज देश भर में आयकर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन विकसित भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। इस अवसर पर भोपाल के नवीन आयकर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारत ने 350 किलोग्राम के थल श्रेणी का पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीक क्षमताओं को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज पन्ना जिले में 204 करोड़ 26 लाख रुपए लागत के 22 विकास कार्यों की सौगात देंगे। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के डिजिटल वैल्यूएशन की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। वहीं विद्यार्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराने की कार्ययोजना पर भी अमल किया जा रहा है। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हमारे महिला सभा के सभी सुनने वाले प्रिय स्नेहिल श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। आज के महिला सभा कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो मित्र गुड़िया तिवारी। करती हूँ हृदय से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन कार्यक्रम महिला सभा में। अगले कुछ मिनट तक हम करेंगे ज्ञान, जागरूकता और उपयोगी जानकारी से भरपूर संवाद। कहते हैं एक पौधा केवल एक पेड़ नहीं होता, बल्कि आने वाले कल की सांसों की सुरक्षा भी होता है। इसलिए धरती रहेगी हरी भरी तो जीवन रहेगा खुशहाल, सुरक्षित होगी अपनी रसोई तो स्वस्थ रहेगा घर परिवार। जी हाँ बहनों, आप समझ गई होंगी। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं दो विषयों पर जो हमारे जीवन से गहराई से जुड़े हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रीन इंडिया मिशन की। प्रकृति हमें केवल जीवन नहीं देती बल्कि हमारे अस्तित्व की आधारशिला भी है। स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और हमारे हरे भरे जंगल आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी धरोहर है। इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार ग्रीन इंडिया मिशन लेकर आई है। हमें समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी का साझा दायित्व है। पौधा लगाना, देखभाल करना, पानी बचाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, ये सभी उपाय हम सब जब मिलके करेंगे तभी इसका प्रभाव हमें दिखाई देगा। भारत प्रकृति की विविधता से समृद्ध देश है। यहाँ घने जंगल, नदियाँ, पर्वत, अनगिनत प्रकार के वन्य जीव हमारी प्राकृतिक विरासत हैं। बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण और जंगल कटाई जलवायु परिवर्तन से पर्यावरण के सामने गंभीर चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। इन चुनौतियों को कम करने, हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ग्रीन इंडिया मिशन लेकर आई है। इसका उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं बल्कि वनों का संरक्षण, उनकी गुणवत्ता में सुधार, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना भी है। ग्रीन इंडिया मिशन के मुख्य बिंदु है देश में वन और वनों का क्षेत्र बढ़ाना, खराब क्षतिग्रस्त वनों का पुनर्जीवन करना, जैव विविधता का संरक्षण, कार्बन अवशोषण की क्षमता में वृद्धि, मिट्टी एवं जल संरक्षण को बढ़ावा, ग्रामीण समुदाय की आजीविका को मजबूत करना, स्थानीय लोगों की सहभागिता से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना आदि भी है। ये मिशन केवल सरकारी प्रयासों तक नहीं है, इसमें स्थानीय समुदायों, ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाएं, वन समितियां, कृषक महिलाएं, युवा छात्र छात्राएं भी सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। और इस मिशन के अंतर्गत स्थानीय प्रजातियों के पौधों को प्राथमिकता देते हैं, बड़े पैमाने पर पौधारोपण सामुदायिक वन प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं। अब बात आती है कि इसके लाभ क्या हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण में कमी, मिट्टी का कटाव कम, भूजल स्तर में सुधार, वन्य जीवों का संरक्षण, किसानों को बेहतर पर्यावरण मिल सकता है। अब देखें कि महिलाएं इसमें कैसे योगदान कर सकती हैं। तो वे घर के आसपास जो खाली जगह है उसमें पौधारोपण कर सकती हैं, रसोई के जैविक कचरे से खाद बना सकती हैं, जल और ऊर्जा दोनों ही बचा सकती हैं, बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के संस्कार विकसित कर सकती हैं, प्लास्टिक बैग को डिनाय कर जूट के बैग को बढ़ावा देकर मिशन के उद्देश्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं हमारी महिलाएं। तो ग्रीन इंडिया मिशन को सफल बनाएं, हर वर्ष एक पौधा रोपें, नियमित देखभाल करें पेड़ बनने तक, पानी की बर्बादी रोकें, कागज का उपयोग जरूरी होने पर करें, स्थानीय स्तर पर स्वच्छता हरियाली अभियानों को बढ़ावा दें, गति दें। ग्रीन इंडिया मिशन में यदि सरकार के साथ आम नागरिक सक्रियता से जुड़ेंगे तो भारत को अधिक हरा भरा, स्वच्छ और पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है। आज लगाया गया पौधा आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे अनमोल उपहार होगा और आप इन हरे भरे शांति से खड़े पेड़ों के बीच गुनगुना सकती हैं कुछ इस तरह।

0: ये पत्ते, ये पौधे, ये फूल, ये हवाएं, अभी आपने ये बेहद शास्त्रीयता का टच लिए हुए गीत सुना। राग यमन कल्याण और राग पहाड़ी के मिश्रण पर आधारित था ये गीत। फिल्म एक बार फिर से, जिसे आपने सुना अभी, इसके जो संगीत के रचयिता हैं वो हैं रघुनाथ सेठ, और इस गीत को लिखा था विनोद पांडे ने। ये गीत प्रकृति का चित्रण है, इसलिए इस गीत में पहाड़ी राग का स्पर्श इसे पहाड़ों और वादियों की खुली हवा, ताजगी और प्राकृतिक सौंदर्य को संगीत में पिरोता है। और आवाज की बात करें तो इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल, और भूपेंद्र सिंह ने अपनी रूहानी आवाज से और भी मधुर बना दिया। तो गीत तो हमने सुन लिया, अब कार्यक्रम को अगले स्तंभ की ओर ले चलते हैं और हम सुनते हैं काव्य पाठ, जहां हमारी कवित्री महोदया अपने भावों को, अपने विचारों को कलम के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही हैं। सुनते हैं कवित्री रश्मि शुक्ला से उनकी कुछ विभिन्न विषयों से जुड़ी रचनाएं काव्य पाठ के माध्यम से। आइए सुनते हैं।
1: सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मैं रश्मि शुक्ला आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कुछ छोटी छोटी कविताएं। जैसे कि गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई हैं, भक्ति का समय चल रहा है, तो सबसे पहले तो भगवान को आमंत्रित करना बनता है। तो सबसे पहले भगवान को आमंत्रित करती हूँ। तुम मेरे घर आना भगवान, तुम मेरे घर आना भगवान, जन्म जन्म की तरसे नैना, अब ना देर लगाना भगवान, तुम मेरे घर आना भगवान। राह निहारू पितृ रूप में, राह निहारू पितृ रूप में, विश्व रूप तज आना भगवान, सत्कार करूंगी सखा भाव से, द्रौपदी सा देह नेह दिखाना भगवान, तुम मेरे घर आना भगवान। अनुराग की सजी रंगोली, अनुराग की सजी रंगोली, निरख निरख हरसाना भगवान, द्वार रखे हैं कलश भक्ति के, अंतर में छलकाना भगवान, तुम मेरे घर आना भगवान, तुम मेरे घर आना भगवान। प्रीति प्रेम का बिछा बिछोना, प्रीति प्रेम का बिछा बिछोना, क्षण भर को सुस्ताना भगवान, चरण पखारूं अस्त्र बिंदु से, मन पावन कर जाना भगवान, तुम मेरे घर आना भगवान, तुम मेरे घर आना भगवान। मैं आकिंचन बना रखूंगी कुछ रूखा सूखा, मैं आकिंचन बना रखूंगी कुछ रूखा सूखा, तुम सबरी सा भाग्य जगा, भोग लगाना भगवान, तुम मेरे घर आना भगवान, तुम मेरे घर आना भगवान। पाकर दरस तुम्हारे, पाकर दरस तुम्हारे, रश्मि ना पड़ी रहेगी भवसागर में, अहिल्या सा मुख दिलाना भगवान, तुम मेरे घर आना भगवान, तुम मेरे घर आना भगवान, तुम मेरे घर आना भगवान। और जैसे कि नारी हूँ, तो नारी की गर्वानुभूति अंतर में बसी हुई है, तो कुछ नारी के गौरव पे। मैं केकई, मैंने आजीवन जन विद्रूप सहा, पर अहो भाग्य, रावण वध का निमित्त विदना ने मुझे चुना, मैं सारी रामायण पर भारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ। मैं अहिल्या पर पाप ढोती बनसिला, संताप सहा, पर मेरी मुक्ति हेतु प्रभु राम को आना पड़ा, सदियों की निश्चल तपश्चर्या में कोटिक तपस्वियों पर भारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ। मैं सावित्री, प्राण बल्लभ हरण हेतु प्रस्तुत अंतक से अखंड सौभाग्य का वरदान लिया, मैं अपने पतिवृतत्व में सूर्य पुत्र पर भी भारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, ना हारी हूँ ना हारूंगी। और कुछ नारी के कर्तव्य पर, कि मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ शायद जादूगर भी, मैं स्त्री हूँ शायद जादूगर भी, उठते भोर से ही जादू दिखलाती हूँ, इसकी चाय उसका नाश्ता, उसकी किताबें उसका बस्ता, सब करीने से लगाती हूँ, सबका सब कुछ खो जाता है उठते ही, मचती है चीख पुकार, इसकी घड़ी उसकी बालियां उसका मोजा उसकी चाबियां, सबको ढूंढ कर लाती हूँ, जो नहीं मिलती किसी को उसे लाकर दिखाती हूँ, पर शायद गुम हो गई हूँ मैं कहीं, पर शायद गुम हो गई हूँ मैं कहीं, उस चहकती गौरैया की तरह, जिसका अफसोस, जिसके चहचहाने का अंदाज और जिसके रिक्त जाने का एहसास और जिसको बचाने के जतन उसके गुमने के बाद हुए। आजकल एक रिवाज चलता जा रहा है कि जब तक माँ बाप जीवित रहते हैं तब तक उन्हें कोई नहीं पूछता, और उनके जाने के बाद बड़ी धूमधाम से श्राद्ध करते हैं और उनके नाम से खाना देते हैं। तो एक पिता अपने बच्चे से, अपने पुत्र से कह रहा है कि करना हो तो अभी तृप्त कर दो बेटा, करना हो तो अभी तृप्त कर दो बेटा, मैं कागा बन नहीं आऊंगा। माना की जीभ चटोरी है, माना की जीभ चटोरी है, पाचन की भी कुछ कमजोरी है, ना गुस्सा होना ना गाली देना, थोड़ा सा संयम रख लेना, मैं आशीषों से दामन भर जाऊंगा, मैं कागा बन नहीं आऊंगा, मैं कागा बन नहीं आऊंगा, मैं कागा बन नहीं आऊंगा। माना की बड़बड़ करता हूँ, माना की बड़बड़ करता हूँ, रिकॉर्ड प्लेयर की अटकी सुई सा बजता हूँ, नहीं उड़ाना खिल्ली मेरी ना चिड़कर होना बेचैन, नहीं उड़ाना खिल्ली मेरी ना चिड़कर होना बेचैन, गर समय अपना कुछ दे दो दान करो तो, मैं मरकर भी जी जाऊंगा, मैं मरकर भी जी जाऊंगा, मैं कागा बन नहीं आऊँगा, मैं कागा बन नहीं आऊँगा। कंपन करते हैं पैर मेरे, कंपन करते हैं पैर मेरे, चलने से लाचार, तुम दे दो मुझे सहारा, दो और दो मिल होते हैं चार। खाते में लिख रखूंगा कर्ज तुम्हारा, खाते में लिख रखूंगा कर्ज तुम्हारा, उधार चुकाने आऊंगा तेरी लाठी बनने को, तेरा पोता बनकर आऊंगा। बस अभी तृप्त कर दो बेटा, मैं कागा बन नहीं आऊंगा, मैं कागा बन नहीं आऊंगा। मैं आजकल की मोबाइल की दुनिया में कोई भी संदेश लिखते हैं वो मिट जाता है, हाँ, या फिर हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन एक जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जब पत्र आया करते थे, वो पत्र अभी भी अनमोल धरोहर बन के हम लोग के पास रखे हुए हैं। उन पर दो कुछ कविताएं कि एक वो प्यारा सा दौर था, एक वो प्यारा सा दौर था जब हम पत्र लिखा करते थे, छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम लिखा करते थे। एक वो प्यारा दौर था जब हम पत्र लिखा करते थे, उस खत में समा जाते थे कितने फसाने, उस खत में समा जाते थे कितने फसाने, अपना तो ठीक है मोहल्ले का भी हाल लिखा करते थे। एक वो प्यारा सा दौर है जब हम पत्र लिखा करते थे। बहुत लिहाज हुआ करता था हमारी वाणी में, बहुत लिहाज हुआ करता था हमारी वाणी में, क्योंकि हम चुन चुन कर कोमल शब्दों का चयन किया करते थे। एक वो प्यारा सा दौर था जब हम पत्र लिखा करते थे। रूह में बसी है अब भी वो बेकरारी, रूह में बसी है अब भी वो बेकरारी, कुछ खत बहुत इंतजार कराया करते थे। बसी है अब भी खुशबू प्यार की उन खतों में, बसी है अब भी खुशबू प्यार की उन खतों में, जो पुरानी किताबों की जिल्द से सरक आया करते थे। एक वह प्यारा सा दौर था जब हम पत्र लिखा करते थे, एक वो प्यारा सा दौर था जब हम पत्र लिखा करते थे। दादी की झुर्री वाले चेहरे पर आ जाता है नूर, दादी के झुर्री वाले चेहरे पर आ जाता है नूर, जब दादा के छुप छुप के दिए खतों के जिक्र छड़ा करते थे। एक वह प्यारा सा दौर था जब हम पत्र लिखा करते थे। खत का मजनूमन भाप जाते थे लोग, खत का मजनूमन भाप जाते थे लोग, कुछ इत्र की तरह महमह महका करते थे। और निशा बाकी है अब भी उन खतों पर अस्कों के, निशा बाकी है अब भी उन खतों पर अस्कों के, जो सरहद पर तैनात लखते जिगर के हाल पढ़कर आंखों से बहा करते थे। एक वो प्यारा सा दौर था जब हम खत लिखा करते थे, एक वो प्यारा सा दौर था जब हम पत्र लिखा करते थे। और एक आखिरी रचना भाई के लिए संदेश है कि मेरे भैया तुम स्वस्थ रहना, मेरे भैया तुम स्वस्थ रहना, तुम प्रसन्न रहना, हर पल हर दम हम बहनों के लिए, हर पल हर दम हम बहनों के लिए, हमारे फले फूले मायके के लिए। हम नहीं कहेंगे कि भाई हमें कुछ दे दो, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि भाई हमें कुछ दे दो, पर मन में विश्वास रहता है कि भाई खड़े हैं हर जरूरत पर देने के लिए एक मजबूत सहारा। तुम आशा हो, तुम आशा हो, तुम विश्वास हो, हमारे मन की गहरी आसो, मायके की ड्योड़ी की उजियाली पाक हो। भाई तुम कभी बीमार मत होना, भाई तुम हमेशा स्वस्थ रहना। हम ईश्वर से आंचल पसार कर मांगते हैं तुम्हारा सुख, हम ईश्वर से आंचल पसार कर मांगते हैं तुम्हारा सुख। भाई दूज की पूजा में हम कुचलते हैं तुम्हारी ओर उठने वाली हर बुरी नजर को, हम कुचलते हैं तुम्हारी ओर उठने वाली हर बुरी नजर को। कूटते हैं मूसल से भाई के दुश्मनों की छाती को, कूटते हैं मूसल से भाई के दुश्मनों की छाती को। आंसू पोंछते पोंछते सुनते हैं दोज की कहानी, जिसमें बहन अपनी जान पर खेल कर भी भाई की रक्षा करती है। भाई वैसे ही हम चाहते हैं बस तुम्हारी रक्षा करना, बस तुम्हारी खुशी। धन्यवाद।
0: बेहद भावपूर्ण रचनाएं विभिन्न विषयों से जुड़ी आपने अभी सुनी काव्य पाठ के माध्यम से, और इतना भावपूर्ण रचनाएं थीं कि हमारी कवित्री महोदया रश्मि शुक्ला खुद भी इनको पढ़ते हुए इनसे इतना कनेक्ट थी कि वो रोने लगी। बेहद भावपूर्ण रचनाएं आपने सुनी रश्मि शुक्ला से। और इस काव्य पाठ के बाद आपसे करते हैं थोड़ी सी बातचीत बरसात के मौसम में हमारी रसोई की सुरक्षा के बारे में। घर की रसोई केवल भोजन बनाने की जगह नहीं बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य की नींव भी होती है, और

इससे नींव को मजबूत बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं हमारी महिलाएं। बरसात का मौसम आते ही नमी, फफूंद, बैक्टीरिया और भी कई तरह के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हमारी रसोई में थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए इस मौसम में रसोई की सुरक्षा पर और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं रसोई की साफ सफाई की। बरसात में नमी अधिक होने से सिंक, किचन प्लेटफॉर्म और कोनों पर गंदगी जमा हो जाती है। इससे बचने रसोई के इन जगहों की अच्छे से सफाई करें नियमित रूप से। कोशिश करें प्लेटफॉर्म और सिंक दोनों सूखे रहें। गीले कपड़ों की बजाय सूखे कपड़े उपयोग करें जो नमी रहित हों। दूसरी जरूरी बात है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है अनाज और दालें, किचन में रखे हुए मसाले, उनका जो रखरखाव है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दालों एवं अनाज को हमेशा साफ, सूखे और एयरटाइट डिब्बों में ही स्टोर करें ताकि इन तक नमी न पहुंचे। समय समय पर डिब्बों की जांच करें, यदि खाद्य पदार्थ में बदबू, फफूंद या कीड़े दिखें तो उसे अलग कर दें, उनका उपयोग आप बिल्कुल न करें। बरसात के मौसम में ध्यान देने और महत्वपूर्ण बात है गैस और बिजली उपकरणों की सुरक्षा। गीले हाथों से कभी भी मिक्सर, माइक्रोवेव या कोई भी विद्युत उपकरण न छुएं। गैस चूल्हे की पाइप को समय समय पर जांचते रहें, यदि गैस गंध है तो तुरंत रेगुलेटर बंद कर दें और खिड़कियां खोल दें। कोई भी स्विच आप बिजली से संबंधित ऑन या ऑफ ना करें। इन दिनों फल सब्जियों में अनेक तरह के बैक्टीरिया और केमिकल उपयोग किए जाते हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए, इसलिए फल सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही खाएं। पका भोजन खुले में ना रखें, ढककर या फ्रिज में स्टोर करके सुरक्षित रूप से रखें। पेट में इन्फेक्शन बरसात में संक्रमित भोजन के साथ अस्वच्छ जल के कारण भी होता है, तो पानी को फिल्टर कर या उबाल कर ही पिएं। स्वच्छ जल कई संक्रमण से आपको दूर रखेगा। बहनों, घर की रसोई के स्वाद का नहीं बल्कि स्वास्थ्य का भी केंद्र होती है, तो हमारी महिलाएं अपनी छोटी छोटी आदतों से पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकती हैं। स्वच्छ रसोई, संतुलित भोजन और थोड़ी सी सावधानी परिवार को संक्रमण और बीमारियों से दूर रख सकती है, आपके परिवार को सेहतमंद रख सकती है। याद रखिए, स्वच्छ रसोई, स्वस्थ परिवार और सजग गृहिणी, यही खुशहाल जीवन की सच्ची पहचान है। और चर्चा के बाद यदि गीत ना सुना जाए तो कुछ कमी सी महसूस होती है, तो इस कमी को दूर करते हैं और चलते हैं फिर से गीत संगीत की तरफ और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू ने। मुकुल दत्त के शब्दों को संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। और जैसे कि हमारे आरडी बर्मन साहब जाने ही जाते हैं नए नए प्रयोग के लिए, तो उन्होंने जो इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है उसमें नई नई चीजों का प्रयोग किया है। जैसे गाने में जो संगीत है उसमें जल तरंग का प्रयोग बेहद खूबसूरती से किया है। इस गीत का जो आधार है वर्षा ऋतु, उमंग भरा मौसम है, तो इस भाव को खूबसूरती से उभारने के लिए मल्हार अंग का प्रयोग किया है इस गीत में, जो प्रकृति की सुंदरता को व्यक्त करता है। इस गीत की खूबसूरती है इसमें बजती हुई जल तरंग। इसमें जल तरंग का इतना बारीक प्रयोग किया गया है बारिश की बूंदों को संगीतमय बना दिया हो। तो चलिए, इतनी सारी विशेषताएं हैं इस गीत की, देर ना करते हुए सुनते हैं ये गीत।

अभी आपने ये बेहद प्यारा गीत सुना कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ में। फिल्म थी 1942 अ लव स्टोरी। इसकी शब्द रचना मुकुल दत्त ने की थी और इसके वो संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। तो गीत तो हो गया और चलने से पहले थोड़ा समय हमारे पास अभी भी बाकी है, तो चलिए आपको दे देते हैं कुछ उपयोगी जानकारी। बच्चों का टिफिन एक डिब्बा नहीं बल्कि उसमें माँ का स्नेह, परिवार का संस्कार और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की फिक्र भी होती है। बारिश वाला मौसम बच्चों को जितना पसंद होता है उतना ही आपके लिए चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि ये मौसम बीमारियों संक्रमण के अनुकूल होता है। ऐसे में एक माँ को चिंता होती है कि बच्चा स्कूल में क्या खाए जो स्वादिष्ट भी हो और पौष्टिक भी हो। पहली बात तो ये है कि टिफिन घर का तैयार किया हो, घर पर ताज़ा और हल्का भोजन ही बनाए और उसमें रखें। ऐसा भोजन तैयार करें जो लंबे समय तक सुरक्षित रहे और बच्चे भी खुशी खुशी उसको खा लें, जैसे वेजिटेबल पराठा, मूंग दाल का चीला, इडली, पोहा, उपमा, वेज पुलाव, पनीर या अंकुरित अनाज से बने व्यंजन अच्छा विकल्प हो सकते हैं। साथ में मौसमी फल, सूखे मेवे भी रख सकते हैं। बरसात में खुली चीजें, तली भुनी क्रीम वाले खाद्य पदार्थ, कटे हुए फल टिफिन में ना रखें क्योंकि जल्दी खराब होने का खतरा रहता है, इसलिए इससे बचें। टिफिन के साथ पानी की बोतल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को साफ उबला पानी या फिर फिल्टर किया हुआ पानी ही दें। पर्याप्त पानी पीने की आदत जरूर डालें। और एक छोटी सी बात, बच्चे अक्सर रंग बिरंगे और आकर्षक भोजन देखकर अधिक उत्साह से खाते हैं, तो इसके लिए आप टिफिन में अलग अलग रंगों की सब्जियां, फल या घर की बनी हेल्दी मिठाई भी शामिल कर सकती हैं टिफिन में। इससे भोजन पौष्टिक भी रहेगा और बच्चे भी खाने में रुचि दिखाएंगे। एक अच्छा हेल्दी टिफिन केवल पेट नहीं भरता, ये बच्चे को ऊर्जा, एकाग्रता और अच्छी सेहत भी देता है। इसलिए बच्चों के टिफिन को लेकर स्वाद के साथ पोषण, स्वच्छता का भी पर्याप्त ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ बचपन ही उज्ज्वल भारत का आधार है। तो ये तो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी उपयोगी जानकारी हमने आपको दी। अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। ज्ञान की ये ज्योति यूं ही जलती रहे, हर घर में खुशियों की फुलवारी खिलती रहे। फिर होगी मुलाकात नए विषय और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दें अपनी मित्र गुड़िया तिवारी को। नमस्कार।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए

0: कन्यापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में
0: जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है कमलेश कुशवाहा द्वारा गाए लोक भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब प्रस्तुत है राजू पटेल और साथियों द्वारा गाए राम भजन।
1: अरे सांवरी सूरत मोहिनी मूरत चित से टरे न टारी। अरे सांवरी सूरत मोहिनी मूरत

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना राजू पटेल और साथियों द्वारा गाया एक रामबचन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है सुनील भट्ट द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुनील भट्ट द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाए।

0: Mega Digital.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लान।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, जहां हम आपको सुनवाते हैं फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सोनू निगम, शान और शंकर महादेवन की आवाज़ में फिल्म हे बेबी से।

शंकर एहसान लॉय का संगीत समीर के लिखे बोल, सोनू निगम शान और शंकर महादेवन की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हे बेबी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं केके की आवाज़ में फिल्म बजरंगी भाईजान से।

0: प्रीतम का संगीत कासर मुनीर के लिखे बोल केकी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बजरंगी भाईजान से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा,
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
0: सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वांगचुक से मुलाकात की थी। इसके बाद वांगचुक ने छात्रों की चिंताओं पर सरकार के भरोसे के बाद अनशन खत्म करने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्रियों ने इसे केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर छात्रों के भरोसे का प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज पन्ना जिले के दौरे पर रहेंगे। वे यहां करीब 204 करोड़ रुपए लागत के 22 विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री करीब 95 करोड़ रुपए के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही करीब 110 करोड़ रुपए के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इनमें कई स्कूल और कॉलेज भवनों के निर्माण, बैराज योजना और सड़क निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर और दतिया जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने सुबह मां पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए। इसके बाद वे दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। ग्वालियर में श्री सिंधिया ने नीट पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर कठोरतम दंड का प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट में लाया जाएगा, जिससे भविष्य के पेपर सुरक्षित रहेंगे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार छठे दिन भी बंद है। लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं। इसके चलते श्री अमरनाथ जी यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा और शिव घोरी यात्रा सहित सभी प्रमुख धार्मिक यात्राएं स्थगित रही हैं। नॉर्दर्न रेलवे ने श्रीनगर और कटरा के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाकर 600 पर्यटकों को घाटी से बाहर निकाला। अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन और सड़क की ताजा स्थिति की जानकारी जरूर ले लें। फंसे हुए श्रद्धालुओं के लिए बेस कैंपों में मुफ्त भोजन और रहने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग ने एनसीटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को अंतिम अवसर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 24 से 27 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे। 30 जुलाई को मेरिट सूची जारी होगी और 31 जुलाई को सीट आवंटन किया जाएगा। अब तक प्रदेश में करीब 4,80,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय ने मुख कैंसर के शुरुआती पहचान के लिए एआई आधारित नई तकनीक विकसित की है। भारत सरकार ने इस तकनीक के डिजाइन को पेमेंट प्रदान किया है। महाविद्यालय के डेंटल सर्जरी विभाग ने मुख आरोग्य नाम का एआई आधारित मोबाइल ऐप भी तैयार किया है। इस ऐप का उपयोग आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्यकर्मी कर सकेंगे, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को खास फायदा मिलेगा। प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हर साल 26 दिसंबर को मनाए जाने वाले वीर बाल दिवस को भारत स्काउट्स और गाइड्स के कार्यक्रम में शामिल कर व्यापक स्तर पर मनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री परमार की अध्यक्षता में कल स्काउट्स और गाइड्स की राज्य स्तरीय राज्य परिषद की विशेष बैठक हुई। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज शिवपुर, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर और पन्ना जिले के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में करीब 4 इंच तक बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 40 से ज्यादा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा के नलखेड़ा स्थित संदीपनी विद्यालय में मनाए जा रहे गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसद के कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
2: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
5: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धा पूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
2: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
6: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
2: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है।

0: पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज़्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाउथराज और पाटन जिलों में 6 इंच

0: ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड़ में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर, जहाँ हम आपके पत्र को शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक गीत के साथ, जिसकी फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से। इसके अलावा दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली ने भी हमें पत्र लिखा है। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने भी इस गीत की फरमाइश की है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म एन इवनिंग इन पैरिस से।

शंकर जयकिशन का संगीत हसरत जयपुरी के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट की ओर से। इसके अलावा पत्र मिला है हमें बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनोरी और प्रकाशवीर राजपूत का, डोंडी लोहारा बलोद से कमलेश जयपुरिया का, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप का, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम का, ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसी की ओर से भी इस गीत की फरमाइश मिली है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

के किसी ने देखा एक बार, हंस के किसी ने देखा एक बार है, दिल की मुरादें कोई पा गया।

शंकर जयकिशन का संगीत शैलेंद्र के लिखे बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दिल तेरा दीवाना से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और अब सुनते हैं अगला गीत आप ही की फरमाइश पर। आवाज़ है शैलेंद्र सिंह की, फिल्म का नाम है खेल खेल में और इस गीत की फरमाइश मिली है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश की ओर से, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने हमें लिखा है पटेल नगर मलौट पंजाब से। और इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है गोला बाजार बक्सर से, श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

आर डी बर्मन का संगीत, गुलशन बावरा के लिखे बोल, शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म खेल खेल में से। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का है। अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म एक नज़र से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, रशिका और रॉबिन की तरफ से, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, थनश आरू साहू की ओर से, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा की ओर से। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है आप सभी श्रोताओं के लिए ये अगला गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोल मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म एक नज़र से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और अगली फरमाइश हमें मिली है ग्राम महेशवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े वाल्मीक धाड़े मीनाजी धाड़े स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की तरफ से। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी इंदिरा विहार दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव छठिया पोखरा डुमराव से सुनील कुमार वर्मा मुस्तफ़ाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना। इसके अलावा ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने हमें लिखा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। तो लीजिए प्रस्तुत है आप सभी श्रोताओं के लिए ये अगला गीत।

0: कल्याण जी आनंद जी का संगीत, अनजान के लिखे बोल, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत सुना आपने फिल्म लावारिस से। और इसी गीत के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी तरह अपनी फरमाइशें हमें पत्रों के द्वारा भेजते रहें। हमारा पता नोट करें, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक है। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वांगचुक से मुलाकात की थी। इसके बाद वांगचुक ने छात्रों की चिंताओं पर सरकार के भरोसे के बाद अनशन खत्म करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज पन्ना जिले के दौरे पर रहेंगे। वे यहां करीब 204 करोड़ रुपए लागत के 22 विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री करीब 95 करोड़ रुपए के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे, साथ ही करीब 110 करोड़ रुपए के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर और दतिया जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने सुबह माँ पीताम्बरा पीठ पहुंचकर माँ बगलामुखी के दर्शन किए। इसके बाद वे दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार छठे दिन भी बंद है। लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं। इसके चलते श्री अमरनाथ जी यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा और शिव खोरी यात्रा सहित सभी प्रमुख धार्मिक यात्राएं स्थगित रही हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिएगा युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। शाम 6:00 सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा। संसद समीक्षा प्रसारित होगी रात 8:00। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। कार्यक्रम खेल जगत सुनवाया जाएगा आज रात 9:30 पर। और रात 10:00 सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

0: आपको याद होगा कि राजा
1: संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना कामनी काय कांतारे धारावाहिक की 9वीं कड़ी। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
0: प्रस्तुत है

0: 3.2 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर लगातार 5वें दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगें रखी और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नेट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित कर दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना जिले में आयोजित कार्यक्रम में 84.83 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर विकास की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 210 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया और प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को अंतिम अवसर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 24 से 27 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। 30 जुलाई को मेरिट सूची जारी होगी और 31 जुलाई को सीट आवंटन किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवाजन सुने

साथियों, हमेशा की तरह स्वागत है आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। और आज मैं हूँ आपकी मित्र महिमा दी पटेल। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आप सभी को मालूम है कि जो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वो महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ करते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी बोरोबुदूर मंदिर इंडोनेशिया ऐतिहासिक स्थल के बारे में। साथियों, बोरोबुदूर मंदिर इंडोनेशिया का एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक और ऐतिहासिक स्थल है। ये मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला, उत्कृष्ट शिल्पकला और धार्मिक महत्व के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे न केवल बौद्ध धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, बल्कि ये मानव कला और स्थापत्य का भी अनुपम उदाहरण है। साथियों, बोरोबुदूर मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र वंश के शासनकाल में हुआ था। ये मध्य जावा इंडोनेशिया में स्थित है। कई शताब्दियों तक ये ज्वालामुखी की राख और घने जंगलों के नीचे दबा रहा। बाद में इसका पुनः पता लगाया गया और संरक्षण कार्य शुरू हुआ। आज ये विश्व के सबसे बड़े बौद्ध मंदिरों में से एक है। बोरोबुदूर मंदिर 9 स्तरों वाला विशाल पत्थर का स्मारक है। इसके ऊपरी भाग में अनेक स्तूप और मध्य में एक बड़ा मुख्य स्तूप स्थित है। मंदिर की दीवारों पर भगवान बुद्ध के जीवन, बौद्ध दर्शन और उस समय के सामाजिक जीवन से संबंधित हजारों सुंदर नकाशियां और मूर्तियां बनी हुई हैं। इसकी भव्य वास्तुकला देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। साथियों, ये मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये स्थल इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रतीक है। और साथियों, इसी के साथ बोरोबुदूर मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। इसका संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत धरोहर का महत्व समझ सके। बोरोबुदूर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि इतिहास, कला, संस्कृति और वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है और विश्व भर में शांति, ज्ञान और मानव सभ्यता की महान उपलब्धियों का प्रतीक बना हुआ है। ये थी चर्चा बोरोबुदूर मंदिर इंडोनेशिया ऐतिहासिक स्थल के बारे में। और आगे बढ़ते हुए अब कुछ गीत संगीत हो जाए, मैं सुनवाती हूँ आपको एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी जो आप गीत सुन रहे थे वो था फिल्म सावरिया से, जिसमें आवाज थी शान की, संगीतकार थे मोंटी शर्मा और गीतकार थे समीर अंजान। अब आगे कर लेते हैं एक और चर्चा, जो कि है सोशल मीडिया के अवसर और चुनौतियों के बारे में। साथियों, आज का युग डिजिटल युग है और सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जिसे हम पूर्व में ट्विटर कहते थे, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म ने संचार के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। सोशल मीडिया ने जहां लोगों को जोड़ने और जानकारी साझा करने का सशक्त माध्यम दिया है, वहीं इसके कुछ गंभीर दुष्प्रभाव और चुनौतियां भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया के अवसर की बात की जाए तो सोशल मीडिया ज्ञान और सूचना के आदान प्रदान का प्रभारी माध्यम है। इसके माध्यम से लोग देश और दुनिया की ताज़ा खबरें तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कक्षाएं, शैक्षणिक वीडियो और अध्ययन सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है। व्यवसाय और रोजगार के क्षेत्र की बात की जाए तो सोशल मीडिया ने नए अवसर पैदा किए हैं। छोटे व्यापारी अपने उत्पादों का प्रचार कर अधिक ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ये सामाजिक जागरूकता फैलाने, प्रतिभाओं को मंच देने और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। सोशल मीडिया की चुनौतियों की बात की जाए तो सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ कई समस्याएं भी सामने आई हैं। फर्जी समाचार जैसे कि फेक न्यूज, अफवाहें और भ्रामक जानकारी समाज में भ्रम और तनाव पैदा कर सकती है। अत्यधिक उपयोग से समय की बर्बादी, पढ़ाई और कार्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, डेटा चोरी और निजता का उल्लंघन भी बड़ी चुनौतियां हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया की लत मानसिक तनाव, अकेलेपन और आत्मविश्वास में कमी का कारण भी बन सकती है। अब साथियों, हम ध्यान देते हैं इसकी सावधानियां और समाधान के बारे में। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से करें। किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी और पासवर्ड सुरक्षित रखें। साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन करें और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। सकारात्मक और जिम्मेदार सामग्री का ही प्रचार करें तथा ऑनलाइन शिष्टाचार बनाए रखें। इसलिए हमें सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हुए इसकी चुनौतियों से सतर्क रहना चाहिए, ताकि डिजिटल तकनीक समाज और राष्ट्र के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सके। ये थी एक छोटी सी चर्चा सोशल मीडिया अवसर और उसकी चुनौतियों के बारे में। अब आगे की कड़ी में आपको सुनवाती हूँ मैं एक वार्ता क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, और वार्ताकार होंगे नरेंद्र कुमार प्रजापति।
1: नमस्कार, आज हम आजाद चंद्रशेखर के बारे में जानेंगे। आजाद चंद्रशेखर का जीवन परिचय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में साहस, आत्मबलिदान और क्रांतिकारी भावना का प्रतीक माना जाता है। वे उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी और युवाओं में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की। उनका जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण, प्रेरणादायक और त्याग से भरा हुआ था। जन्म और प्रासंगिक जीवन। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर जिले के भावरा आजाद नगर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। उनका परिवार ब्राह्मण परिवार था और आर्थिक स्थिति सामान्य थी। बचपन से ही चंद्रशेखर में साहस और स्वाभिमान की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे पढ़ाई में सामान्य थे, लेकिन शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से बेहद दृढ़ थे। उनकी प्रासंगिक शिक्षा वाराणसी में हुई। बचपन से ही उनमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रवृत्ति विकसित हो गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश। 1920-21 के दौरान जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो चंद्रशेखर भी उसमें शामिल हो गए। उस समय उनकी उम्र मात्र 14 से 15 वर्ष की थी। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने लगे। एक घटना ने उनके जीवन की पूरी तरह बदल दिया। जब वे एक विरोध प्रदर्शन में शामिल थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में जब उनके नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास जेल बताया। इस साहसिक उत्तर के कारण उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा दी गई। हर कोड़े पर वे भारत माता की जय कहते रहे। इसी घटना के बाद वे आजाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। क्रांतिकारी संगठन से जुड़ाव। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद कई युवा निराश हुए। चंद्रशेखर आजाद ने महसूस किया कि केवल अहिंसक आंदोलन से स्वतंत्रता जल्दी नहीं मिल सकती। इसके बाद वे क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ गए। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना गया। इस संगठन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। आजाद इस संगठन में के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बन गए और उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काकोरी कांड 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन भारतीय क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी घटनाओं में एक थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना था। इस योजना में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और अन्य क्रांतिकारी शामिल थे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद इस घटना के प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थे, लेकिन वे संगठन के प्रमुख योजनाकारों में से एक थे। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों पर कड़ा दमन शुरू किया और कई लोगों को गिरफ्तार या फांसी दे दी गई। संगठन का पुनर्गठन। काकोरी कांड के बाद संगठन कमजोर हो गया था। चंद्रशेखर आजाद ने इसे फिर से मजबूत करने का काम किया। उन्होंने युवा क्रांतिकारियों को जोड़कर हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन किया। वे एक कुशल नेता, रणनीतिकार और प्रेरक वक्ता थे। उनका लक्ष्य था कि भारत की पूरी तरह स्वतंत्र किया जाए और एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हो। प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां। आजाद ने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष भूमिका निभाई, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को कमजोर करना था। इनमें शामिल थे सरकारी खजानों पर हमले, ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ योजनाएं, हथियारों की व्यवस्था, युवाओं को प्रशिक्षण देना। वे हमेशा पुलिस और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों में से एकदम आगे रहते थे। उनकी छिपने और भागने की क्षमता अद्भुत थी। व्यक्तित्व और विचारधारा। चंद्रशेखर आजाद का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वे साहसी, अनुशासित और दृढ़ निश्चयी थे। वे कभी भी अपने साथियों को संकट में नहीं डालते थे और हमेशा अंतिम समय तक संघर्ष करने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल याचना से नहीं बल्कि संघर्ष और बलिदान से मिलती है। वे समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे और एक समाज, समान समाज की कल्पना करते थे। भगत सिंह से संबंध। आजाद और भगत सिंह का संबंध बहुत मजबूत था। दोनों ने मिलकर HSRA को मजबूत किया और कई योजनाएं बनाई। भगत सिंह युवा क्रांतिकारी थे और आजाद उनके मार्गदर्शक भी थे। दोनों का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति करना था। दोनों के विचारों में समानता थी और वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। लाहौर षड्यंत्र और दमन। लाहौर षड्यंत्र केस और हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों पर बहुत सख्त कार्रवाई की। कई क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए या शहीद हो गए। आजाद अकेले नेता थे जो लंबे समय तक पुलिस से बचते रहे और संगठन को सक्रिय बनाए रखा। वे लगातार छिपकर आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। अंतिम समय और शहादत। 27 फरवरी 1931 का दिन आजाद चंद्रशेखर के जीवन का अंतिम दिन था। इलाहाबाद अब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क अब आजाद पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने अकेले ही कई पुलिस कर्मियों का सामना किया। उन्होंने अपनी आखिरी गोली अपने लिए बचाकर रखी थी ताकि वे जीवित गिरफ्तार न हों। जब उनके पास केवल एक गोली बची तो उन्होंने उसे खुद को मारकर शहीद होना स्वीकार किया और आजाद नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। विरासत और महत्व। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे सम्मानित क्रांतिकारियों में से एक है। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया और युवाओं में नई ऊर्जा का संचार किया। उनके नाम पर कई स्थानों के नाम रखे गए, जैसे आजाद पार्क, चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय आदि। वे आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लास्ट में चंद्रशेखर आजाद का जीवन त्याग, साहस और देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने यह साबित किया कि स्वतंत्रता केवल विचार नहीं बल्कि कर्म और बलिदान से प्राप्त होती है। उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। धन्यवाद
0: साथियों। अभी आप सुन रहे थे वार्ता, जिसका विषय था क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। वार्ताकार थे नरेंद्र कुमार प्रजापति। अब हम कर लेते हैं एक और विषय पर चर्चा, जिसका विषय है योग और ध्यान का महत्व। जी हाँ साथियों, योग और ध्यान भारत की प्राचीन एवं अमूल्य परंपरा है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग और ध्यान का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। योग शरीर को स्वस्थ, लचीला और ऊर्जावान बनाता है। नियमित योग अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और अनेक बीमारियों से बचाव होता है। वही ध्यान मन को एकाग्र, शांत और तनाव मुक्त बनाता है। ये चिंता, अवसाद और मानसिक दबाव को कम करने में भी सहायक है। विद्यार्थियों के लिए योग और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे पढ़ाई और अन्य कार्यों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। अब हम योग और ध्यान को अपनाने की आवश्यकताओं की बात करें तो प्रतिदिन कुछ समय योग और ध्यान के लिए निकालना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच के साथ योग का अभ्यास करने से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। योग और ध्यान स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कुंजी है। ये हमें अनुशासन, आत्मसंयम और सकारात्मक सोच का मार्ग दिखाते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में योग और ध्यान को अपनाकर स्वयं को स्वस्थ रखने के साथ साथ एक स्वस्थ समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान देना चाहिए। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी चर्चा योग और ध्यान के महत्व के बारे में। अब इतनी सारी चर्चाओं और वार्ता के बाद अब फिर से रुख करते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।
2: तुम भी गाओ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म भ्रष्टाचार से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की। आनंद बख्शी के गीतों को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। साथियों, अब जो घड़ी है उसकी टकटकी इशारा कर रही है आप सभी से विदा लेने का, तो जाते जाते मैं बता देती हूँ आपको आज की रोजगार सूचना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी IDBI योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO, बैंक विशेषज्ञ अधिकारी। पदों की संख्या है 31। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 35 से 45 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी और उसकी जो अंतिम तिथि है वो है 26 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.idbibank.in पर जाकर विजिट करें। साथियों, ये थी आज की रोजगार सूचना और अब अनुमति दीजिए आपकी मित्र महिमा दीप पटेल को। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे छतरपुर केंद्र का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है छोटे से अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति

0: को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय, खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।
1: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण आप सुन रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए यारियां फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद इरफान और गजेंद्र वर्मा की। गीतकार और संगीतकार मिथुन।

अगला गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। वंश फिल्म के लिए गीत लिखा है समीर ने और संगीतकार आनंद मिलिंद।

कार्यक्रम का आखिरी गीत फूल और कांटे फिल्म से, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज, समीर की शब्द रचना, संगीतकार नदीम श्रवण।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है छोटे से अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
4: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
3: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
4: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला ना रखें।
3: सीधे नल के नीचे बर्तन ना धोएं।
4: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
3: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
4: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
3: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
4: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
3: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
4: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
3: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
4: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
5: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
4: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
3: समय है पानी बचाने का,
4: पानी का मोल समझने और समझाने का।
3: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
6: रेडियो ने कभी सरहदों

0: के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना जिले में आयोजित कार्यक्रम में 184.83 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर विकास की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 210 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए कई सुरक्षा उपायों के कारण रेलवे में दुर्घटनाओं की संख्या में बहुत कमी आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा है कि सरकार सभी उपयोगकर्ताओं, विशेषकर बच्चों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 23 जुलाई से प्रारंभ खेलों में भारतीय खिलाड़ी निश्चित ही अपने उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदर्शन, अनुशासन और अथक परिश्रम से भारत का गौरव विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करेंगे। हमारे 140 करोड़ देशवासियों को भी यही विश्वास है, उनकी भी शुभकामनाएं खिलाड़ियों के साथ हैं। और प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने NCTE पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को अंतिम अवसर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 24 से 27 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे। 30 जुलाई को मेरिट सूची जारी होगी और 31 जुलाई को सीट आवंटन किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस खंड

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे,

0: और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
1: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
0: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
1: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
0: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है।
1: जी,
0: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
1: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
2: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
1: तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
0: श्रोताओं, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
1: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
0: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है।
1: जी,
0: इसकी पंखुड़ियां तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा।
1: जी,
0: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
1: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
0: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है।
1: जी,
0: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी।
1: जी,
0: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
1: कैल पोध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेतीबाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
0: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
1: कैल पोध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
0: श्रोताओं, कैल पोध उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
1: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैल पोध उत्सव कहां और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैल पोध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कैल पोध उत्सव कहां और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैल पोध शब्द का क्या अर्थ है?
0: 8800-440-5559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
0: दो मेंढकों की यात्रा।
3: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर

0: के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
1: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग? इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
0: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
1: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
2: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ। और तुम?
1: मैं क्योटो जा रहा हूँ।
0: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
1: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
2: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
1: भाई वाह।
2: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
1: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
2: अच्छा,
1: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
2: वाह,
1: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
2: ये तो है।
0: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
1: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
2: क्यों? आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
1: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
2: हैं? वो कैसे?
1: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
2: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
1: वो कैसे?
2: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाएं। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
1: भाई वाह।
0: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
1: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
2: तो है, चढ़ते रहो चढ़ते रहो।
1: बड़ी मुश्किल।

0: चढ़ाई थी।
1: हाँ
0: चलो पहुँचे तो सही।
1: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
2: हैं?
1: हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
0: हाँ? मैं क्योटो देखूंगा
1: और मैं ओसाका।
0: हाँ? क्यों नहीं, चलो
1: चलो।
3: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे

0: दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
1: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है
4: जी।
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है?
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक, आप इसका क्या करेंगे?
3: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या?
4: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये
3: है?
4: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
3: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
4: मेरी माँ? बाजी

0: हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
1: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
0: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
1: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहां आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
0: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, आप कानून तो जानती नहीं।
1: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
0: ओहो बाजी, आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
1: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
0: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी, आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है।
1: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूं। बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनकी टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ, ये ठीक रहेगा।
0: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
1: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
0: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
1: नमक का मोल पूछने।
2: आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है,
1: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
1: अब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
1: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप?
2: जी जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
1: अब जी ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
2: नमक? देखिए मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है।

0: ना, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
1: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप
2: लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: आप भी इधर आइए, आइए सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी,
4: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
4: माफ कीजिए, चाय पियेंगी क्या आप?
0: नहीं।
4: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें जी। हाँ? हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
4: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है, किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ यहाँ दिल में है, दिल में।
0: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
4: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: उमंग एनसीईआरटी का ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत। गुरु फिल्म के गीत से शुरुआत करते हैं। श्रेया घोषाल और उदित मजूमदार ने इस गीत को गाया है। शब्द रचना गुलजार की है और संगीतकार ए आर रहमान।

तेरे इश्क में। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए, गायक और संगीतकार ए आर रहमान और गीतकार हैं इरशाद कामिल।

और लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा राहुल देव वर्मन का संगीतबद्ध किया गीत फिल्म है बेताब।

कार्यक्रम का आखिरी गीत नादानिया फिल्म से तुषार जोशी, मधुबंती बागची और सचिन जिगर की आवाज़ें। अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत लिखा है और संगीतकार सचिन जिगर।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश, समय है अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: छे छप छे छपा के छे पानियों पे छीटे उड़ाती हुई लड़की।
4: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
5: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
4: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
5: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
4: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
5: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
4: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
5: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
4: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
5: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
4: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
5: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
4: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
5: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
6: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
5: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
4: समय है पानी बचाने का,
5: पानी का मोल समझने और समझाने का।
4: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
7: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल न करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियाँ कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुँचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है। सारा जहां
8: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, यानी एंड्रॉइड, आईओएस और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी,

0: प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक के अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग दो घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से, मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: प्रतिनिधि मंडल के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
4: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद

0: विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल रेल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दे दी है। इस पर 1,264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
1: आंध्र और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। बुखारेस्ट में आज भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इससे पहले रवि वीरा वेंकट बुद्धिगीना और अली इमाम ने पैरा तैराकी के S13 वर्ग के 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी के फाइनल में अपना अपना स्थान पक्का किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

पहले जानिए आज के शेष कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा दिल्ली से रिले करेंगे। सुर्खियों में कार्यक्रम होगा 8:15 पर। 9:30 पर खेल जगत में हम आपको सुनवाएंगे वेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश से सम्मानित भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल से मनीष गजभिये की बातचीत। आज रात्रि 10 बजे सुनिए पॉडकास्ट श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी का एपिसोड 34, जो केंद्रित होगा खेल के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित हस्ती सविता पूनिया पर। 10:30 पर रागरजनी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे अजीत सिंह के वीणा वादन, राग होगा मालकोस।

0: आज शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। और अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह प्रसारित होने वाले नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर सुनेंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरमई सबेरा। लोक संगीत में 9:15 पर हम सुनवाएंगे डॉक्टर सुरेश तिवारी के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। इनसे मिलिए कार्यक्रम में 9:30 पर सुनेंगे पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास से बातचीत। जिले की चिट्ठी का प्रसारण करेंगे 10:00 और 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में 10:30 पर सुनिए जमीर खान का ख्याल गायन राग बैरागी भैरव। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण होगा। इसमें 11:00 सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय है 12:00 और दोपहर 2:30। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर सुनेंगे कामिनी काय कांतारे धारावाहिक की 10वीं कड़ी। रीवा केंद्र की प्रस्तुतियों में सुनिए दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां रीवा केंद्र की होंगी। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान प्रसारित किया जाएगा 7:45 पर। 8:00 होगा कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में और 9:30 पर सुनेंगे विज्ञान भारती। 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए अदिति बैनर्जी की गाई ठुमरी और दादरा। ये तीनों कार्यक्रम दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सुर्खियों में कार्यक्रम होगा 8:15 पर। ग्राम सभा शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित करेंगे। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने वाले विधेयक को दी मंजूरी, अगले सप्ताह संसद में हो सकता है पेश। छात्र आंदोलन पर केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत, सरकार ने मानी दो अहम शर्तें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना में करीब 185 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को किया भूमि पूजन और लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में इस विधेयक की घोषणा की थी और पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच आज दूसरे दौर की बातचीत शुरू हुई। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने छात्र संगठन सीजेपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई न करने और प्रभावित छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने की शर्तें मान ली हैं। श्री नड्डा ने बताया कि छात्रों ने तीन प्रमुख मांगे और परीक्षा सुधार के पांच सुझाव रखे हैं। इन पर कल दोपहर में फिर बैठक होगी।
1: लगभग दो घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: सोनम वांगशुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वांगशुक से मुलाकात की थी। इसके बाद श्री वांगशुक ने छात्रों की चिंताओं पर सरकार के भरोसे के बाद अनशन खत्म करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष पन्ना मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाएगा। इससे नीट के अभ्यर्थियों को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर और दतिया जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने सुबह मां पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगुलामुखी के दर्शन किए। इसके बाद वे दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। ग्वालियर में श्री सिंधिया ने नीट पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। श्री सिंधिया ने कहा,
2: विद्यार्थी ही देश का भविष्य होता है। जो अनियमितियां हुई है, दंडात्मक प्रक्रिया, उस अनियमितियों के विरुद्ध स्वयं प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के आधार पर जल्द से जल्द दी गई दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी एक विधेयक को कैबिनेट में पेश किया जा रहा है, जिसके आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की घोषणा होगी। जल्द से जल्द दंड दिया जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित किया। इस दौरान रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन सहित दोनों देशों के व्यापारिक प्रतिनिधि मौजूद थे। राष्ट्रपति ने कहा कि रोमानिया अपनी रणनीतिक स्थिति और कुशल मानव संसाधन के कारण भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड 26 जुलाई को प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमतौर पर राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, नवाचार, खेल और पर्यावरण जैसे विषयों पर बात करते हैं। विदेश के कोने कोने में समाज सेवा कर रहे गुमनाम नायकों के प्रेरणादायक विचारों को भी देश के सामने रखते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना जिले के होमगार्ड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 184 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 210 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी अंतरित की। पन्ना में मंच से लोगों को संबोधित करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों के बेहतर भविष्य के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से किन बेतवा लिंक परियोजना को साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा,
4: किसानों के लिए भी हमारी तरफ से कोई कसर को बाकी नहीं रहेगी। किसी का भी मकान, दुकान, खेत खलियान अगर लेंगे तो उसको भी योग्य मुआवजा देंगे। ये हमारी सरकार की योजना, जोरदार अभिनंदन करें। किसानों के लिए भी कभी कष्ट नहीं आएगा। अब केन बेतवा नदी जोड़ों के बाद पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। यहाँ की खेती एक फसल, दो फसल, तीन फसल अब तो पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी।
0: प्रसिद्ध हरियाणवी सिंगर रेणुका पवार इंदौर पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान से जुड़ी हैं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर और सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ी ताकत है।
5: राम राम जी, नमस्कार। मैं रेणुका पवार और आज आप सभी से बहुत जरूरी बात शेयर करने के लिए आई हूँ। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान इंदौर पुलिस द्वारा संचालित किया जा रहा है। स्वस्थ शरीर सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं में नशे और ड्रग्स की लत को इस देश से उखाड़ फेंकना है। आपसे निवेदन है, आप इस अभियान से जुड़े और नशे से देश के युवाओं को बचाने में अपना योगदान दें।
0: प्रदेश में कैच द रेन और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। राज्य सरकार इसे जल गंगा संवर्धन अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 21 जुलाई से 4 अगस्त तक पेयजल का सम्मान और संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में जल अर्पण दिवस और लोक जल उत्सव मनाए जा रहे हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर सहित प्रमुख जिलों के सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने श्योपुर, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, पन्ना जिले के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में भी बारिश की गतिविधियां तेज बनी रहेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी जिले की प्राथमिक शालाओं में निपुण भारत मिशन के द्वितीय चरण की शुरुआत कर दी गई है। नर्मदापुरम के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज 2026 में सभी स्कूलों के छात्र छात्राएं भाग लेने हेतु 25 जुलाई तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। खंडवा में 2 से 4 अगस्त तक आयोजित होने वाले गौरव दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई है। कलेक्टर ने इस बारे में समीक्षा बैठक में बात की। कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल के द्वारा जिले के 10 विकास खंडों में पदस्थ कृषि विकास अधिकारियों को 21 से 24 जुलाई तक संस्थागत प्रशिक्षण दिया गया। सागर जिले में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री तथा राजगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने नरसिंहगढ़ में लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण किया। झाबुआ में गंभीर कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार के लिए मोटीआई 2.0 अभियान अगस्त के प्रथम सप्ताह से शुरू किया जाएगा। और मंदसौर में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत उन्मुखीकरण और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र,
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना प्रिय कार्यक्रम चौपाल।

जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनन वारे हमारी सभी किसान भैया बहनन का बिजलता बहन की दो ही हाथ जोड़ के ने भरी राम राम। और भैया आप और सभी राजी खुशी हो काहे कि भैया देखो हम हमेशा अपने चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से आप और से जो ही ईश्वर से भी मंगल कामना करते हैं कि सभी भैया कुशल मंगल रहें, स्वस्थ और निरोग रहें। ऐसी ही जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे सभी देशवासी जो भी हमारे ई कार्यक्रम को सुन रहे हैं देश विदेशन से, उन सभी पे जो है ईश्वर की हमेशा सदैव कृपा बनी रहे और स्वस्थ और निरोग रहे। और भैया हरो आप और हमारे सभी किसान भैया हर जो है अपने अपने काम काजन में लगे हुई हैं, जुटे हुई हैं, पर भैया हरो हमें भी पूरा यह भी विश्वास है कि जा वक्त हमारे संगे अपने चौपाल कार्यक्रम में इंतज़ार कर रहे हैं कि बहन आवे बारी हुई है और हम अपने

ने वादा के पक्के हैं। तो भैया हर रोज जैसे ही घड़ी की सुई में 7:20 भय सोई खटाक सिनी आ गए अपने चौपाल कार्यक्रम में। अब जैसे अपने भैयन के जैसे बातचीत करन और अपन जैसे विचार कर रहे हुई हैं अब आप कि आज विजयलता बहन चर्चा के माध्यम से का कछु बातें जो है समझाएगी बताएगी जिनके हमें लाभ मिले और अगाऊ आए संवर्धन होवे अपने धंधे व्यवसाय का जो है खेती बाड़ी को अधिक से अधिक लाभ मिले उत्पादन मिले जासों उनकी जो है एक पहचान होवे। और भैया हरो जा वक़्त जो आप और हैं जैसे चौपाल की बात चौपाल में जब अपन बैठते हैं करते हैं तो जा बात को अपन और अच्छी तरह से जानते हैं समझते हैं कि एक भारतीय किसान बहुत मेहनती श्रमशील और कर्मशील होता है। वह सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्यों में लगा रहता है मौसम की परवाह किए बिना ही चाहे सर्दी होवे भैया चाहे गर्मी होवे और चाहे बरसात होवे कार्यों में तैनात रहते जैसे जवान अपने जो है सेना के उस बॉर्डर पे तैनात रहते उसी प्रकार हमारा किसान भी अपने फसल के लाने रात दिन मेहनत करता है और धैर्यता के साथ जो है फसल के पकने का इंतजार करता है। और जैसे प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना सो करता है किसान भाई अन्न फसल और सब्जियां उगाते हैं कि ये पूरे देश भर को जो है भोजन प्राप्त होते हैं। तो भैया अन्न फल और सब्जियां उगाते हैं ये पूरे जो कि भैया हर किसान भैया जैसे खाद्य सुरक्षा की रीढ़ होते हैं। जब ही तो भैया किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है। और ये भी आप और जानते हो कि हम अपने कार्यक्रम में सबसे पहले कहते हैं कि जय जवान जय किसान। और भैया हरो अब तो सरकार भी सभी प्रकार से जो है ध्यान दे रही है सभी तरह की जो है मदद सहायता भी कर रही है और किसानों को सभी किसानों को जो है योजनाओं के माध्यम से धनराशि भी दे रही है कि नहीं। हाँ जैसे कि बात करी जावे किसान सम्मान निधि योजना की तो भैया हरो बात भी बिल्कुल साँची है और सोले आना ये योजना बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। और भैया हरो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को सालाना जो है 6,000 की आर्थिक सहायता देती है। और भैया ई योजना का उद्देश्य एवं लाभ किसानों को जो है किसानों की आय बढ़ावे हेतु जैसे कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये जैसे डायरेक्ट सीधे यानी खाते में बैंकों के द्वारा DPT के माध्यम से प्रदान करे सो जाते हैं। और यह धनराशि भैया ये भी जानते हैं कि 4-4 महीने के अंतराल में 2,000 रुपये के जैसे 3 समान किस्तों में तो प्रदान करती जाते हैं। तो भैया हर यह लाभ उन्हीं भूमि धारक किसानों परिवारों को मिलत है जिनका आधार बैंक खातों में लिंक है। और इन पहल की भैया हर घोषणा पीयूष गोयल ने 1 फरवरी जो है 2000 को जो है भारत के अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 के दौरान करी गई हती। तो भैया हर लगभग जो है 75,000 करोड़ जो है 10.95 अरब के बराबर है। तो प्रति वर्ष यह दिसंबर 2018 में जो है लागू करी गई थी। तो भैया हरो जो तो चर्चा थी अपनी किसान सम्मान निधि पर और अब अपने भैयन को सुनवा रहे हैं जो लोकगीत बाबूलाल कुशवाहा के स्वर में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हाँ भैया, हर रौदे को हम गीत और जो है संदेशन के बाद फिर से हाजिर हैं अपने चौपाल कार्यक्रम में। सभी भैयान को करते हैं स्वागत। और भैया देखो, हमारे किसान भैया हर सभी तरह के जो है फल फूल अपने अपने जो है बगीचों में उद्यानों में लगाते हैं। कई प्रकार के जैसे पेड़ पौधे हैं, फलदार वृक्ष हैं, और जैसे हर तरह के जैसे मौसमी फल हैं, आम हैं, अमरूद है, केला है, जामुन है, करौंदा है, नींबू है, आंवला है, आदि जो है फलदार वृक्ष अपने उद्यानों में लगाते हैं। तो आज अपने किसान भैयान का और अधिक जानकारी के लिए आज ऐसी ही भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं। बाको विषय है उद्यान संवर्धन की योजनाएं, और आज हमारे बीच जानकारी दे रहे हैं श्रीमान सुरेश जैन और उनसे चर्चा कर रहे हैं सोहन सिंह। तो भैया आओ, अब सुनते हैं जो भेंट वार्ता।
3: किसान भाइयों, खेती के साथ साथ हम फल वृक्ष भी लगाते हैं। फल वृक्षों से हमें अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। उद्यान संवर्धन की क्या क्या योजना है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं सहायक संचालक उद्यान भिंड श्री सुरेश जैन साहब। जैन साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जैन साहब, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं आपके विभाग द्वारा संचालित हैं, जिनका हमारे किसान भाई लाभ लेकर अपने पास जो भूमि है उसमें जो फलदार पौधे हैं उन्हें लगा सकते हैं?
4: आज उद्यान संवर्धन के लिए राज्य शासन की ओर से कुछ योजनाएं चलती हैं, कुछ केंद्र शासन की ओर चलती हैं। यहाँ हम पहले राज्य शासन की ओर से जो योजनाएं चलती हैं उसमें फल विकास, जिले में आम, नींबू, अमरूद, आंवला आदि फलों के बगीचे किसान भाई लगा सकते हैं। उसके लिए पूर्व में तो किसान को पौधे हमारी नर्सरियों से दिए जाते थे और शेष सामग्री उसको अनुदान के रूप में दी जाती थी। इस वर्ष से मध्य प्रदेश शासन ने उसमें कुछ थोड़ा बदलाव किया है और ये चाहते हैं कि किसान पौधे कहीं से भी स्वतंत्र रूप से खरीद सकता है। सरकारी नर्सरियों से खरीद सकते हैं, कृषि महाविद्यालय से, कृषि विश्वविद्यालय से या अन्य संस्थान से वो पौधे खरीद सकते हैं और बगीचा आप लगा सकते हैं। किसान भाई जब बगीचा लगा लेते हैं उसके बाद जो अनुदान की राशि है वह किसान के बैंक खाते में सीधे विभाग के द्वारा डाल दी जाती है। इसी प्रकार अन्य योजनाएं भी, जैसे बेर टॉप वर्किंग, देसी बेर के पौधों में किसान के खेतों पर हम कलमी बेर का बड लगा करके उसको कलमी पौधे में बदल दिया जाता है, ताकि उससे जो फल आते हैं उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, किसान को आमदनी भी उससे अच्छी मिल जाती है।
3: जैन साहब, इसके लिए संपर्क निश्चित रूप से आपका जो उद्यान विभाग है वहीं पर करना होगा?
4: हाँ जी, जिले में हमारे सहायक संचालक उद्यान कार्यालय हैं, वहाँ सहायक संचालक उद्यान बैठते हैं और हर जिले में चार चार पाँच पाँच विकास खंड स्तर की नर्सरियाँ भी हैं, शासकीय पौधशालाएँ, वहाँ हमारे उद्यान अधीक्षक बैठते हैं। यद्यपि फील्ड का अमला कम है तो उसको नर्सरी पर जा करके किसान को अपनी समस्याएं अपना पंजीयन कराना चाहिए कि हमको किसका बगीचा लगाना है, कौन से फसल से हमको समस्या है, उसके बारे में जानकारी मिल सकती है।
3: जैन साहब, इसके लिए जो पात्रता रखते हैं उनके लिए कुछ ऐसा कुछ निर्धारित मापदंड हैं क्या?
4: ये सभी वर्गों के किसानों के लिए, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सभी वर्ग के किसान बगीचा लगा सकते हैं। अधिकतम 2 हेक्टेयर तक किसान को लाभ दिया जा सकता है और कम से कम 0.250 हेक्टेयर यानी 1/4 हेक्टेयर तक उसको कम से कम लाभ किसान को दिया जा सकता है। इसके लिए अभी अप्रैल के महीने में किसान हमारे यहाँ पंजीयन करा ले, हमारे यहाँ से उसको मार्गदर्शन मिल जाएगा कि गड्ढे कितने बाई कितने के होना चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी कितनी होना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होना चाहिए, क्योंकि बगीचों के हिसाब से अलग अलग दूरियां निर्धारित की गई हैं।
3: जैसा अभी तो हमारे किसान भाई आपके यहाँ पंजीयन करा लेंगे, लेकिन उनके यहाँ कभी कभी ऐसे पौधे भी होते हैं जिन पर फल आना कम हो जाते हैं या फल देना ही बंद कर देते हैं, ऐसे पौधों के लिए भी जीर्णोद्धार के लिए कुछ कार्यक्रम है?
4: हाँ, केंद्र शासन की ओर से जीर्णोद्धार की एक योजना है, उसमें प्रति हेक्टर 15,000 रुपये का किसान को अनुदान है। उस अनुदान के तहत किसान को हम 20% तक पौधे दे सकते हैं नर्सरियों से, उसके बाद में शेष राशि का वह खाद और दवाई स्वतंत्र रूप से खरीद सकता है, बिल वाउचर उसके हमारे जमा कर देंगे, तो एक किसान को 15,000 रुपये तक की जीर्णोद्धार के लिए अनुदान की योजना है।
3: जैन साहब, कुछ ऐसे संकर बीज, उन्नतशील प्रजाति के बीजों के वितरण की भी कुछ व्यवस्था है
4: किसानों के लिए? सब्जी क्षेत्र विस्तार में एक योजना है 50% अनुदान पर, उसमें जो छोटे बारीक बीज होते हैं जैसे टमाटर का है, भिंडी का है, गोभी का है, इन बीजों की खेती करने पर उसको 12,500 रुपया प्रति हेक्टर का अनुदान किसान को दिया जाता है। किसान स्वतंत्र है, बीज कहीं से प्रमाणित हो, उन्नतशील हो, संकर बीज हो, जो अथोराइज कंपनियाँ उनसे आप खरीद सकते हैं, और पंजीयन हमारे यहाँ हो जाएगा कि आपने टमाटर का 2 हेक्टर में लगाया हुआ है, तो उस एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टर और कम से कम 1/10 हेक्टर तक का अनुदान का लाभ किसान ले सकते।
3: जैन साहब, हमारे किसान भाई चाहे सब्जी उत्पादन करें, फल उत्पादन के लिए बगीचे लगाएं, कोई भी जब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उनके लिए जो सिंचाई के साधन हैं वो ना हो।
4: जी हाँ,
3: सिंचाई साधन बढ़ाने के लिए आपके यहाँ से कुछ योजना संचालित हैं?
4: हाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से सिंचाई में बहुत खर्च आता है, उसको कम करने के लिए, और पानी की भी पूरे देश में प्रदेश में कमी है, उस पानी की बचत करने के लिए एक माइक्रो इरिगेशन योजना केंद्र शासन के द्वारा संचालित है। इसमें जो सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बड़े किसान हैं 2 हेक्टर से ऊपर वाले, इनको 70% का अनुदान दिया जाता है विभाग के द्वारा, और जो लघु और सीमांत किसान हैं 2 हेक्टर से कम वाले, ऐसे किसानों के लिए 80% का अनुदान दिया जाता है। बगीचे में टपक सिंचाई का उपयोग करते हैं, ड्रिप जिसको बोलते हैं, एक पौधे को यदि गर्मी में 7 दिन में 40 लीटर पानी की आवश्यकता है तो ड्रिप के माध्यम से वह 4-5 लीटर पानी में अपना जीवन यापन करेगा, और ड्रिप से कई फायदे भी हैं, श्रमिक भी बचता है, खर्चा भी बचता है, और जितना पानी एक किसान एक दिन में लगा पाता है उतना एक घंटे में ड्रिप के माध्यम से सभी पौधों को बराबर पानी मिलता है। अगर दूसरी विधियों से पानी लगाते हैं, नाली से या लेजम से, तो पहले वाले पौधे को पानी ज़्यादा मिल जाता है और आखिरी वाले पौधे को कम मिलता है। इस टपक सिंचाई के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से, इस कुन्ने से और उस कुन्ने तक आखिरी पौधे तक भी बराबर एक सा पानी मिलता है। किसान भाइयों से कहेंगे कि जिन लोग बगीचे लगाते हैं उनको ड्रिप से ही बगीचे लगाना चाहिए, और सब्जियों के लिए स्प्रिंकलर आता है, कुछ सब्जियों में आप स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करेंगे तो इसमें भी पानी की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, और पूरा खेत एक सा पानी ग्रहण कर लेता है, उससे उत्पादन भी आपको एक सा मिलेगा। और अन्य विधियों से जब सिंचाई करते हैं हम, नाली के द्वारा या पाइप के द्वारा, तो उसमें असमानता बनी रहती है, कहीं पानी अधिक लग जाता है, भर जाता है, तो उससे पौधे मर जाते हैं, उत्पादन उसका कम होता है, और कहीं कम मिलता है पानी तो भी उससे उत्पादन कम होता है।
3: जैन साहब, हमारे किसान भाई ज़्यादातर अनाज वाली फसलें, धान फसलें ही उगाते हैं।
4: जी हाँ,
3: उद्यान की फसलें उगाने के लिए, सब्जी उत्पादन करने के लिए हमारे किसान भाइयों में थोड़ा जागरूकता पैदा हो
4: जी,
3: इसके लिए आपके यहाँ से कुछ प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं?
4: राज्य शासन के द्वारा और केंद्र शासन के द्वारा दोनों प्रकार से योजनाएँ हैं, और विभाग के द्वारा इन प्रशिक्षणों को किसान को हाई टेक्नोलॉजी ज्ञान के लिए प्रशिक्षण दिलाए जाते हैं। राज्य शासन के द्वारा जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं वो हम विकासखंड स्तर पर भी देते हैं, जिला स्तर पर भी हैं, संभाग स्तर पर, आजकल तो हमारे यहाँ राजमाता कृषि विश्वविद्यालय बन गया है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण लेने के लिए किसानों को भेजते हैं, और राज्य के बाहर और राज्य के अंदर भी भ्रमण और प्रशिक्षण दोनों आयोजित किए जाते हैं। इसमें 7 दिन के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं राज्य के बाहर और राज्य के अंदर। राज्य के बाहर जाने के लिए तलेगांव, पुणे में, दिल्ली में, जयपुर में किसानों को भेजा जाता है, वहाँ हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्रीन हाउस, संरक्षित खेती, यानी ऑफ सीजन में जो फसल हो सकती है उसको कैसे उत्पादित करें और किसान भाई उसका अधिक से अधिक किस प्रकार लाभ करें, ग्रीन हाउस में पौध तैयार करके, ग्रीन हाउस में फसल तैयार करके ऑफ सीजन में किसान अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है।
3: जैन साहब, जो बागवान किसान भाई आप चयनित करके भेजते हैं उन्हें कुछ मानदेय भी देते हैं क्या?
4: किसानों को जो प्रशिक्षण भार भेजा जाता है समय समय पर, तो योजना के अनुसार, जिस योजना में जैसा हो, अभी तक जो हमारे यहाँ योजना है उसके अनुसार उनको मार्ग व्यय हमारे विभाग से दिया जाता है, और भोजन हमारे विभाग से दिया था, नगद राशि का कोई प्रावधान उसमें नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि नगद राशि का प्रावधान भी होता है तो उनको हम उस प्रकार से भेज देते हैं।
3: जैसा अंत में उद्यान संवर्धन की जो योजनाएँ संचालित की जा रही हैं उनका हमारे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ लें, इसके लिए और क्या सलाह देना चाहेंगे?
4: किसान भाई अपनी समस्याओं को लेकर के क्या उनके यहाँ समस्या है या वो क्या पैदा कर सकते हैं, इस बारे में हमारे जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान कार्यालय है और विकास खंड स्तर पर शासकीय पौधशाला है, वहाँ आकर के संपर्क करें, मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो जैसे किसी किसान को बगीचे लगाना है, आम, नींबू, अमरूद, आंवला, तो हमारा क्षेत्रीय कार्यकर्ता वहाँ देख करके उसको बता सकता है कि इस ज़िले में कौन सा बगीचा अच्छा सक्सेस हो सकता है या किसकी सब्जी या मसाले की फसल लगाना चाहिए, उससे आपको अधिक आमदनी मिल सकती है। तो किसानों से हमारा अनुरोध है कि वो हमारे विभाग के संपर्क में आकर के विभाग से जानकारियां प्राप्त करके अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लेवें। ठीक, कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी हमारे यहाँ केंचुए बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 15,000 रुपये प्रति गड्ढा उसको अनुदान दिया जाता है। प्याज भंडारण, जिन क्षेत्रों में प्याज बहुत होती है वो 3,60,000 की उसकी कॉस्ट है, उस पर 50% अनुदान उसको दिया जाता है। पैक हाउस पर भी 2,50,000 का कॉस्ट आती है, 1,25,000 50% उसको अनुदान दिया जाता है। प्लास्टिक क्रेट, जिनमें सब्जी और फल रख करके मार्केटिंग करना होता है, मंडी में ले जाते हैं, उस पर भी 50% अनुदान है। और भी समय समय पर इसकी योजनाएं आती रहती हैं, किसानों को संपर्क में, किसानों को प्रशिक्षण के दौरान, किसानों को भ्रमण के दौरान इन योजनाओं की हम जानकारी देते हैं।
3: जैन साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को उद्यान संवर्धन की कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इनका हमारे किसान भाई किस तरह लाभ ले सकते हैं, इस विषय पर जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद।
2: हाँ भैया, रो तो देखो अभी अपन ने सुनी भेंट वार्ता थी उद्यान संवर्धन की योजनाएं। तो जानकारी दे रहे थे श्रीमान सुरेश जैन और उनसे भेंट कर रहे थे सोहन सिंह। तो भैया हरौदे को आपने जरूर ये भेंट वार्ता से आप और इनको किसान भैया को लाभ मिलो हुई है। काहे कि देखो जो भी अपन जैसे जो कमी होते नहीं जान पाते तो देखो जानकारी के माध्यम से आपको अवगत कराते हैं। और अब लेते हैं तनिक विराम और विराम के बाद आपको सुनवाएंगे ममता गोस्वामी के स्वर में लोकगीत।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

हाँ भैया हरो, तो गीत के बाद हम फिर से हाजिर हैं अपने चौपाल कार्यक्रम में, और सभी श्रोता भैया चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले को करते हैं स्वागत। और भैया हरो देखो, जा बात को अपन सभी जानते हैं कि जरूरत की चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं उन्हें अपन समय के अनुसार खरीदते हैं, चाहे वे कौनों सी काय नहीं होवे, चाहे वे घर में काम आने वाली होवे और चाहे वे खेती में जैसे कृषि में लगावे बारे यंत्र हों, तो अपन अपने हाट बाज़ार को जाते हैं और ज़रूरत के मुताबिक उन्हें खरीदते हैं। तो कई तरह की जैसे खाद्य सामग्री हैं, राशन पानी है, पाकों भी अपन जैसे दुकानदार से लेके आते हैं, पर भैया कछु बातों को जैसे अपन भूल जाते हैं और उन्हें दुकानदार से लेते समय या खरीद से समय ध्यान नहीं दे पाते और जल्दबाजी में खरीद के घर ले आते हैं। तो भैया हरो ऐसो बिल्कुल नहीं करने हैं, जो भी अपन जैसे सामान हाट बाज़ार से लेके आते हैं, दुकानदार से लेते हैं, तो लेते समय तो भैया उसी समय एक तो जो देखें कि जाकी अवधि तो नहीं निकल गई हूँ, और उसी जैसे कई टूटी फटी कटी फटी तो नहीं है, और जो भी जैसे सामान है बाकी रसीद जरूर लेवें, काहे कि बार रसीद के आधार पे अपन बा को कह सकते हैं कि घर से भी जैसे ला के वापस कर सकते हैं और दूसरी बदल के ले सकते हैं। तो रसीद जरूर लेवें, बाकी आधार से जैसे अपन शिकायत भी कर सकते हैं नहीं, यह दुकानदार जैसे बाकी बदले में अपन को जैसे उपभोक्ता पर बाकी जांच करा सकते हैं और शिकायत भी कर सकते हैं। तो बाय बदल सकते हैं रसीद के द्वारा जो भी जैसे पतो सो होते हैं जैसे, तो भैया अपन जो सामान कहाँ से और कौन सी दुकान से लाओ है, अपने जैसे कृषि यंत्र हैं और भी यद ख़राब हो जाते हैं या उनमें कोनो कमी आ जाते हैं, उन चीज़ों की कमी रह जाते हैं, तो बाकों अपन दुकानदार से लेके सही जो है करा सकते हैं। अब जैसे हम तो अपने भैया हरन से जो ही कहें कि

एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों को जानना समझना बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। कई तरह के अधिकार भी हैं कि जैसे सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन चुनने का अधिकार। इन अधिकारों की जैसे सही रूप से जानकारी होना और भैया हरो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। एक जागरूक क्रेता बनने के लिए पूरी जानकारी होना बहुत, जैसे कि सभी बातों को शिक्षाप्रद होना जरूरी है, यानी कि पढ़ा लिखा। तो भैया हरो जो तो चर्चा भई अपनी उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में। और भैया देखो कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं जो जहान सिंह कुशवाहा से पर्यावरण गीत।

बिल्कुल सच्ची बात है। वृक्षा को यानी पर्यावरण जो गीत था तो बिल्कुल सोले आने सच्ची बात है। और भैया हरो अपन और जैसे सभी देख ही रहे हैं कि वर्षा बरसात को अपन जैसी चाह रहे हैं वैसी हो नहीं रही है। और हर वर्ष जो है जल स्तर कम हो चलो जा रहा है कि नहीं। तो हम तो अब जो ही कहें कि वर्षा के जल को जो है संचय करें यानी रोकें और समय पर बाको उपयोग करें। पानी का बचाना सभी के लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। और भविष्य के लिए भी समय के अनुसार आवे वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी है। तो हम तो सभी श्रोता भैया से जो ही कहें कि भैया जल बचाएं यानी जीवन बचाएं। जल है तो कल है, बिल्कुल बात साची है। और भैया हमेशा से जो ही कहते हैं कि जल ही जीवन है। तो और भैया हरो देखो अब हो गई है चलवे की बेरा, काहे के भौजी भी इंतजार कर रही हैं तो संजा ब्यारू की। तो अब अपने भैया से जो ही कहें और अपनी बहन विजयलता को दे इजाज़त। तो सभी भैया को राम राम, जय जवान जय किसान।

अब आप प्रियंका अरोड़ा से कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिड़ला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्व

वो उच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपये के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधा

में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्चा की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के

0: इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है, जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश और पत्रकार टीना झा।
3: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल की दो अहम मंजूरियों की, जिन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गई। पहला फैसला है भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन यानी भव्य रसायन को मंजूरी देने का, जिसके तहत देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में की गई थी। लगभग 3,030 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली यह योजना अगले 5 वर्षों में लागू की जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बल्लारी गुंतकल रेलखंड पर 3री और 4थी रेल लाइन बिछाने की परियोजना को मंजूरी। लगभग 1,264 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना वर्ष 2028-29 तक पूरी किए जाने का लक्ष्य है। इसके तहत करीब 46 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और लगभग 99 गांवों के करीब 7 लाख लोगों को बेहतर रेल संपर्क का लाभ भी मिलेगा। इन दोनों फैसलों के दूरगामी प्रभाव औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, कनेक्टिविटी और साथ ही आर्थिक वृद्धि पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री केजी सुरेश। आपका बहुत स्वागत है सर आकाशवाणी में।
4: जी नमस्कार।
3: कैबिनेट ने देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क, ये पहला फैसला है जिसको स्थापित करने के लिए भव्य रसायन योजना की मंजूरी दी है। अनाउंसमेंट थोड़ी देर पहले ही हमने सुना कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया, तो आप इस फैसले को भारत के रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए कितना अहम मान रहे हैं अभी?
4: बिल्कुल, ये जो आज का जो फैसला है मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक है। रसायन उद्योग के लिए तो निश्चित ही मील का पत्थर है, क्योंकि इसके तहत पहली बार एक समग्र विकास की एक कल्पना की गई है कि किस तरीके से रसायन उद्योग को हम एक समग्र विकास, समुचित विकास कर सकते हैं। और इसमें जो भी ये 3 पार्क्स की बात की गई है, इसमें पूरे सिर्फ यूनिट्स ही नहीं स्थापित होंगे बल्कि पूरे वैल्यू चेन इसका जो है, चाहे वो अपस्ट्रीम हो, डाउनस्ट्रीम हो, एंसिलरी इंडस्ट्री हो, ये सारे के सारे, ताकि जो संसाधनों का सबसे बेहतरीन किस तरीके से उपयोग हो सकता है और किस तरीके से कॉस्ट कटिंग हो सकता है, लॉजिस्टिक्स में जो खर्चा आज के तारीख में हो रहा है, केमिकल्स को आवाजाही में जो खर्चा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा हो रहा है, तो ये लॉजिस्टिक्स का खर्चे को बहुत बड़े पैमाने पर कम करेंगे। यही नहीं, इसमें जब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा फैसिलिटीज का और बेसिक

0: यूटिलिटीज होगा, तो फिर आप देखेंगे कि जो रसायन उद्योग है उसके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है ये, क्योंकि इसमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी आएगा और भारतीय रसायन जो उद्योग है उसको वैश्विक स्तर पर जो है कॉम्पिटिटिव बनाना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है
1: जी, अगर इसको थोड़ा
0: जी।
1: और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो मौजूदा जो औद्योगिक क्षेत्र हैं देश भर में या
0: जी
1: इंडस्ट्रियल पार्क्स जिनको सरकार कहती है,
0: जी जी
1: ये जो केमिकल
0: जी
1: पार्क अब अनाउंस किए गए हैं, ये इन सब
0: जी
1: मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों या इंडस्ट्रियल पार्क से किस तरह से अलग होंगे?
0: ये एक्सक्लूसिव होगा केमिकल इंडस्ट्री के लिए। जैसे अब अभी आप देखते हैं आईटी पार्क्स देखते हैं, सॉफ्टवेयर पार्क्स देखते हैं, जहां सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए सारे एंसिलरी इंडस्ट्री, सारे उसकी जो लॉजिस्टिक्स की व्यवस्थाएं एक जगह करने का एक प्रयास होता है। अगर आप एक बड़े इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र में आपने रसायन का उद्योग लगा दिया तो वो स्टैंड अलोन होगा, यहां सबके सब एक क्लस्टर बना दिया जाएगा जिसके तहत जो है सभी इंडस्ट्रीज एक साथ जो है एक जगह से, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन में जो होगा, रेल हेड्स अगर वहां शुरू करने हैं गुड्स के माध्यम से अगर करना है, तो ये सारा कुछ जो लॉजिस्टिक जो है वो तभी संभव हो पाएगा जब सब एक ही जगह में केंद्रित है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए केमिकल ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा हजार्डस भी होता है।
1: जी
0: इस दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे, सेफ्टी के दृष्टि से भी देखेंगे, तो एक क्षेत्र में आप स्पेसिफिक, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते थे, वैसे ही एक डेडिकेटेड जोन होगा। अब ये देखने वाली बात है कि किधर किधर इसको स्थापित किया जाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य है कि पूरे देश में जो है हम रसायन उद्योग को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आज बहुत बड़े पैमाने में हम लोग रसायन को जो है आयात करते हैं।
1: जी
0: इसको हम अगर कॉम्पिटिटिव बन गए, एक जब आप कई चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट को शेयर करते हो, एक जगह में आपका जब सारा सेटअप होता है तो आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हो, आपका इंडिविजुअल जो खर्चा होता है यूनिट्स का उसमें कमी आती है, और निश्चित ही एक्सपोर्ट्स में हमें उसका फायदा मिलेगा, हम बेहतर चीजों को कॉम्पिटिटिव रेट्स में हम इसको बेच पाएंगे। तो न सिर्फ आयात को कम करना है अपितु भारतीय रसायन उद्योग को जो है निर्यात के जो मौके हैं उसको भी कैसे बढ़ावा देना है, और इसको किस तरीके से हम एक सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो है, क्योंकि पर्यावरण एक बड़ा चिंता का विषय हमेशा रहता है, तो हम ऐसे सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटीज होंगे जहां अभी हम एक चिंता रहती है कि भाई केमिकल्स जो है कभी नदी में बहाया जाता है, कभी नदी नालों में चला जाता है, कभी अंडरग्राउंड चला जाता है, तो इसके लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की भी बात की गई है, ट्रीटमेंट की बात की गई है, स्टोरेज और डिस्पोजल, बहुत बड़ा विषय होता है केमिकल्स को डिस्पोज ऑफ करना, क्योंकि उसमें बहुत जो है खतरे भी होते हैं, आग लगने की खतरे होते हैं, केमिकल्स के फैलने से जो है कई घटनाएं आपने देखा है लीकेज को लेकर जो है कई
1: जी
0: घटनाएं रिपोर्ट की गई है देश में। तो जब एक जगह इन सब चीजों को किया जाएगा, हजार्ड वेस्ट जो होता है इसका वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा ही कठिन होता है, अगर इसको एक जगह में अगर केंद्रित करके एक पार्क में अगर हम इसको करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका बेहतर कंप्लायंस होगा, और जो पर्यावरण के रेगुलेशंस हैं, नियमन हैं, उसके अनुसार हमारी ये इंडस्ट्री जो है बेहतर तरीके से चल पाएगी।
1: बिल्कुल, आपने पर्यावरण संबंधी चिंताएं इसमें बखूबी समझाई हैं। इसी व्यापक सोच को आगे बढ़ाती हुई एक दूसरी जो मंजूरी दी गई है, जो दूसरा कैबिनेट का फैसला है, वो है बल्लारी गुंतकल रेलखंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने को मंजूरी देने का। तो रेलवे के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार के लिहाज से तो ये काफी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये परियोजना पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत भी इससे जुड़ी हुई है, इसके अंतर्गत ही इसको मंजूरी दी गई है। इस सोच को किस तरह से आगे बढ़ाती है ये परियोजना आज जिसको मंजूरी मिली है सुरेश जी, और खास करके जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं और हम कहते हैं कि जो भी देश में हो रहा है, जो भी ग्रोथ है, जो भी बेनिफिट्स है, वो हर उस नागरिक के पास पहुंचे, हम अंत्योदय की बात करते हैं, तो उस अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये योजना कितनी महत्वपूर्ण आपकी नजर में?
0: देखिए, मैं समझता हूं कि रेल एक क्षेत्र है जहां हमने अप्रत्याशित विकास किया है, खासकर पिछले 10-11 वर्षों में, और अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा, जींद में देखा, हमने देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन देखा, जो शायद विश्व में उस स्तर का हाइड्रोजन का उपयोग होता है, जितने सारे डब्बे हमारे यात्रियों के लिए उसमें लगे हैं, इस तरह की व्यवस्था दूसरे किसी देश में नहीं है। तो जो भी हम काम करते हैं उसको बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं। एक चीज जरूर आपको यहां बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए कॉपरेटिव फेडरलिज्म, जो है उसी के तहत काम हो रहा है। चाहे कितने भी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब आवंटन की बात आती है, संसाधनों की बात आती है, तो केंद्र सरकार इस मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। ये दोनों जगहों में जो है, अगर आप देखेंगे जो लाभ इसको मिल रहा है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को, अब दोनों जगह जो है केंद्र में जो सत्ताधारी दल है उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है उस प्रदेश के पूरे देश को सबका साथ सबके विकास के अंतर्गत मैं समझता हूं कि ये परियोजना तैयार की गई है। और निश्चित ही जो है आज हम मेट्रो का जो एक्सपेंशन पूरे देश में हुआ है, आज हम अल्टरनेटिव जितने मोनोरेल्स की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो उसी दिशा में मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को जो इस वक्त नेटवर्क है उसको लगभग 46 किलोमीटर सिर्फ रेल नेटवर्क होगा, नया रेल ट्रैक्स जो है वो बिछाए जाएंगे। सरकार का हमेशा जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहा है, तो उसको देखते हुए जो है लगभग 99 गांव जिसमें 7 लाख के करीब लोग हैं उनको इस परियोजना से लाभ मिलेगा। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से चाहे वो सामग्री गुड्स को ले जाने के मामला हो या पैसेंजर्स का हो, उनको जो है किस तरीके से हम एक अफोर्डेबल यात्रा की व्यवस्था कर सकते हैं। याद रखें कि जो ये रूट की बात की गई है इसमें बहुत प्रमुख पर्यटन के भी केंद्र हैं और साथ ही साथ धार्मिक केंद्र भी है। एक तरफ बेल्लारी फोर्ट जैसे इलाके हैं तो दूसरी तरफ श्री कुमार स्वामी मंदिर जैसे बहुत पवित्र स्थान भी जो है इसमें है। तो इस तरीके से हम टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो कोई भी योजना जब हम लागू करते हैं तो ये प्रयास रहता है कि उसका जो मल्टी प्रोंग्ड, उसके जो लाभ हो वो बहुआयामी हो, सिर्फ एक दिशा में नहीं कि चलो रेल की पटरी खुल गई, पर्यटन को भी लाभ होगा, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ होगा, वहां के कृषि क्षेत्र को भी लाभ होगा, वहां के गुड्स को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में, कनेक्टिविटी बनाने में लाभ होगा। तो मैं समझता हूँ इस सभी दृष्टि से ये प्रोजेक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि आधुनिकीकरण, और जिस तरह से आपने बताया कि स्थानीय स्तर पर जब निर्माण कार्य होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधि में भी कई तरह के अवसर पैदा होंगे और टूरिज्म की भी आपने बात कही। अंत में यदि हम आपसे जानना चाहें कि अगर हम देखें कि रेलवे का ये सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स वन अमंग मेनी प्रोजेक्ट्स, कई विभिन्न परियोजनाओं को साथ अगर हम रखकर देखें, तो क्या आकलन है आपका कि भारतीय रेलवे में किस तरह का व्यापक बदलाव पिछले कुछ सालों में हुआ है और देश भर में इसका लाभ अगर आम नागरिकों को और देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से न सिर्फ अभी मिल रहा है बल्कि आगे आने वाले 20-30 सालों के बाद उनकी जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा। और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये परियोजनाएं जब आज अनाउंस भी कर रहे थे केंद्रीय मंत्री, तो उन्होंने आगे का एक रोड मैप बताया और उन्होंने बताया कि ये परियोजनाएं हर उस विजन से जुड़ी हुई हैं जो हमें 2047 विकसित भारत की ओर ले जाएंगे।
0: आधुनिकीकरण जब भी होता है, आज हम देखेंगे जो सड़कों का जाल फैलाया गया है, चाहे वो ईस्टर्न क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे हो, देखिए जहां हवाई जहाज तक उतर सकते हैं, फाइटर प्लेन्स उतर सकते हैं, इस स्तर का जो है बनाया गया है। रेलवे, हम कभी कश्मीर में ट्रेन का जाने का हम सोच नहीं सकते थे, अभी मैं उत्तराखंड से आ रहा था तो उत्तराखंड में रेल का काम चल रहा है, पहाड़ों को काट के जो है रेलवे को वहां तक पहुंचाने का काम चल रहा है। तो आम जनता को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, उनके यहाँ रोजगार निवेश कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होता है तो औद्योगीकरण होता है, औद्योगीकरण होता है तो रोजगार निर्माण होता है, रोजगार निर्माण होता है तो जीडीपी बढ़ती है, उसमें जो है लोग जो है खर्चा कर पाते हैं अपने जेब से, और उससे जो है हमारे अर्थव्यवस्था है उसको स्फूर्ति मिलती है, उसको गति मिलती है। ये जो एनर्जी एफिशिएंसी पर जोर दिया गया है, और इससे जो है एक तो हमारे नेट जीरो का हमने जो एक कमिटमेंट दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमिशंस को लेकर, उसमें क्लाइमेट चेंज में यानी कि जो मौसम में बदलाव आ रहा है वो सब विषयों को लेकर हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होगा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, क्योंकि जब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा और इसके साथ साथ हमारा जब तेल का हम जो आयात करते हैं वो बहुत बड़े तादाद में कम होगा, जब हम रेल के माध्यम से, हम जब हाइड्रोजन ट्रेन जैसे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जब हम चलाते हैं तो उसका फर्क होता है। और निश्चित ही जो है हम समझते हैं कि उससे न सिर्फ हमारा अपना जो प्रदूषण और अन्य चीजों से हम बचते हैं, पर्यावरण बेहतर होता है, अपितु जो वैश्विक स्तर पर भी हमारा उसमें योगदान रहता है। तो मैं समझता हूं कि एक विकसित भारत 2047 की जब कल्पना करते हैं तो वो समावेशी है, उसमें हम पर्यावरण को साथ में लेते हुए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है जिसमें हम तरक्की भी करें लेकिन एक संतुलित तरक्की हो जिससे जो है हमारे पर्यावरण को भी चोट ना पहुंचे, हमारे लोगों को भी लाभ पहुंचे और उद्योगीकरण जो है वो एक ह्यूमन फेस के साथ हो, एक मानवीय चेहरे के साथ हो।
1: बिल्कुल, संतुलित लेकिन समावेशी ग्रोथ, यही हमारा मंत्र है और इसी मंत्र के साथ हम 2047 विकसित भारत के सपने की ओर बढ़ रहे हैं। समय इतने की ही इजाजत देता है। सुरेश जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए,
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, सुर्खियों में आज इतना ही, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश और पत्रकार टीना झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

सुर्खियों में। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत है सुराग फिल्म का, आवाज लता मंगेशकर की, कैफी आजमी के बोल और बप्पी लहरी का संगीत।

श्रोताओं, अगला गीत सुनने से पहले एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना है। ये प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित किया जाता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड और निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदक को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों और समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों और आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। सूचना समाप्त हुई। और लीजिए, अब सुनिए फिल्म संगीत का अगला गीत, लम्हे फिल्म से। लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाजें। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं शिव हरी।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। एक सूचना सुनिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट्स अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर

0: चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने और संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है।

साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी

0: जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगें रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय

0: और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्य प्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर एक डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers
4: J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh, and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both houses of parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
5: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
4: Spokesperson of CJP Ashutosh Ranka, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the third and fourth rail line of Bellary-Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. It will increase the existing network of Indian Railways by about 46 kilometers. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka.
6: Aaj approval hua hai Guntakal se Bellary third and fourth line.
7: Today approval has been granted for the construction of the third and fourth railway lines between Guntakal and Bellary. Further ahead, the detailed project report for the third and fourth railway lines between Hospet and Hubli is already under preparation. This will create a complete economic corridor in North Karnataka connecting both Karnataka and Andhra Pradesh.

0: BRICS ministerial meeting on disaster risk reduction in New Delhi. The meeting concluded with the unanimous adoption of the BRICS joint statement on disaster risk reduction. In the statement, member countries have reaffirmed the collective commitment to accelerate implementation of the BRICS disaster risk reduction work plan from 2025 to 28 and to deepen cooperation for building resilient societies. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, disrupting normal life across multiple districts. Today, the North Gujarat region received a heavy downpour, with Radhanpur in Patan district recording over 9 inches of rainfall and Santalpur witnessing nearly 9 inches. Our correspondent reports Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi are continuously monitoring the flood situation in South Gujarat. A report.
1: Rescue and relief operations are underway on war footing in all the flood-affected districts, including Navsari, Surat and Valsad. In Navsari, joint teams of NDRF, SDRF and Indian Army have evacuated over 14,000 residents from flood-affected areas. In Ahmedabad, Chief Minister Bhupendra Patel inspected heavily affected areas, including Amli and Ghuma, and held a high-level review meeting with Health Minister Rishikesh Patel. The CM directed authorities to clear the waterlogged housing societies at the earliest. Meanwhile, train movement on Western Railway has been severely affected even today due to the waterlogging on Billimura rail section and between Charodi and Viramgam stations. As a precautionary measure, several major train services have been cancelled today. Meanwhile, IMD has predicted widespread heavy rainfall across the state for tomorrow and issued red alert for 7 districts in the state. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
0: In Maharashtra, heavy rainfall over the past 2 days has triggered flood-like conditions in several parts of Palghar district, disrupting connectivity in villages across Dahanu, Talasri and Palghar talukas. India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall tomorrow in parts of Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and Rajasthan. Parts of northern states, northeast India, coastal Karnataka, Gangetic, West Bengal and south interior Karnataka are also expected to receive moderate to heavy rainfall tomorrow. Thunderstorms and lightning conditions are expected in the rest of India. In Himachal Pradesh, 13 people were killed after a vehicle they were travelling in was crushed by a massive boulder that fell from a hillside near Kadunala on the Udaipur Killer Road in Himachal Pradesh's tribal district of Lahol Spiti this afternoon. Deputy Commissioner and Chairperson of the District Disaster Management Authority, Lahol Spiti, Kiran Bhadana said, the process of identifying the deceased is currently underway and detailed information will be shared only after official confirmation. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan have expressed grief over the tragic incident. Union Minister Ravneet Singh has resigned from the ministry. President Draupadi Murmu has accepted his resignation with immediate effect. He was serving as Minister of State for Railways and Food Processing Industries. Benchmark domestic equity indices pared their initial losses and ended 0.43% down today. A report.
2: Sensex dropped by 332 points to end at 76,060, while Nifty slipped 102 points to close at 23,767. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index lost 0.1% and the Small-Cap 100 Index fell by 0.3%. In the foreign exchange market today, the rupee ended nearly flat at 96 rupees and 56 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Arjun Chaudhary for Akashwani News.
0: Global crude oil prices retreated today after surging earlier in the session. Brent crude was trading 3.1% down at $97.58 per barrel in intraday trade. On to sports. In shooting, India's Sayam won the silver medal in the women's 10-meter air pistol event at the ISSF World Cup in Hangzhou, China, opening the country's medal account at the tournament. The 22-year-old shooter scored 243.4 in the final to secure a podium finish against a strong international field. And in the Commonwealth Games in Glasgow, India's Srihari Natraj has advanced to the men's 50-meter backstroke semi-finals on the second day. Natraj clocked 25.52 seconds in the heats to qualify 14th among the 16 semi-finalists. The semi-finals will be held tonight. The world-famous Bahuda Yatra of Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra was celebrated with immense spiritual fervour in the holy city of Puri in Odisha today. Millions of devotees witnessed the sacred return journey of the sibling deities from the Sri Gundicha Temple to the Sri Jagannath Temple amid elaborate security arrangements. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh, and new chemical park scheme to boost industrial growth. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। मरकजी काबीना ने पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधली के मामलों पर फास्ट ट्रैक अदालत तश्कील किए जाने और सख्त सजा तजवीज किए जाने के सिलसिले में एक बिल के मुसव्विदे को मंजूरी दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अहलकारों को बरतरफ कर दिया है। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के वफद से मुलाकात की। इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने कर्नाटक आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनों की तामीर और केमिकल पार्क की नई स्कीम को मंजूरी दी है ताकि सनअती तरक्की को फरोग दिया जा सके। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन की जानिब से शोरगुल के सबब रखना अंदाजी का शिकार रही। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मामूल की जिंदगी मुतासर हुई है और ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में सैनियम ने चीन में ख्वातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज एक बिल के मुसव्विदे को मंजूरी दी है जिसके तहत पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधली के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों की तश्कील और सख्त तरीन सजा को यकीनी बनाने की बात की गई है। काबीना की मीटिंग की सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की। ये मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुई और बिल के मुसव्विदे को मंजूरी दी गई। जराए ने आकाशवाणी की खबरों के शोबे को बताया कि मुजव्वजा बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किए जाने की उम्मीद है। कल एक वीडियो मैसेज के जरिए वजीर आजम मोदी ने एक बिल लाने के बारे में ऐलान किया था जिसमें पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई की शिकों को शामिल करने की बात की गई थी और जिसके बारे में वजीर आजम ने कहा था कि इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इम्तिहानात में अहम इस्लाहात किए जाने के सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अहलकारों को उनकी खिदमात से बरतरफ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इनमें से कुछ अहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये एनटीए की मुकम्मल सफाई का एक हिस्सा है जो पेपर लीक के मामलों में तनाज़े का शिकार रही है। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि इम्तिहानात में धांधलियों की रोकथाम के सिलसिले में सख्त बिल लाने में कोई ताखीर न की जाए। पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि मुल्क भी यही चाहता है और इस बिल की मंजूरी में कोई रुकावट पेश नहीं आनी चाहिए। जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज के लिए अहम इकदामात कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अपोजिशन इस मामले पर पार्लिमानी बहस में रखना अंदाजी करती है तो उसे मुल्क के नौजवानों के गुस्से का सामना करना होगा। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीजेपी वफद से मुलाकात की। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब नड्डा ने बताया कि उन्होंने इम्तिहानात के निज़ाम में इस्लाहात से मुतालिक सीजेपी के मुतालबात को इंतहाई सब्र व तहम्मुल के साथ सुना। जनाब नड्डा ने कहा कि सीजेपी ने तीन अहम मुतालबात पेश किए हैं और इम्तिहानात के पर्चों के लीक को ख़त्म करने के लिए कुछ इस्लाहात की सिफारिश भी की है। जनाब नड्डा ने मजीद बताया कि हुकूमत कल वफद के साथ एक बार फिर बातचीत करेगी।
4: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से

0: जवाब देते हुए जनाब प्रसाद ने कहा कि अब जबकि इंटरनेट का इस्तेमाल और डिजिटल रसाई तेज रफ्तारी के साथ वसत इख्तियार कर रही है, ऐसे में नामुनासिब कंटेंट और दीगर ऑनलाइन खतरात तक बच्चों की रसाई का खतरा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के नुकसानदेह असरात से बच्चों और नाबालिगों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत ने इस तरह की इत्तलाआत को आम होने की रोकथाम के सिलसिले में कई इकदामात किए हैं। नई दिल्ली ने आज कहा है कि इस्लामाबाद के साथ सिंध आबी मुआहिदा तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक वो सरहद पार दहशतगर्दी से दस्तबरदार नहीं हो जाता। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान मीडिया की उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया कि भारत जानबूझकर पड़ोसी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है। चीन के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी भी किसी भी अंदाज में चीन की सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं की है और इस बारे में भारत का रवैया हमेशा यकसा रहा है। उन्होंने कहा कि सालमियत के मामले तो दरअसल भारत को उठाने चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन साल 1963 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी तरीके से काबिज है जिन पर भारत के हक को चीन तक ने सरकारी तौर पर तस्लीम किया है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार खत्म होने से 2 साल कबल ही खराबी सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया है। पार्लियामेंट के स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वो नए सदर के मुंतखब होने तक कारगुजार सदर के तौर पर फराइज अंजाम देंगे। साबिक जज और साल 1971 की बांग्लादेश की जंग आज़ादी के सिपाही रहे शहाबुद्दीन अप्रैल 2023 में सदर बने थे। शदीद बारिश ने गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। गुजरात के मुख्तलिफ अजला में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। आज शुमाली गुजरात में शदीद बारिश हुई। पाटन जिले के राधनपुर में 9 इंच से ज्यादा जबकि संतलपुर में भी 9 इंच के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई। वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष सांघवी जनूबी गुजरात में सैलाब की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: गुजरात के सैलाब से मुतासर अजला नवसारी, सूरत और वलसार में राहत और बचाव का काम जारी है। नवसारी में NDRF, SDRF, फौज और मकामी गोताखोरों ने एक मुश्तरक ऑपरेशन में सैलाब ज़दा इलाके से आज 14,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। अहमदाबाद में वज़ीर-ए-आला भूपेंद्र पटेल ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और वज़ीर सेहत ऋषिकेश पटेल के साथ एक आला सतह की मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया और अम्बली और घुमा रिहायशी सोसाइटियों में भरे पानी को जल्द अज जल्द निकालने की हिदायत जारी की। बिलमोरा रेल सेक्शन के रोड और विरंगम स्टेशनों पर पानी भर जाने से मगरबी रेलवे की खिदमात आज भी शदीद तौर पर मुतासिर हुई। एहतियाती तदाबीर के तौर पर आज मुतद्दिद रेलगाड़ियों को मनसूख करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने कल भी पूरी रियासत में शदीद बारिश की पेशगोई की है और 7 अजला में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
0: आंध्र प्रदेश के आबपाशी महकमे ने कहा है कि एल नीनो असर की वजह से रियासत में बारिश में काफ़ी कमी आई है जिससे कृष्णा नदी में आने वाले पानी का बहाव कम हो गया है। विजयवाड़ा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आंध्र प्रदेश आबपाशी महकमे के इंजीनियर इन चीफ के नरसिम्हा मूर्ति ने कहा कि रियासत में 51% कम बारिश दर्ज की गई है जबकि कृष्णा डेल्टा में मामूल से 49% कम बारिश का इंदराज हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में आज दोपहर उदयपुर किल्लर रोड पर काडू नाला के पास पहाड़ी से गिरे एक बड़े पत्थर की जद में आकर एक गाड़ी दब गई जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। लाहौल स्पीति के डिप्टी कमिश्नर और जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की चेयरपर्सन मोहतरमा किरण भड़ाना ने बताया कि महलूकीन की शिनाख्त का अमल जारी है और बाजाबता तस्दीक के बाद तफसीली मालूमात फराहम की जाएंगी। शूटिंग में भारत की सैनियम ने चीन में ISSF आलमी कप में ख्वातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। 22 बरस की निशानेबाज सैनियम ने फाइनल में 243.4 पॉइंट स्कोर किए और इस तरह मजबूत बैनुल अक्वामी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں کے دوسرے دن بھارت کے سری ہری نٹراج مردوں کے 50 میٹر بیک اسٹروک تیراکی کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں نٹراج نے ہیٹس کے دوران 25 سیکنڈ اور 52 ملی سیکنڈ کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیمی فائنل میں پہنچے 16 تیراکوں میں 14 مقام حاصل کیا سیمی فائنل مقابلے آج رات ہوں گے اس سے پہلے بھارت کے روی ویرا وینکٹ بڈگینا اور علی امام مردوں کے ایس 1300 میٹر فری اسٹائل پیرا تیراکی مقابلے کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر مرکزی کابینہ نے پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں پر فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل کیے جانے اور سخت سزا تجویز کیے جانے کے سلسلے میں ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے نئی دلی میں سی جے پی کے وفد سے ملاقات کی اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک آندھرا پردیش میں نئی ریلوے لائنوں کی تعمیر اور کیمیکل پارک کی نئی اسکیم کو منظوری دی ہے تاکہ صنعتی ترقی کو فروغ دیا جا سکے اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا
2: یہ آکاشوانی مدھیہ پردیش ہے پرستوت ہے کھیل جگت

0: खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपीय। श्रोता, खेल केवल प्रतियोगिता का नाम नहीं बल्कि यह अनुशासन, समर्पण, आत्मविश्वास और निरंतर संघर्ष करने की प्रेरक कहानी भी है। जब कोई खिलाड़ी कठिन चुनौतियों को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है तो उसकी सफलता अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। हाल ही में ग्वालियर में आयोजित मध्य प्रदेश मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में इन्होंने लगातार तीसरी बार बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश का खिताब अपने नाम किया। हम बात कर रहे हैं भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल जी की। आइए उनसे उनके खेल जीवन, संघर्ष, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मनीष जी। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: अभिषेक जी, मध्य प्रदेश के बेस्ट लिफ्टर का जो खिताब अभी हाल ही में आपके नाम हुआ है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अपनी इस उपलब्धि के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि यह उपलब्धि पाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है?
1: लगातार तीसरी बार बेस्ट लिफ्टर बनना अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने खेल संस्थान के लिए, अपने जिस जिले का आप प्रतिनिधित्व करते हो, सभी के लिए एक गौरवपूर्ण पल रहा वो। और लगातार तीसरी बार बेस्ट लिफ्टर बनना आपको एक मोटिवेशन देता है
0: जी।
1: और लगातार इस टाइटल को आप कंटिन्यूसली, आप एक बार बेस्ट लिफ्टर बनना मतलब उतना चुनौतीपूर्ण नहीं रहता जितना कि आप एक बार बनने के बाद उस सफलता को बचाए रखना कि आप दूसरी बार भी उस टाइटल को सेव कर पाते हो और तीसरी बार भी उस टाइटल को आप सेव कर पाए। काफी अच्छा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए पल रहा वो।
0: जी जी जी, आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अब बात करते हैं पावर लिफ्टिंग की, तो पावर लिफ्टिंग की ओर आपका रुझान कैसे हुआ और इस खेल में आने की प्रेरणा आपको कहां से मिली?
1: मैं क्योंकि फॉर्मर नेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी हूं तो स्टार्टिंग से ही खेल के प्रति मेरा रुझान रहा क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलता था। उसके बाद मैं फिटनेस के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया
0: जी।
1: और इसके बाद धीरे धीरे मैं बॉडी बिल्डिंग में आया। बॉडी बिल्डिंग के दौरान, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के ट्रेनिंग में हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, मसल को बिल्ड करने के लिए वेट लिफ्टिंग करते हैं, और बॉडी बिल्डिंग में भी मैंने मध्य प्रदेश में जो स्तर था उस स्तर से ऊपर जाने का ही टारगेट रखा मैंने। मतलब सेरू क्लासिक, मैच्योर ओलंपिया इंडिया और अर्नॉल्ड क्लासिक जैसी विश्व की जो प्रतिष्ठित स्पर्धाएं हैं उनमें रजिस्ट्रेशन किया और उनमें खेलने का प्रयास किया। उनमें खेला भी मैं, टाइटल होल्ड भी किया। इसके बाद 22-23 में जब मैं मैच्योर ओलंपिया खेलने के बाद मैंने अर्नॉल्ड क्लासिक का रजिस्ट्रेशन किया और उनने मेरा इन्विटेशन स्वीकार किया, उन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजा उसके लिए। बट कोविड की जो वेव आई तो उसके वजह से वो कॉम्पिटिशन कैंसिल हो गया
0: जी।
1: तो थोड़ा सा वो एक फेज था। उसके बाद क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही 2019 से ही मैं पावर लिफ्टरों को ट्रेनिंग देता था तो धीरे धीरे धीरे फिर उस कॉम्पिटिशन के बाद मैं पूरी तरीके से पावर लिफ्टिंग में आ गया और इसके बाद मैं प्रोफेशनली कम्पीट करने लगा। उसके पहले मैं कॉम्पीट नहीं करता था, सिर्फ मैं अपनी मसल को डेवलप करने के लिए ही वेट लिफ्टिंग करता था।

0: पावर लिफ्टिंग करता था, तो इसके बाद में पूरी तरीके से पावर लिफ्टिंग में
1: जी। ओलंपिया प्रतियोगिता में भी आपने भाग लिया और टॉप 6 में आपने अपनी जगह बनाई, यह अनुभव आपका कैसा रहा?
0: अमेच्योर ओलंपिया में मेरी जो हाइट के अकॉर्डिंग जो मेरा जो इवेंट है वो मेरा क्लासिक फिजिक है, क्लासिक फिजिक डिवीजन ए में आता हूँ, उसमें मुझे बॉडी वेट 80 के नीचे रखना होता है
1: जी
0: मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन की थी, बहुत ही मिनिमम डाइट में, उस समय 3-3 घंटे कार्डियो करता था, डेली 20 किलोमीटर साइकिलिंग करता था, तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी मेरी। बस जो प्रोग्राम था उसको शायद हम समझ नहीं पाए, क्योंकि उसमें एक पहले प्रीजजिंग होती है, प्रीजजिंग के बाद फिर फाइनल डे होता है।
1: जी जी जी।
0: तो प्रीजजिंग में मैंने अपनी बॉडी को, क्योंकि हम बॉडी बिल्डिंग में अपनी बॉडी को हर दिन मैक्सिमम पुश नहीं कर सकते
1: जी,
0: तो मैंने अपनी बॉडी को मैक्सिमम पुश नहीं किया, नॉर्मली प्रीजजिंग में मैंने किया। प्रीजजिंग के बाद जब नेक्स्ट डे मैंने बहुत अच्छा बॉडी को पीक पे ला करके और बॉडी को एक्सट्रीमली वाटर कट करके शो के लिए गया मैं और ऑन स्टेज आया, बट जजेस ने जो रिजल्ट अनाउंस किए वो प्रीजजिंग के आधार पे कर दिए। इस वजह से मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि मैं वहाँ पे टॉप आऊँगा, तो टॉप ना आ करके मैं टॉप 6 में रहा। उस समय जो कंडीशनिंग थी, उस समय जो प्रिपरेशन थी मेरी काफ़ी अच्छी थी, बट फिर भी अमेच्योर ओलंपिया एक छोटा कॉम्पिटिशन नहीं है, उसमें एशियन कंट्रीज़ के लगभग सारे, इंडिया के अलावा इंडिया के आसपास के सारे कंट्रीज़ के प्लेयर आते हैं खेलने के लिए, तो एक अच्छा बड़ा स्टेज था। बड़ा स्टेज में अगर मैं देखूँ तो टॉप 6 भी आना मध्य प्रदेश और मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए काफ़ी अच्छा गौरवपूर्ण पल था
1: जी। निश्चित तौर पर हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि यह जो ओलंपियाड का जो कॉम्पिटिशन होता है वो एशिया लेवल का कंपटीशन होता है और उसमें लगभग सभी देशों के काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स भाग लेते हैं और उसमें टॉप 6 तक पहुंचना निश्चित तौर पर ये बहुत ही गौरव के पल है आपके लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जो शायद आपको देखते हैं अपने भविष्य के तौर पे। अब जैसे मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 हाल ही में जो संपन्न हुई, उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि उसमें आपका प्रदर्शन कैसा रहा?
0: मध्य प्रदेश स्टेट पावर लिफ्टिंग थी, उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट जिला इकाइयां हैं उनने पार्टिसिपेट किया। कॉम्पिटिटर्स थे सभी जगह के, इंदौर के थे, जबलपुर के थे, ऐसे सभी जगह के थे। और वहाँ हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि हमको सिर्फ वहाँ पे अपना प्लेस क्लियर करना है, जिससे हमारा सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हो जाए
1: जी।
0: और मेरा ये हमेशा मूल मंत्र रहा है कि मैं अपने प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी को मैं ये नहीं मानता हूँ कि मुझे इसे हराना है। मेरा ये है कि यदि अगर हम 10 लोग हैं या हम 100 लोग हैं, उसमें से जो उस दिन उस पल उस क्षण में जो बेहतर करेगा वही विजेता बनेगा।
1: बिल्कुल।
0: मैं अपनी चीज़ें ड्यूरिंग मीट भी मैं अपने कॉम्पिटिटर से शेयर करता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैपेबल नहीं है या पर्टिकुलर उस टाइम उनके पास है नहीं, तो मैं शेयर करता हूँ कि आप लो, आप मेरी चीज़ यूज़ करो, आप खेलो, आप बेहतर होगे तो आप ही जीतोगे, मैं बेहतर ये दूंगा तो मैं जीतूंगा।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी बात की। और इसीलिए कहा जाता है कि स्पोर्ट्स में कंपटीशन होते हैं वो बहुत ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आप में एक टीम भावना की बात आती है। अभिषेक जी, सामान्य इंसान को समझाना चाहे तो आप कैसे बताएंगे कि पावर लिफ्टिंग आखिर क्या होती है?
0: पावर लिफ्टिंग एक्चुअली, पावर और लिफ्टिंग, वह व्यक्ति जो कम से कम बॉडी वेट में मतलब वजन में और जितना ज्यादा से ज्यादा भार उठा पाए, वेट लिफ्ट कर पाए, वो होता है पावर लिफ्टर
1: जी।
0: पावर लिफ्टिंग में 3 चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। एक कंधे पे रॉड और वजन रख करके आपको बैठना है, फिर ऊपर आना है। एक चेस्ट पे भार लाना है और ऊपर करना है। और वेट लगा हुआ है डेडलिफ्ट, जिसको डेडलिफ्ट बोलते हैं, नीचे भार को ऊपर की ओर। ये 3 लिफ्टों का संगम है पावर लिफ्टिंग
1: जी। और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के बेस्ट पावर लिफ्टर आज हमारे साथ मौजूद है और आज वो अपनी जो जर्नी है पावर लिफ्टिंग की वो आज हमसे साझा कर रहे हैं। अभिषेक जी, एक पावर लिफ्टर का सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा होता है?
0: देखिए, पावर लिफ्टिंग का जो प्रशिक्षण है वो स्पेसिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एक उद्देश्य, आप एक पहले अपना एक साल भर का आप एक उद्देश्य बनाते हो कि भाई मुझे इस साल यहाँ तक इस वजन को उठाने में सक्षम करना है अपने
1: जी,
0: आप को।
1: जी, जी।
0: तो हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है 4 डेज 5 डेज 6 डेज की हमारी ट्रेनिंग शेड्यूल होती है 4 डेज में हमको कौन से दिन में करना है और हमारा सब कुछ निश्चित होता है कि आज हमें इस वजन से इतने रेप और इतने सेट्स लगाने हैं
1: जी।
0: फिर हमारी जो उस मसल को, जैसे स्क्वाट हो गई तो लेग्स हो गए, लेग्स के लिए जो सपोर्टिव एक्सरसाइजेस हैं कौन कौन सी करना है, बहुत सारी मल्टीपल एक्सरसाइज होती हैं, चेस्ट और चेस्ट बेंच प्रेस को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना है, आपको डेडलिफ्ट को इंक्रीज करने के लिए कैसे करना है, तो सब कुछ सुनियोजित होता है कि ऑफ सीजन में आपको कैसी ट्रेनिंग करनी है, कब आपको

0: आपको हाइपरट्रॉफी फेज में रखना है, कब आपको टैपर करना है, कब आपको पीकिंग करनी है, तो ये एक प्योर कस्टमाइज एंड प्रोफेशनल कोचिंग के द्वारा ही संभव है ये स्पोर्ट्स।
1: जी जी जी जी। और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप बहुत से ऐसे लोगों को भी इस समय तैयार कर रहे हैं पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में, जो मध्य प्रदेश में काफी नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आप एक प्रशिक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं। अभिषेक जी, पावर लिफ्टिंग में डाइट और पोषण की क्या भूमिका होती है?
0: पावर लिफ्टिंग में न्यूट्रिशन का महत्व उतना ही है कि जैसे शरीर है, शरीर में यदि अगर हार्ट काम नहीं करेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो
1: जी।
0: तो जब तक आपका पोषण सही नहीं होगा, आप यदि अगर रात को अच्छे से सो नहीं पाए, यदि आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं हुआ, यदि आपने कुछ ऐसी चीज खा ली कि आपको एसिडिटी हो रही है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, तो आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली अगले दिन अच्छा नहीं होगा
1: जी।
0: आपकी मसल रिकवर नहीं होगी, आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी। आपका न्यूट्रिशन पोषण प्रॉपर होना चाहिए। कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्ब्स खाना है, कितना फैट खाना है, कितना फाइबर खाना है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप वेट को लिफ्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको 365 दिन वो काम करना है जो आम आदमी की कल्पना से परे है।
1: जी जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। खेल जीवन में कभी ऐसा समय आया जब आपको ऐसा लगा हो कि अब आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है?
0: मेरी पूरी जर्नी में सबसे जो मेरा इमोशनल और टफेस्ट जो टाइम था, मैच्योर ओलंपिया में थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हुआ, नो डाउट, क्योंकि मेरी जो प्लानिंग थी और मैंने जिस हिसाब से मेहनत करी थी उसके अकॉर्डिंग वो परिणाम नहीं आ पाया
1: जी।
0: बट अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो मेहनत की थी वो करी थी मैंने अर्नॉल्ड क्लासिक यूएसए के लिए, और उस दौरान मैं केवल 800 कैलोरीज खाता था और 3 घंटे कार्डियो करता था
1: जी जी जी,
0: और अपनी ट्रेनिंग वर्किंग सब भी कुछ करता था। तो वो वहाँ पे वीज़ा रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया था, उसके बाद वो कॉम्पिटिशन कोविड की वजह से कैंसिल हुआ। वो पल मेरे लिए एक बहुत ही अब आघात देने वाला था। वही सबसे बड़ा एक पॉइंट था कि जिसने मुझे पूरी तरीके से हिला के रख दिया था, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। मैं उस साल इंडिया के लिए मेडल इंटरनेशनल नॉट क्लासिक यूएसए जो मेन ओलंपिया होता है उसकी तरह ही आयोजित होने वाला एक दूसरा कंपटीशन है, वर्ल्ड के सारे बेस्ट बॉडी बिल्डर्स उसमें आते हैं, उसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन में था
1: जी। बिल्कुल। और कठिन परिस्थितियों में मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपका मंत्र क्या है?
0: मेरा सिर्फ यही सोचना है कि हर वो व्यक्ति, हर वो खिलाड़ी किसी भी चीज को छोड़ने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले ये जरूर सोचे कि वो जीत या वो हार या वो कदम जो उठा रहा है वो सिर्फ उसका नहीं है, उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए है, उसके माता पिता, उसके कोच, उसके टीममेट्स, जिनने उसके खेल के लिए, उसकी उस काम के लिए, उनमें यदि अगर 1% का भी सहयोग किया है तो उसके उस निर्णय से यदि अगर वो क्विट करता है, यदि अगर वो आगे बढ़ता रहता है, वो क्विट करता है तो उसको बस दुख नहीं होगा, उनको भी दुख होगा। यदि अगर वो जीतेगा तो उसको बस खुशी नहीं होगी, उनको भी होगी। तो ये एक चीज़ है जो मुझे हमेशा मोटिवेट रहती है कि मुझे अपने लिए नहीं, मुझे अपने से जुड़े हुए जो मेरे इस जर्नी में मेरा सहयोग कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीममेट्स, उन सभी के लिए मुझे करना है और मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे मध्य प्रदेश का जो नाम है वो इंटरनेशनल लेवल में मुझे रोशन करना है
1: जी। और भविष्य को लेकर अभिषेक जी क्या योजना है आपकी?
0: पिछले 9 सालों से मेरा एक ही उद्देश्य है, जब से मैंने एशियन जीता उसके बाद से, कि मुझे मध्य प्रदेश में पर्सन स्पेसिफिक ट्रेनिंग और मध्य प्रदेश में खेल का स्तर बढ़ाना है, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, और आगामी में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए प्लानिंग करूंगा
1: जी। अभिषेक जी, कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन युवाओं को जो खासकर पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं?
0: मेरा तो उनको सिर्फ एक ही सलाह है कि थोड़ा पेशेंस रखें। पावर लिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट है कि आप 70 साल 80 साल तक खेल सकते हो
1: जी जी।
0: पावर लिफ्टिंग में जूनियर, सब जूनियर, ओपन, मास्टर्स में 4 कैटेगरी होती हैं, मास्टर 1, मास्टर 2, मास्टर 3, मास्टर 4। मास्टर 4 70 साल से लेकर के ऊपर तक के कैटेगरी होती है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, फिर 70 और प्लस
1: जी।
0: तो आप हमेशा इसे खेल सकते हो, और जल्दीबाजी ना करें, मार्गदर्शन लें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसे आप हमेशा खेल सकते हो। आप जॉब करते हो, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद भी आप इसको खेल सकते हो
1: जी। हम यह कह सकते हैं कि पावर लिफ्टिंग केवल एक खेल नहीं है बल्कि फिटनेस के लिए भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि अभी अभिषेक जी ने बोला कि बिल्कुल हताश न हो, जल्दबाजी न करें, बल्कि इसमें किसी भी तरह की एज की किसी भी तरह का कोई बार नहीं है, तो एज से पूरी तरह से मुक्त है। तो आप जिस भी उम्र में शुरू

0: करना चाहे अपने प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में शुरू करें और इस खेल का आनंद लें। अभिषेक जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी बातचीत आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: अभी आपने बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश से सम्मानित भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल से यह बातचीत सुनी। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
2: अभी आपने सुना खेल जगत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं सिर्फ तुम फिल्म से। उदित नारायण की आवाज़, शमीर के बोल और संगीतकार नदीम श्रवण।

फाइटर फिल्म का गीत सुनते हैं। इसे गाया है विशाल ददलानी, शेखर रविजानी और शिल्पा राव ने। कुमार मेलोडी हैं गीतकार और संगीतकार विशाल शेखर।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में सौदागर फिल्म के लिए इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है प्रॉडकास्ट श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी एपिसोड 34।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आपके साथ मैं हूँ ममता चोपड़ा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, मतलब इतने आंकड़े उनके रिकॉर्ड्स के खड़े हो जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है वाकई कोई इतनी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। और हमारे देश की बेटियां इस तरह का काम कर भी रही हैं। आज हमारे साथ देश की ऐसी ही बेटी है जो लगभग 17-18 साल से हॉकी के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जैसे ही पदार्पण किया वहां से जो शुरुआत हुई तो आज भी वे सफलतम हॉकी प्लेयर्स में गिनी जाती हैं और हम आप सब उन्हें जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, सविता पुनिया। तो आइए करते हैं मुलाकात सविता पुनिया से। सविता, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू।
2: जब मैं आपका डिटेल्स देख रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं आप, मतलब 17-18 साल से आप उसी पेस को बनाए रख पा रही हैं खेल के मैदान में। मुझे लगता है अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस तेज रफ्तार जिंदगी की, हाई पिच।
3: या मैम, डेफिनेटली। जब मैं सबसे पहले इंडिया टीम में आई थी तो मेरे कोच आजाद सिंह मलिक ने बात बोली थी कि इंडिया टीम में आना आसान है बट उस जगह को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो चीज मेरे माइंड में थी हमेशा कि मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं एक एग्जांपल सेट करूं अपनी टीम के लिए, अपने सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता था उस टाइम पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूं कि आज फैमिली की सपोर्ट है तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूँ कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो इट्स नॉट ईजी।
2: हाँ, और इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही है, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में है। लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, आपने देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना, ड्रिबल करना शुरू किया होगा
3: जी।
2: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोलकीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो आप गोलकीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं
3: जी। मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास और 2003 में बोला गया कि आपकी बेटी और मेरी कजन की अगर खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो हम सिरसा में एक नर्सरी खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ पे हॉकी, बैडमिंटन और जूडो है। तो मैं और मेरी बहन काफी एक्साइटेड थे क्योंकि गाँव से शहर जाना ही हमारे लिए 2003 में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि ओके हमें वहाँ जाना है। तो मेरे मम्मी जी को गठिया था उस टाइम पे और मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा, गाय भैंस का जो काम होता है मैं, पापा और भाई मिलके करते थे। तो मेरे लिए ऐसे था कि मन में एक डर था कि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। बट फिर मैं दादाजी के पास गई और उनकी जो खुशी थी, दादाजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूँ तू हॉकी खेल। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट सुना था क्योंकि घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था। तो मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है कैसे? तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट गेम है। उनकी जो वर्डिंग थी ये थी कि डिफिकल्ट गेम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले। और हम एक दादाजी का ऐसा था कि हमारे घर में पोतों से ज्यादा पोतियों को या बेटे से ज्यादा बेटियों को प्यार मिलता था। तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है तो मुझे खेलनी तो हॉकी है।
2: अच्छा
3: जी। फिर मैंने हॉकी की ट्रायल दी और वहां मेरे फिजिकल टेस्ट हुए थे क्योंकि हॉकी खेलनी तो आती नहीं थी, तो नॉर्मल टेस्ट। तो वहाँ पे मैं सेकंड आई थी, गई, मन नहीं लगा क्योंकि वो लाइफ बहुत एक
2: गवर्नमेंट होती है ना
3: जी, डिसिप्लिन्ड। एंड मम्मी की हेल्थ का ऑलरेडी बताया, वो माइंड में था तो काफी रोती थी, हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन आना होता था फ्राइडे को घर।
2: क्या उम्र थी आपकी उस समय?
3: 13 साल की थी।
2: अच्छा जी। तो 13 साल की सविता के लिए वो सब बहुत ज्यादा हो गया।
3: टू मच, टू। अभी भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया, इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं हॉकी छोड़ दूँ और घर वापस चले जाऊँ। काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मी को बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा।

0: मैं खाना भी छोड़ दिया था खाना, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पापा को कि ये ठीक से खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, पूरा टाइम रोती है, आप लेके जाओ। तो पापा लेने आए और तब मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। वो वर्ड पापा के लिए, एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था उन्होंने। मैं जो भी होगा अपनी बेटी के लिए फिर तो करूंगा, बट ये बात मुझे उस दिन नहीं पता थी। मैं खुशी खुशी घर गई हूँ कि मैं हॉकी छोड़ के आ चुकी हूँ, मम्मी के पास जाके बता रही हूँ, तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा मंडे को तू वापस जा रही है। मैंने बोला नहीं मैंने छोड़ दिया है को, सबको मैं अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के आई हूँ। तो बोले कि नहीं बेटा अब तू एज ए डिफेंडर नहीं खेलेगी, गोलकीपर खेलेगी, उससे पहले मैं एज ए डिफेंडर ट्रेनिंग करती थी। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है। बोल तो मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने 18,000 रुपए गोलकीपर किट के कोच को दे के आए हैं, क्योंकि कोच ने बोला ऑलरेडी मेरे ग्राउंड पे 2 गोलकीपर हैं, तो मेरे पास साल में 2 ही किट आती है, या तो आपको एक साल
1: के पापा के पास तो पैसे नहीं थे ना
0: जी, मेरे पापा जॉब करते थे बट 8,500-9,000 रुपए सैलरी थी। और वो चीज मेरे को ऐसे हुआ कि 18,000 रुपए ऑलमोस्ट 2 महीने की सैलरी मेरे को मेरे किट पे पापा ने लगा दी, और मेरा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगी, काफी रोई मैं। पर मम्मी ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, कोशिश कर, क्या पता भगवान, तू मेहनत कर, क्या पता भगवान वो दिन ला दे और पापा के लिए एक रिटर्न गिफ्ट होगा। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस किया, सिरसा में ही थी, और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहां पे, और काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि नॉर्मली हम शाहबाद की टीम से काफी गोल खाते थे, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जहाँ पे हमने बहुत कम मार्जिन से मैच को लूज किया,
1: आपने काफी गोल बचाए
0: जी। तो वहाँ जो हमारे जो शाहबाद टीम के कोच थे उन्होंने मुझे आके 100 रुपए दिए कि आज तेरी वजह से टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ऐसा रहा है। तो वो चीजें मुझे फिर मोटिवेट किया कि ठीक है मुझे।
1: लेकिन आपने जो शुरुआत की जब उसके बाद आप साई अकेडमी गए, उसके बाद नेशनल टीम में आप 2008 में आ चुकी थी, 17 साल की उम्र में आप नेशनल टीम में आ गई थी, मतलब है ना, उस पर आपने एशिया कप खेला। ये जो आपने हॉकी के मैदान में गोल के आगे आप खड़ी हो जाती हैं कि ये बॉल को मैं पास नहीं होने दूंगी, उस वक्त सविता का क्या जज्बा होता है मन में?
0: मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई और हम गांव में रहते हैं, तो पापा के पास फोन गया कि आपकी बेटी का नाम नेशनल कैंप में आ गया। तो पापा बोले कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन मैंने लड्डू बांटे थे और एक आज लड्डू बांटूंगा। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। कोच के पास मैसेज आया कि मेरा और एक मेरे साथ की प्लेयर थी कि दोनों का नाम इंडिया कैंप में आया, आजाद सर उस टाइम मेरे कोच थे, तो सर ने सेम जो मैंने आपको बोला वो बात बोल के भेजा कि एक बार तो कोई भी इंडिया खेल लेता है बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको बाकियों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गई कैंप में और मैं जूनियर थी उस टाइम पे, और अगले ही कैंप में मुझे बोला गया कि आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो रहे हो। तो भंगू सर हमारे कोच थे नेशनल टीम के उस टाइम, तो हर चीज पापा को बताती थी, तो बड़ी खुशी से कि पापा का सपना मैं भी पूरा होने वाला है, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए वो ये था कि मैं घर गई और दादाजी मेरे पास आए और बोले कि बेटा एक पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जहाँ नाम आया है कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती सिरसा की पहली इंटरनेशनल प्लेयर है, और काफी खुशी थी उनकी आंखों में और बहुत इवन इमोशनल थे, और बट वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं ये पेपर अपनी कबड़ में रखता हूँ, आज का दिन तू देख और आज से पूरा एक साल बाद मैं तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा।
1: अच्छा?
0: मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा।
1: क्या बात।
0: और आज वो हमारे साथ नहीं है बट वो चीज सच हुई, एक साल बाद उन्होंने वो खुद से पेपर मुझे पढ़ के सुनाया। उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं 67 ईयर की एज में दादाजी को इंस्पायर कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर अब तो मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं गिव अप नहीं करूंगी, क्या पता और कितनी लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ।
1: बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सविता ने जो काम शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों को मिल पाई, क्योंकि ये एक वॉल की तरह जो खड़ी होती है गोल के आगे सविता, वो वाकई एक उदाहरण पेश करता है। लेकिन खासकर उन इंस्टांसेस की बात बताएं जब आपने जापान के गोल रोके, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के इतने 9-9 गोल रोक डाले, उस समय किस तरीके का उत्साह था टीम के अंदर, उस समय किस तरीके का ऑडियंस का रिएक्शन था, और आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे?
0: सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एज ए डिफेंडर से गोलकीपर आना, मैंने उस चीज को बहुत इंजॉय किया, क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है मुझे मैं कैमरे से या पब्लिक प्लेस से काफी दूर रहती थी, बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है, अब मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था, और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। 1980 में बुलाया था बट वो एक इन्विटेशन था, है ना, टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। तो वो मुझे था कि मैं गोलकीपर हूँ और गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है, तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो काफी अच्छा मैच मैच था वो मुझे आज भी याद है, और उस वन एंड हाफ ईयर हुआ था उस टाइम मुझे बीइंग ए फर्स्ट गोलकीपर, प्रेशर सिचुएशन था, बट जब जब एक सेव करते हैं और पता है कि

0: एक स्टेप क्लोज जा रहे हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और नेक्स्ट मोमेंट के लिए नर्वसनेस भी होती है कि अभी और गलती ना हो जाए, अभी और गलती ना हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में मेरी और मेरी टीम दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, घर पे आई, अगेन पापा के साथ सब कुछ डिस्कस किया कि मैं उतनी खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, तो पापा ने बोला बेटा पहला ओलंपिक्स था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा तो बाद में और अच्छा होगा। उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना है, तो मैं डायरी लिखती हूँ नॉर्मली। तो मैंने फिर उस सारी चीजें उसमें लिखा कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को और डे बाय डे बेटर बनाना है ताकि मैं टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में अपना और योगदान दे सकूं। बस मैम बहुत गोलकीपर की नॉर्मली लोगों को शायद लगता है कि गोलकीपर्स का सिर्फ मैच खेलना तो आसान है क्योंकि बाकी प्लेयर्स भागते हैं, गोलकीपर सिर्फ 60 मिनट खड़े रहते हैं। गोलकीपर्स के बहुत सेशंस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीम से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं, हमें ड्रैग फ्लिक रोकना है, शूट आउट रोकना है और बाकी जो भी फुटवर्क की बहुत एक्सरसाइज करनी होती है, तो वो मैंने अपनी रूटीन में ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड की और कोचेस से हेल्प लेती थी उस चीज में कि मुझे बताओ कि बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आता है और जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था, सभी को यही, हमें जो मैसेज मिल रहे थे सभी यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पूल में टॉप किया है और इंडिया अपने पूल में लास्ट आया, और एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। जैसे मैच से पहले वाले दिन पापा से बात होती है तो पापा बोल रहे कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, काफी टफ ओपोनेंट है, बट कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से, वो एक मैच खेलने के बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को बोला पापा आप टेंशन मत लो, हम जीतेंगे। अच्छा। मेरे पापा भी अगर आप बात करोगे वो जरूर ये चीज को मेंशन करेंगे। अपने आप से ऐसे कॉन्फिडेंस था क्योंकि हमारे एज ए टीम हमने बहुत काम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और काफी टीम अच्छा खेल रही थी, मेरा भी अच्छा चल रहा था और लास्ट क्वार्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1-0 वो डाउन थे बट उनको वो एक बॉडी लैंग्वेज जो देखते हैं ना, क्योंकि हाफ टाइम हुआ वो हंसते हुए आ रहे हैं, क्वार्टर टाइम हुआ हंसते हुए वापिस आ रहे हैं, अदरवाइज ओलंपिक्स का मैच है, हार रहे हैं, तो कोई भी उस टाइम पे उनको एक था कि शायद हम
1: साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेली जाती हैं,
0: दैट आल्सो डेफिनेटली, बट थोड़ा ये उनको था कि हम निकाल लेंगे, गोल निकल जाएगा, हमें भी हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस था। तो हमने यही बात किया कि आज के मैच में डू और डाई और एक एक मिनट एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, और लास्ट क्वार्टर में उससे पहले 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लास्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले, और मेरे साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने रोका, मेरे साथ मेरे दूसरे डिफेंडर भी थे, तो एज ए टीम हमने वो मैच जीता।
1: आपके जैसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हॉकी लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाई है, और मतलब आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं अभी जिनको 3 बार लगातार FIH की ओर से बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो वाकई सराहनीय है। सविता आप तो कैप्टन भी रही है ना, आपने इतने सारे गोलकीपर के तौर पर जो हासिल किया, कैप्टन जब बनी थी तो कुछ प्रेशर महसूस होता था क्या?
0: डेफिनेटली क्योंकि वो गोलकीपर अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है बट उसके साथ बींग ए कैप्टन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एड होती है, तो प्रेशर होता है क्योंकि वहां पे सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी टीम के लिए है, तो ऑफ कोर्स कैप्टन इज
1: बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रेशर वाली जॉब तो है। अच्छा, हमने हमेशा आपको जैसे इस तरह के ट्रैक सूट्स में ही देखा है, खेलते हुए भी, अभी भी आप हमारे साथ इसी तरह से हैं। इन ट्रैक सूट के पीछे की सविता क्या ऐसी भी है जो बिंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है, आम लड़कियों की तरह सजती है, पसंद करती है?
0: नो मैम, मैं बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ, और बचपन में मुझे मम्मी बताते हैं कि मैं छोटी थी तब था मुझे, बट 5th-6th क्लास तक था कि कुछ गाँव में जाते थे, बैंगल्स लेते थे और पायल लेते थे, बट मैंने सिर्फ लेके रखी है, पहना कभी भी नहीं है। और आज के टाइम पे ये है कि मुझे अगर कोई बोलता है कि मेकअप करना है तो इट्स मेक मी स्ट्रेस कि मुझे उतना पसंद नहीं, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है।
1: ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन हेलमेट के पीछे जब छुपी होती हैं, उनके बाहर निकलकर जो सविता सामने आती है, उस सविता के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो एक हॉकी प्लेयर से हटकर लोगों को जाननी होती है?
0: हॉकी से बाहर ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ कि हॉकी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है, बिना हेलमेट के भी आज मुझे वो कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं उस दिन का शुक्र गुजार करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने अपनी हॉकी जर्नी को कंटिन्यू रखा।
1: वैसे आप जब छोटी थी उस वक्त आप की प्रैक्टिसेस के लिए जाना करना, और हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पर हम देखते थे कि लड़कियों को लेकर उस वक्त तो आंकड़े और भी लैंगिक अनुपात के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे में आपको जब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, करना होता था, तब क्या क्या मुश्किलें आती थी?
0: 2011 की बात है, उस टाइम हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती थी, ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं दिल्ली में ही थी, बेंगलोर से मैं दिल्ली आई थी और बस स्टैंड पे थी मैं, क्योंकि उस टाइम टैक्सी फ्लाइट ये सब उतना नहीं होता था, ट्रेन से आते थे और यहाँ से आगे रोडवेज से जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो

0: मैं बहुत बार ऐसा होता था कि पापा को मैं बताना भी नहीं चाहती थी क्योंकि अदरवाइज वो लेने आएंगे, फिर पैसा लगेगा, खर्चा होगा। मैं दिल्ली बस स्टैंड पे थी, मेरे पास गोलकीपर बैग था और मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे खड़ी थी। कोई मुझे बस में चढ़ा नहीं रहा था क्योंकि इतना बड़ा बैग है, देखे सबकी बैग रखेगी उतनी जगह पे 2 सवारी और बैठ जाएंगे। मेरा गला भराया था, मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बस में बिठाओ। तो उन्होंने बोला इतना बड़ा बैग और पास में जो लोग खड़े मजाक कर रहे थे, लग रहा है देश छोड़ के जा रही है। तो वो चीजें मुझे अंदर से वीक कर रही थी। इट्स नॉट कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे वीक कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं क्यों खेल रही हूँ। और उसके बाद में ज्यादा खराब तब हुआ जब मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको बस में नहीं बिठाएंगे, या तो आपको 2 पैसेंजर की टिकट खरीदनी पड़ेगी जी। और 250, मुझे याद है 250 रुपीज की एक टिकट होती थी। और मैंने कहा नहीं, 500 रुपीज तो एक्स्ट्रा, वो पैसे तो मैं बचा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं। तो फिर बोलते आप ऊपर रख दो बस के ऊपर, छत पे रख दो। मैंने बोला इतना बड़ा बैग लेके मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप बोल दो, आप किसी की हेल्प के लिए मुझे बोलो। तो मैं उस बस में नहीं चढ़ी और मैंने पापा को रोते हुए फोन किया कि पापा मुझे नहीं खेलना है, मुझे हॉकी छोड़नी है क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं खेल पाऊंगी, कि मुझे बहुत खराब लगा आज ऐसे ऐसे हुआ। तो पापा ने बोला कि बेटा आज आज का दिन कैसे भी निकाल ले, चाहे मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़े, पर मैं तुझे इस वजह से तो हॉकी नहीं छोड़ने दूंगा। पेरेंट्स की सपोर्ट क्या होती है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब एक्सपेंसिव उठाना। और मैं इंडिया टीम में 2008 में आई थी और 18 तक मेरे पास जॉब नहीं थी। तो बट कभी भी पापा ने कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरी बेटी के पास जॉब नहीं है। मम्मा थोड़ी टेंशन लेती थी क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ये था कि क्या पता कब इंजरी हो जाए। तो ये टाइम थे जहाँ पे लगता था कि मैं अपने माँ बाप को जो खुशी देना चाहती हूँ वो अभी भी अधूरी है, बट
1: और उनकी खुशी के लिए आप लगी रही
0: जी
1: लगी। ये जो आपने लोगों की बात की, लोग ऐसे कमेंट करते थे, सब करते थे, जब आपने खेलना शुरू किया तब भी तो आपको कमेंट सुनने को खूब मिलते होंगे।
0: बिल्कुल, बट मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ कि मेरे को ये चीजें बाद में, जब मैंने ऑलमोस्ट इंडिया टीम में आने के भी 3-4 साल हो चुके थे, तब मुझे मम्मी ने बताना स्टार्ट किया।
1: तो क्या बोलते थे मम्मा, क्या बताते थे?
0: यही कि मतलब हाइट लंबी है तो क्यों शॉर्ट्स पहनना, क्यों जींस पहनना, और घर से बाहर भेजना वो भी तो सेफ नहीं है, कल को शादी करवाएगी, ये सब चीजें थी जहाँ। और बट मेरे पापा ने बोला कि हमारा डिसीजन है, हमारी बच्ची है, हम देखेंगे क्या करना है। तो वो मुझे बहुत बाद में खुशी होती थी कि कितने अच्छी चीजें कि वो चीजें मुझे पता नहीं चलने दी।
1: आपके मामा पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज पहुंची हैं। आई एम श्योर बहुत से ऐसे हरियाणा के भी परिवार होंगे, बेटियां होंगी, जो आज आपको देखकर बहुत प्रेरणा ले रही है। चलिए यहाँ पर एक रैपिड फायर करेंगे सविता के साथ। पेनल्टी शूट आउट या पब्लिक स्पीकिंग, किससे ज्यादा नर्वस होती है आप?
0: पब्लिक स्पीकिंग।
1: अच्छा, एक स्ट्राइकर दुनिया का जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अलर्ट रहती है आप उसके खिलाफ?
0: ड्रैग फ्लिकर है, नीदरलैंड से, ये भी जेंसन।
1: ओके, अगर आप हॉकी प्लेयर नहीं होती तो क्या होती?
0: डॉक्टर।
1: डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहती थी?
0: पापा का सपना था, क्योंकि मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं, तो उन्होंने किसी वजह से, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से अपनी स्टडी को रोकना पड़ा। पापा ने बोला मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा।
1: एक टीममेट जो आपको कितना ही टेंस मोमेंट हो हंसा सकता है?
0: नेहा गोयल, शी इज वेरी फनी।
1: अच्छा, क्या मुश्किल है, पेनल्टी कॉर्नर बचाना या फिर अपने फेवरेट फूड को ना कहना?
0: पेनल्टी कॉर्नर बचाना।
1: अच्छा
0: जी,
1: खाने को ना करना आसान है।
0: हाँ, मेरे लिए, मैं आई एम नॉट रियली फूडी पर्सन।
1: ओके, अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया के से एक स्किल सीखनी हो तो क्या होगी?
0: मैं मैरी कॉम की फिटनेस को बहुत इंस्पायर करती हूँ।
1: ये सेंटेंस पूरा करिए कि लोग मुझे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि
0: मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
1: अगर आपको मैच खेलते हुए अपनी एक पोजीशन किसी के साथ स्वैप करनी हो गोलकीपर की हटकर, तो क्या होगी?
0: मैं हमेशा ग्रेस, जो हमारी प्लेयर थी, उनके साथ हमेशा मजाक करती थी कि मुझे एज ए डिफेंडर खेलना पसंद है, क्योंकि जैसे गोलकीपर का एक परमिशन मिलता है कोचिंग करना, वैसे एक डिफेंडर है जो पूरी गेम को खिला सकता है। सो इट्स सेंटर डिफेंडर आई ऑलवेज एंजॉय।
1: ऑलराइट सविता, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। लेकिन अंत में देश की बेटियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगी?
0: जी, मैं हर एक उस बेटी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना एक गोल सेट करें लाइफ में और बहुत फोकस और डेडिकेशन के साथ बहुत हार्डवर्क करें और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएं। उससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि अब जब भी आप मैदान पर उतरेंगी, जो आप गोल बचाती आई हैं वैसा ही आप करिश्मा दिखाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: सविता पुनिया, जाहिर है कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो प्रेरणा देश की बेटियों को दे रही है वही आगे भी लगातार जारी रहे, हमारी ओर से यही शुभकामनाएं हैं। आज बस इतना ही, नमस्कार।
2: हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। ये कार्यक्रम DD न्यूज के सहयोग से प्रस्तुत किया गया।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

पॉडकास्ट श्रृंखला पीपुल्स ऑन आकाशवाणी एपिसोड 34 अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत। लगान फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और शंकर महादेवन की आवाज़ें, जावेद अख्तर के बोल और संगीतकार ए आर रहमान।

लीजिए आप सुनिए अगला गीत। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, साहिर ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं रोशन और फिल्म का नाम है बरसात की रात।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए अजीत सिंह का वीणा वादन, राग है मालकोस। पखावज पर संगत की है रामशंकर दास पागल दास ने।

अभी आपने अजीत सिंह का वीणा वादन सुना। राग था मालकौस। पखावज पर संगत की थी रामशंकर दास, पागल दास ने। अब आज का राग रजनी कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश

0: में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग UPSC के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। NTA ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the parliament.